0: कॉल कीजिए 437-425-2500, इट्स 437-425-2500, आइकॉन इवेंट स्पेस।
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861, 647-295-7861।
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान या तो दुरुस्त फैसला करेगा या फिर हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। चीन रवानगी से कबल वाशिंगटन में सहाफियों से बात करते हुए उनका कहना था वो नहीं समझते कि ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की जरूरत है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कहा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों ने बहुत उम्दा किरदार अदा किया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम दोनों ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाज़ह है कि एक रिपोर्ट में अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया गया था कि अप्रैल के अवाइल में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर मुतादिद ईरानी तैयारे भेजे गए जिनमें एक RC-130 तैयारा भी शामिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने खुद को तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक सिफारती राब्ताकार के तौर पर पेश करते हुए खामोशी से ईरानी फौजी तैयारों को अपने हवाई अड्डों पर खड़ा करने की इजाज़त दी ताकि वो मुमकिना तौर पर अमरीकी फजाई हमलों से महफूज रह पाएं। उधर पाकिस्तानी वजारत खारजा ने एक बयान में एक तैयारी की पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक की, ताहम पाकिस्तान का कहना है कि रिपोर्ट में किए गए दावे के बरक्स ये तैयारा जंगबंदी के दौरान यहाँ पहुँचा था और इसका किसी भी अस्करी या तहफ़ के लिए किए जाने वाले इंतजाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि मुझे यकीन है कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी 100% रोक देगा और जौहरी हथियारों के लिए कोशिशें तर्क कर देगा। दूसरी जानिब ईरान के इदारा बराए एटमी तवानाई के सरबरा मोहम्मद इस्लामी ने पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा है कि ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उनका कहना था कि जौहरी टेक्नोलॉजी मुजाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं है। उधर ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा है कि अमरीका ने नया हमला किया तो ईरान के मुमकिना ऑप्शंस में से एक यूरेनियम की अफजूदगी 90% तक ले जाना भी हो सकता है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर खालिबाफ ने कहा है कि 14 निकाती तजवीज़ में बयान करदा ईरानी अवाम के हकूक को तस्लीम करने के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल मौजूद नहीं है। उनका कहना था कि जितना ज्यादा अमरीका ताखीर करेगा उतना ही उसकी कीमत अमरीकी टैक्स दहिंदगान को अदा करना पड़ेगी। उधर अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने इंकशाफ किया है कि ईरान के खिलाफ जारी अमरीकी जंग पर अब तक तकरीबन 29 अरब डॉलर की रकम खर्च हो चुकी है जबकि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब आलमी पाबंदियों के शिकार रूस को अप्रैल 2026 में तेल और गैस से हासिल होने वाली आमदनी में 39% इजाफा हुआ। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के बहरिया के सियासी माविन मोहम्मद अकबर जादे ने कहा है कि अमरीका और इसराइल के साथ हालिया जंग के बाद आबनाए हुरमुस की हदूद को वसत दे दी गई है। उन्होंने बताया कि माजी में ये इलाका 20 से 30 मील का था जिसे बढ़ाकर अब 200 से 300 मील यानी तकरीबन 500 किलोमीटर कर दिया गया है। उधर कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अस्सानी ने दोहा में तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को खबरदार किया कि वो आबनाए हुरमुस को खलीजी ममालिक पर दबाव डालने या उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल न करे। इस मौके पर कतर और तुर्की ने ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया। उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान के अंदर कई हमले किए और इन कार्रवाइयों में ईरान के अहम तवानाई मराकज को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले लकी मरवत में होने वाले एक धमाके के नतीजे में कम अज़ कम 9 अफराद हलाक जबकि 22 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले 9 अफराद में 2 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी शामिल हैं। इससे पहले हफ्ते की शाम बन्नू में फताखेल चेक पोस्ट पर भी बारूदी मवाद से धमाका किया गया था जिसमें 15 पुलिस एहलकारों की जान चली गई थी जबकि 3 एहलकार जख्मी हुए थे। ادھر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی اور جمعیت علماء اسلام

0: 1-800-647-273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेज पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।
3: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम, बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस। नो फी अनलेस ही विंस योर केस। फॉर फ्री एडवाइस कॉल 4166252636। दैट्स 4166252636।
4: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स, अब मिसेस आगा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन। 4167579999। दांतों की कोई भी बीमारी हो, आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और रीट ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसेस आगा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट, ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन। 9052325670।
2: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922। इट्स 9057831922।
4: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 4164668782। 4164668782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप है।
2: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। It's 9058280009। Your login ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki guarantee hamari। बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 9052829868।
5: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
6: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
5: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
6: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
5: दैट्स वंडरफुल।
6: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
5: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
6: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 or visit BramptonAppliances.ca।
7: Sunshine Radio. Sunshine Radio proudly present the grand Eid

0: राजा अब आज का सफर दिल से देता।
1: क्यूनी ग्लोबल एडवाइजर इंक आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है, जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे जायद है। आप घर के कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175।

விண்ணோடு மேலச்சத்தம் என்ன, மண்ணோடு சின்ன துரல் என்ன.

0: You're listening to CMR FM 101.3. Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: The Lovey Dovey Show, driving you home. A melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada. Monday to Friday.
2: Kya aap sun rahe hain?
3: Kya aap sun rahe hain?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
3: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए।
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
4: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
5: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूं शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर, और लवी डवी शो पर आप सारे लवली वंडरफुल ब्यूटीफुल लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत। और उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपने दिन की शुरुआत आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से की होगी। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके एक और खूबसूरत सी सुबह, एक और खूबसूरत सा दिन हमें देने के लिए, अपनों के साथ ढेर सारा प्यार करके, बहुत सारी उनको बेस्ट विशेस देकर आज के दिन के लिए, चाहे बच्चे हों, आपके घर में सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आप हैं, आपके बेटर हाफ हैं, सब लोग एक साथ मिलकर दिन की शुरुआत करते हैं। कोई स्कूल जाता है तो कोई काम पर जाता है तो किसी के और इंगेजमेंट्स होते हैं, और सबको लगता है कि आज का दिन हमारा सबसे अच्छा दिन गुजरे, यही जज्बा होना चाहिए। कहते हैं लाइफ इज अ वन वे रोड, लाइफ इज अ वन वे रोड वेयर यू कैन सी बैक बट यू कैन नॉट गो बैक, सो डोंट मिस एनीथिंग। हम पीछे देख जरूर सकते हैं लेकिन पीछे जा नहीं सकते। तो जो हम पीछे छोड़ आए हैं, माजी को, बीते हुए कल को, वो ऐसा हो जिस पे हम रिग्रेट ना करें, जिस पे हम पछतावा ना करें, जिसको सोच सोच के हम खुश हों, जिसको सोच सोच के हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आए, ऐसा हर दिन हमें ऐसा छोड़कर जाना चाहिए अगले दिन के लिए, है ना। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए, आपका दिन अच्छा गुजरे, हर एक लम्हा, हर एक पल आज का आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ, अपनों का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अच्छी सेहत और बहुत सारी कामयाबी भी लेकर आए। और इस वक्त 11 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर राइट नाउ, फॉग के पैचेस आपको मिल रहे हैं इस वक्त, और दोपहर में मौसम साफ दिखाई देता है, 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर, लेकिन 10 बजे के आसपास थोड़ी सी ड्रिजल आपको मिलेगी। तो चलिए एंजॉय करते हैं, और अब से लेकर 11 बजे तक हमारा आपका साथ बना रहेगा। 416-303-3639, आप सभी की शान में ये गाना।

0: उसके।
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: क्या आप सुन रहे हैं?
1: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
2: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
1: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: This is Lovey Dovey Show. मैं हूँ शिवानी, मेरे साथ हैं आमिर और हम दोनों के साथ हैं आप सारे लिस्टनर्स और ये है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स। जाना पहचाना ये कोर्स है। अरसे से ये जो लवी डवी शो रेडियो टोरंटो कनाडा की जानिब से आपको दिया जा रहा है। कितने ही ऐसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो अपना अपना बिजनेस जो है इससे करने के बाद शुरू कर चुके हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और अपना बिजनेस अब खुद प्रमोट करना चाहते हैं, खुद के बॉस बनना चाहते हैं। हायरिंग के लिए किसी को हायर करके ज़िंदगी भर पेमेंट करने से अच्छा एक छोटे अमाउंट देके आप ज़िंदगी भर के लिए

0: बताएंगे कि ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स क्या है?
1: ओके, सो ये डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन एक कोर्स है विच इज कल्बिनेशन ऑफ काफी डिफरेंट जो है ना फील्ड ऑफ मीडिया. इसमें कंटेम्प्रेरी मीडिया भी आ जाती है, जैसे फिल्म एंड टेलीविजन हो गई, एंड सोशल मीडिया भी आ जाती है. राइट, तो इसमें हम सिखाते हैं काफी चीजें.
0: अच्छा.
1: सबसे पहले आपको कंटेम्प्रेरी मीडिया में सिखाते हैं डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन, कैमरा कैसे यूज करना है, उसके बेसिक्स, ISO वगैरह क्या होते हैं, लाइटिंग क्या होती है. राइट, उसके बाद अगर हम डिजिटल साइड पे आए तो हम पढ़ाते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, सच एज कि आपको अपनी, क्योंकि सोशल मीडिया इज अ वर्टिकल फील्ड मोर ऑफन, तो उसमें कैमरा जो है वो स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, तो उसकी डिफरेंट चीजें सिखाते हैं. बहरहाल ये सिखाते हैं कि उसमें आप किस तरह रील्स बना सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पैन भी छोटा होता है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको अपना मैसेज देना है, वो आप कैसे करेंगे, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं. उसके बाद पोस्टर डिजाइनिंग सिखाते हैं, एनिमेटेड पोस्टर्स होते हैं आपको, फिर सिखाते हैं कि पोस्टर रील्स कैसे बनाते हैं, काफी सारी चीजें. उसके बाद आखिर में आता है कि एडिटिंग, आखिर में तो नहीं लेकिन जो थर्ड स्टेप होता है प्रोसेस का, वो कि आपने एडिटिंग कैसे करनी है. राइट, और एडिटिंग के लिए हम सबसे जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अडोबी प्रीमियर प्रो, वो सिखाते हैं.
0: एंड
1: उसके बाद हम, जब आपका एक वीडियो बन गई या आपका एक प्रोडक्ट बन गया, तो आपने वो अपलोड कैसे करना है, मार्केट कैसे करना है, ये सारी चीजें सिखाते हैं इस कोर्स में. एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइक 4 वीक्स का.
0: अच्छा,
1: कोर्स है,
0: ठीक है,
1: सैटरडे एंड संडे फ्रॉम 1 PM to 6 PM.
0: जी, 1 PM to 6 PM, महज 4 हफ्तों में, वो भी सैटरडे और संडे जब मसरूफियत नहीं होती है, उसमें आप ये आइए, कोर्स कीजिए और सिर्फ 4 हफ्तों में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे. जिंदगी भर के लिए आपके पास एक ऐसा हुनर होगा जो आप खुद अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं. कंटेंट क्रिएशन और जो पंच लाइन होती है, जो टैग लाइन होती है, वो सब भी कुछ इसमें पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग फंडिंग.
1: जी बिल्कुल, पंच लाइन, टैग लाइन, ये भी हमारे जो राइटिंग के अंदर आता है ना, उसमें आ जाता है.
0: अच्छा, ठीक है.
1: कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका एक ब्रांड है, तो आप उसकी जो है ना एक टैग लाइन क्या बनाएंगे, या फिर आपके एड की पंच लाइन क्या होगी, ये सारा भी सिखाया जाता है. एंड फंडिंग ज्यादा आ जाते हैं तो फंडिंग भी सिखाते हैं, क्योंकि कैनेडा में काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री को फंड करती है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आपका सबसे पहले आइडिया होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उसके बाद आपको किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, ये सारा सिखाया जाता है.
0: जी बिल्कुल, और उसके लिए नंबर एक ही घुमाना है आपको, एक छोटा सा अमाउंट, वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल बी टॉट इन द कोर्स. बहुत रीजनेबल अमाउंट है, जिंदगी भर के लिए सिर्फ वन टाइम फी है ये. 416-303-3639, आई रिपीट द नंबर 416-303-3639. हफीफ, इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, कुछ और ऐड करना चाहेंगे?
1: या मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज, ये जो कोर्स है ये हमने बनाया है इसलिए है कि वो लोग जो खुद अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे, या फिर वो खुद अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको शौक है कि उनको जो है ना एक इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर उनको वीडियोस बनाने का शौक है, तो ये स्पेशली हमने उन लोगों के लिए बनाया है.
0: अमेजिंग.
1: तो मेक श्योर यू कम टू दिस कोर्स, एंड जब आप आएंगे आपको खुद सीखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा इस कोर्स देने में.
0: क्या बात है, तो बस मजे मजे में प्रोफेशनल बनिए और बहुत जल्दी से 4 हफ्तों में प्रोफेशनल बन जाइए इस कोर्स को करके. 416-303-3639. हफीफ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए. प्लेजर हैविंग यू विद अस. थैंक यू.
1: थैंक यू सो मच.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
4: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low or commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: Multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
2: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है? तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।

on CMR FM 101.3. This is Lovey Dovey Show with Amir and Shivani. 416-593-0055 हमारे स्टूडियोज का नंबर है. किसी भी बातचीत के लिए कॉल कर सकते हैं. और अगर डिजिटल मीडिया प्रमोशन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अगले वीकेंड से शुरू हो रहा है, महज एक महीने में आप प्रोफेशनल बन जाएंगे डिजिटल मीडिया में. डिजिटल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, रील्स बनाना हो, टिकटॉक हो, कंटेंट क्रिएशन हो, और अपना यूट्यूब चैनल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, यानी कोई भी डिजिटल मीडिया के हवाले से आपके दिलों में कंसर्न है या आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो महज एक हफ्ते में आप प्रोफेशनल हो जाएंगे. ज़िंदगी भर का हुनर आपके साथ होगा और ज़िंदगी भर के लिए होगा. और अगर सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, किसको हायर करें, उसको कैसे समझाएं, क्योंकि वो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा बेबी है, और अपना जो आइडिया होता है, अपना जो बिजनेस होता है, अपना जो हम जिसको सींचते हैं, जिसको एक लेवल तक लेकर जाते हैं, हमसे बेहतर कौन जान सकता है कि उसको हम कैसे प्रमोट करें, किस लफ्ज़ों में उसे लोगों तक पहुँचाएँ. तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है, आप खुद के लिए करना चाहते हैं या किसी भी और रीजन से करना चाहते हैं, हर लिहाज से ये आपके लिए ही बना हुआ कोर्स है. महज एक महीने में, जिसमें चार हफ्ते हैं, चार हफ्ते में भी आपको सिर्फ सैटरडे और संडे कन्वीनियंटली आना है. और सैटरडे संडे को भी वो टाइम रखा गया है जिसमें आप कन्वीनियंटली आ सकते हैं, एक बजे से 6 बजे तक. 1 PM to 6 PM सैटरडे, 1 PM to 6 PM संडे, यानी पूरे महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 दिन आना है. सिर्फ 10 नंबर के फासले पर यह प्रोफेशन आआपका इंतजार कर रहा है. कॉल कीजिए 416-303-3639. 1969 का वो साल जब भारत को मिला इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना. मूवी थी आराधना. शक्ति सामंत जैसे बड़े डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया था और इसमें हीरोइन थी शर्मिला टैगोर, जो उस वक्त की सुपरस्टार थी. और राजेश खन्ना नए नए आए थे, उनको एक अदद हिट की बेहद ज़रूरत थी. कहते हैं कि किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है. ऐसी ही ये मूवी शर्मिला टैगोर की आई और इसने फिल्म फेयर अवार्ड 17 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता. और इसमें राजेश खन्ना, और उसके बाद राजेश खन्ना का तो वो जलवा चला कि 17 कंसेक्यूटिव हिट्स थी राजेश खन्ना ने एज अ सोलो हीरो. और ये वाला गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ इस मूवी से, मेरे सपनों की रानी, इसकी कहानी ये है कि जब शक्ति सामंत इस गाने को शूट कर रहे थे, दार्जिलिंग में ये गाना शूट हुआ था, ट्रेन का सीक्वेंस था, शर्मिला टैगोर के पास डेट्स नहीं थी, वो बॉम्बे में शूट कर रही थी, तो राजेश खन्ना अकेले वहां पहुंचे दार्जिलिंग. उनको अकेले उनका सीन शूट किया गया जिसमें वो जीप से जा रहे हैं अक्रॉस द रेलवे ट्रैक जिसपे वो ट्रेन जा रही है, जिसमें शर्मिला टैगोर बैठ के एक नॉवल पढ़ रही हैं और राजेश खन्ना जीप में जा रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं ट्रेन के, और गा रहे हैं मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू. और ये वाला सीन जो था राजेश खन्ना का, दार्जिलिंग में शूट कर लिया गया जीप में. उसके बाद बॉम्बे में एक ट्रेन का सीक्वेंस क्रिएट किया गया और वहाँ पे शर्मिला टैगोर का सीन शूट किया गया, दोनों को एडिट किया गया और एक ही फ्रेम में लाया गया. देखिए उस वक्त 1969 में कितनी खूबसूरती से ये सीक्वेंस बनाया गया और लग ही नहीं रहा था कि ये अलग अलग शूट किया गया है. और राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की पहली मूवी थी ये और सुपर हिट साबित हुई. तो चलिए इसी मूवी का ये गाना आपके लिए लवी डवी शो पर 416-316-303-3639.

0: क्या आप सुन रहे हैं? इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
3: पंजवा महान तीन दिन का कीर्तन दरबार 16-17 दिन शनिवार अते एतवार दोपहरे 3 बजे लेके रात 10 बजे तक, 18 दिन सोमवार 12 बजे तो लेके शाम 7 बजे तक।
4: ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड 12942 हार्डनेक रोड कैल्टन विखे करवाया जा रहा है। पंथ दे सरमौर रागी जथे पदम श्री भाई साहब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, संत अनूप सिंह जी ऊना साहेब वाले, भाई अनंत वीर सिंह जी एले वाले, भाई साहब जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले, प्रोफेसर परमजीत सिंह जी पटियाले वाले, भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह हरजीत नूं कीती जा सकती है 6474481000। 647-448-1000। सेवा भेजन वास्ते seva2022@yahoo.com ते अपनी सेवा भेज सकते हो।
5: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
6: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
7: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday,

लवी रवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ ऑन सी एम आर एफ एम 1.3 4163033639। चलिए बड़े ही खूबसूरत से गाने की तरफ आपको लिए चलती हूँ। आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, नाज़िया हसन का गाया कुर्बानी फिल्म का। इसको बहुत सारे तरीके से रिक्रिएट किया गया, अच्छे अच्छे रिदम्स के साथ, म्यूज़िक के साथ। ऐसे ही इसी सॉन्ग को रिक्रिएट किया गया है इस गाने के माध्यम से, और आपको लिए चलती हूँ मैं इसी गाने की तरफ। और ये गाना आपके लिए लेकर आए हैं रूहानी कॉलेज। दिस लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज़ ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। और अगर आँखों में बसा है आपका डॉक्टर का सपना, या फिर सोच रही हैं मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर शानदार करियर को अपनाना, तो देर किस बात की है, आइए रूहानी कॉलेज, यहां सपने सच होते हैं। शानदार पढ़ाई से शानदार करियर तक का सफर रूहानी कॉलेज। और दोस्तों, रूहानी कॉलेज बहुत कन्वीनियंटली लोकेटेड है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मसाज थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, एक रिवॉर्डिंग करियर की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने पैशन को अपने करियर में तब्दील कीजिए। 905-731-2555 पर आप कॉल कर सकते हैं, पूरे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और या अगर आप जाना चाहें तो डेफिनेटली बड़ी कन्वीनियंटली लोकेटेड है 239 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रैम्पटन। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639।
3: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ। 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
1: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए। किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 23 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 ही हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 416-303-3639।
3: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाएं। कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे, किसी की हेल्प की जरूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिजाइन करना है, उसका आर्टवर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्टगेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए। 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए। 416-303-3639।
3: जी, 416-303-3639।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.
4: मम्मा, why don't you go to work now?
5: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
6: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
5: क्या वो मदद करेंगे?
6: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
7: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
6: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
7: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
8: लवी रवी शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ ऑन सीएमआर एफएम 101.3, 9 to 11। नंबर टू कॉल 416-303-3639 और डिजिटल मीडिया प्रमोशन कोर्स क्या का नंबर भी यही है। 23 मई से शुरू होने जा रहा है, जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए। लगातार ड्यूरिंग द शो आपको जानकारी दी जा रही है और थोड़ी सी देर में हम फिर से लौटेंगे इसकी जानकारी के साथ। जिन्होंने मिस कर दिया वो फिर से हमें ट्यून इन कर सकते हैं 416-303-3639। और चलिए अगले गाने की तरफ आपको लिए चलती हूँ। रफ़ी साहब की स्पेशलिटी थी कि वो जो भी गाना गाते थे, और कुछ गाने तो उन्होंने ऐसे गाए हैं कि जो उनको जानता नहीं था ज़्यादा कि वो एक्टर हैं कि सिंगर हैं, जो नए नए उस वक्त के उनको सुनने वाले थे वो सोचते थे कि शायद इस मूवी में यही हीरो हैं और वो हीरोइन के लिए गाना गा रहे हैं। और सो मैनी पीपल डिडंट नो दैट ही वॉज जस्ट प्लेबैक सिंगर, वो उनका मूवी में एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही गाना था, मूवी का नाम था सावन भादो। उस वक्त रेखा नई नई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, तमिल फिल्म इंडस्ट्री से, और उस वक्त के जो हीरो थे नवीन निश्चल, बड़े खूबसूरत बड़े हैंडसम हीरो थे। और जब उनको पता चला कि ये नई कोई लड़की है जो साउथ इंडिया से, साउथ इंडियन फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई है, और तो उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि किसको ले लिया, मतलब ना तो दिखने में अच्छी है ना उसकी फिगर अच्छी है, मतलब मेरे लिए यही मिली थी आपको लेने के लिए। तो डायरेक्टर ने किसी तरीके से पैसिफाई किया कि कोई बात नहीं, आप काम कर लीजिए इनके साथ ही, ये साउथ इंडिया में अच्छा काम करती हैं। तो इस तरह रेखा उस वक्त शी वॉज़ नॉट वेल मेंटेन्ड, और उन्होंने फिर अपनी अपने ऊपर काम किया एंड उसके बाद तो द रेखा वो बन गई। लेकिन यहाँ बात करेंगे सावन भादो मूवी की और यहाँ बात करेंगे रफ़ी साहब की सिंगिंग की। आप ये गाना सुनिए उनकी आवाज़ में और आपको लगेगा ही नहीं कि वो फिल्म में नहीं है। और कान में झुमका ये गाना आप ही के लिए, और आप सभी की वाइफ्स, गर्लफ्रेंड जो भी हैं वो अगर नाराज़ हो गई हैं तो ये गाना उनको ज़रूर गाकर सुनाइए, या फिर ये प्ले कीजिए, या उनसे कहिए लवी रवि शो को ट्यून इन करने 416-303-3639।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा रंग।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
0: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
1: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
4: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
3: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
5: दर्द कमर का हो या जोड़ों का, परेशानी डायबिटीज की हो या शाटे का पेन हो, जोरों का स्ट्रेस और एंग्जाइटी की दिक्कत हो या मसला बे औलाद जोड़ों का, बात करें आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी के साथ, क्योंकि ये 8 जनरेशन से सिर्फ आयुर्वेदा में आपको सेवाएं दे रहे हैं। इंडिया से खालिस हर्ब्स लाकर आपके लिए ऐसी दवा तैयार करते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी, शाटे का पेन, नेक पेन, लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस, स्किन डिजीजेस या किसी भी तरह के जनरल हेल्थ इशू के लिए कॉल कीजिए आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी। 437-438-3399। इट्स 437-438-3399।
6: चलो एक नज्म लिखते हैं किसी के नाम करते हैं, चलो एक नज़म लिखते हैं किसी के नाम करते हैं, मगर ये सोचना है अब कि उसमें ज़िक्र किसका हो, कि उसमें बात किसकी हो, कि उसमें ज़ात किसकी हो। और ये भी फ़र्ज़ करते हैं कि हम जिस पे नज़म लिखते हैं हमें उससे मोहब्बत है, हमारे सारे जज्बों को बस उसकी ही ज़रूरत है। चलो एक काम करते हैं कि हम जो नज़म लिखते हैं तुम्हारे नाम करते हैं, तुम ही उनवान हो उसका, तुम्हारा जिक्र है उसमें, तुम्हारी बात है उसमें, तुम्हारी जात है उसमें। चलो एक काम करते हैं, चलो एक नज़म लिखते हैं तुम्हारे नाम करते हैं, चलो एक नज़म लिखते हैं तुम्हारे नाम करते हैं।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ। 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
1: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए। किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 23 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं, या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 416-303-3639।
3: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाएं। कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे, किसी की हेल्प की जरूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिजाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्गेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए। 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए। 416-303-3639।
3: जी, 416-303-3639।
4: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
5: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the Mogit superstar. Mogit residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
6: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ
7: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ
8: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 Kanda Optical the name you can trust
9: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को

0: दिस इज लवी डवी शो, 10:12 का वक्त है और वेंसडे की बड़ी खूबसूरत सी ये सुबह है। और आमिर, जब मिडल ऑफ द वीक में आते हैं ना, वेंसडे का दिन होता है मंडे ट्यूसडे का जो भारी भरकम वजनी टाइप के जो दिन मॉन्स्टर टाइप के निकल चुके होते हैं, और थर्सडे फ्राइडे दो दिन आने वाले दिन होते हैं जो आसानी से गुजर जाते हैं वीकेंड के इंतजार में, तो वेंसडे की जो दोपहर होती है ना या वेंसडे की सुबह होती है वो एक कंफर्टेबल से जोन वाली फीलिंग आ जाती है। आपको आती है?
1: मैं हफ्ते के किसी भी दिन कंफर्टेबल नहीं होती। एवरी डे इज अनकंफर्टेबल डे।
0: ये भी एक बहुत अच्छी चीज है जिंदगी में, बेचैनी, अनकंफर्टेबल, ये थोड़ी सी रहनी चाहिए तभी इंसान आगे बढ़ता है।
1: मुझे लगता है कि अगर आप प्रोएक्टिव रहना चाहते हैं, यानी किसी भी परेशानी, किसी भी मसले, किसी भी अजियत के आने से पहले उसके बारे में बाखबर रहना चाहते हैं या उसके बारे में रद्दअमल के लिए तैयार रहना चाहते हैं, तो बेहतरीन अप्रोच ये है कि अपने आप को आराम की आदत मत डालिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कोई एक्टिविटी, कोई सरगर्मी, कुछ आना जाना, कुछ करना, इसमें आपको अपने आप को मगन और मसरूफ रखना ही होगा अगर आपको एक अच्छी, बेहतरीन और कामयाब जिंदगी गुजारनी है। लेकिन फुर्सत भी बहरहाल जरूरी है, उसके लिए एक मुकर्रा वक्त जरूर रखिए अपने आप को देने के लिए, जिसे मी टाइम कहते हैं। और वो मी टाइम लोग मोबाइल फोन पर गुजार देते हैं, डिफरेंट डिजिटल मीडिया वेबसाइट्स पर गुजार देते हैं, रील्स देखते रहते हैं। याद रखिए, वो मी टाइम नहीं होता। आपका अपना वक्त वो है जो आप किसी समंदर के किनारे बैठ के किसी गहरी सोच में मुबतला होकर गुजारते हैं। आपका अपना टाइम वो है जो आप कोई किताब पढ़ने में गुजारते हैं। आपका अपना टाइम वो है जो आप दोस्तों के साथ खुशगप्पियों में गुजारते हैं। आपका अपना टाइम वो है जो आप चहलकदमी के लिए, यानी वॉक करते हुए, सैर करते हुए, इधर उधर के नज़ारे देखते हुए गुजारते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वाकई अगर आप अपने आप को क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाइए और ये जो कुदरत ने, फितरत ने खूबसूरत मंजर आसपास दिए हैं, इनमें खो जाइए। गो के कुछ लोग चेहरों में भी खो जाते हैं, लेकिन फितरत में खो जाना भी काफी मुफीद साबित
0: जी है। बिल्कुल, कहते हैं बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, फिक्र। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की फिक्र, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं।
1: आंखें तो क्या क्या नहीं बोल जाती, क्या क्या नहीं कह जाती, और उनमें एक राज ये भी छुपा हुआ होता है कि उनको अल्फाज की हाजत नहीं होती
0: जी।
1: जो वो कहना चाहती हैं बिना अल्फाज इस्तेमाल किए हुए कह जाती हैं, और सबसे बड़ी चोर होती हैं जो दिल को चुरा लेती हैं। और अगर आंखें बहुत रोशन हों, खूबसूरत हों और

0: कुछ आंखें होती ना जिनमें जिंदगी बसती है, जिंदगी रहती है, आप उनकी तरफ देखते हैं तो आपको यूं लगता है जैसे दो सितारे टिमटिमा रहे हैं
1: जी।
0: मोटी आंखें, खूबसूरत आंखें, और उनमें अगर किसी ने काजल भी लगाया हो और काजल भी भारी बरकम किस्म का लगाया हो और उस पर दुमदार काजल लगाया हो तो मुझे
1: अभी
0: लगता है कि
1: आराधना मूवी का गाना लगाया था शर्मिला टैगोर का।
0: ओह माय गॉड,
1: उन्हें देख के आपको अपने किसी की जरूर याद आती है।
0: दुमदार सुरमा लगाती थी वो।
1: अच्छा,
0: तो मुझे लगता है वही एक ट्रेंड, रुझान या फैशन एक बार फिर से बदल के वापस आ रहा है। लोगों ने वही दुमदार काजल फिर से पहनना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा आंखों पे लगा लेती हैं, थोड़ा सा ऊपर भौंहों पे भी लगा लेती हैं, तो एक ही काजल से दोनों काम हो जाते
1: हैं। काम हो जाते हैं ना। तो एक जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक पंथ दो काज। और आंखों की बात चली है तो तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, मूवी का नाम है जाने अनजाने, 70s की ये फिल्म है और इस गाने की तरफ आपको जरूर लिए चलते हैं।
0: हाँ
1: जी, कुछ
0: आप लेकिन आपने कहा नीली नीली आंखों के, तो क्या ये पीली पीली आंखों के भी हो सकते हैं?
1: नहीं, सिर्फ नीली, थोड़ी गुंजाइश ब्राउन की रहेगी।
0: गुलाबी आंखें हो सकती?
1: नहीं,
0: गुलाबी नीली पीली काली।
1: गाना था एक गुलाबी आंखें जो तेरी
0: देखी,
1: तो ये मतलब गुलाबी आंखें तो पिंक आए, वो तो एक प्रॉब्लम होती है आंखों की जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता
0: है। उन दिनों नए नए लेंस इजाद हुए थे, आपको शायद पता नहीं।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो चूंकि किसी भी रंग की आप आंखें कर सकते थे, काली, सुर्ख, लाल, और आपको तो पता है लाल आंखें किसकी होती है, मतलब किसी भी तरह की आंखें आप बना सकते हैं, लेंस का कमाल था ये। तो जब पहली बार उन्होंने लेंस लगाए गुलाबी रंग के, तब ये गाना आया था गुलाबी आंखें जो तेरी देगी।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: तो इस डिटेल्ड रिसर्च जो आमिर ने की मुख्तलिफ रंग की आंखों की, जिसमें नीली, ब्राउन, गुलाबी, लाल, पीली।
0: ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आजकल AI क्या कर रही है, AI कहती है कि अगर आपको एक बच्चा चाहिए।
1: अच्छा।
0: नहीं नहीं, शादी हुई है आपकी और आपको एक बच्चा चाहिए जिसकी आंखें, मान लीजिए आप चाहते हैं नीली हो।
1: अच्छा।
0: चेहरे का रंग बिल्कुल फेयर चाहते हैं, जैसे गोरा रंग कहते हैं आप, उसके होंठ जरा थोड़े से पतले चाहते हैं, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है, और मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो इस तरह की आंखें अगर आप चाहते हैं वो भी मुमकिन है, कद कितना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, और जो बच्चा है उसकी परवरिश जरूरी नहीं है कि माँ अपने पेट में करे, वो एक मशीन में भी हो सकती है। उन्होंने मशीनें वो लगा दी अमेरिका में, जापान में, चीन में, वो मशीनें लग गई हैं कि अगर बच्चे की परवरिश आप मशीन में कराना चाहते हैं, जो फिगर बिगड़ जाता है ना इसलिए, तो तो वो तमाम ख्वातीन जो बच्चा पेट से पैदा नहीं करना चाहती, मशीन की मदद लेना चाहती हैं और अपनी मर्जी का बच्चा पैदा करना चाहती हैं, काला, पीला, नीला, गोरा, बड़े कद का, छोटे कद का, जिस तरह का भी, जिस मिजाज का भी, इवन
1: मतलब जिस तरीके से बेबी आप पैदा ना कहें उसको, बेबी मैन्युफैक्चर
0: कहें, मैन्युफैक्चर कहें, यस यस
1: प्लीज,
0: यस,
1: पैदा ना कहें
0: तो
1: पैदाइश दूसरी चीज है।
0: तो आज के दौर में, आज के वक्त
1: ये मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल है,
0: हो गया मुमकिन, पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट नाउ, लोगों ने ये करवाना शुरू कर दिया है, तो अब
1: रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं,
0: 100% पॉजिटिव हैं, जिस तरह का चाहिए आपको बच्चा उसी तरह का मिल जाएगा, टेलर मेड बच्चा जिसे कहते हैं। तो इसलिए आने वाला वक्त कोई इतना आसान वक्त नहीं है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, जो सोच के घोड़े दौड़ाते हैं कि ये दुनिया किस तरफ चल निकली है। अगर माँ बच्चे को अपने पेट में नहीं रखेगी तो माँ की ममता का वो एहसास कहाँ से जागेगा? मेरा ख्याल है वो मशीन महसूस करेगी जिसने पाला होगा बच्चे।
1: ममता वहाँ है, बच्चा यहाँ है, ममता वहाँ है,
0: ममता वहाँ है। आप सुन रहे हैं लवी डवी शो और आज शिवानी आपको सुनवा रही हैं बहुत मधुर से गीत
1: जी, फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने, और शम्मी कपूर, लीना चंद्रवरकर पे फिल्माया गया बहुत खूबसूरत सा आंखों के ऊपर ये गाना।

0: नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए।
1: हाँ
0: और दोस्तों, अगर दिल पे थोड़ा सा बोझ है कि हमारा अपना बिजनेस है जिसको हम
1: जी
0: प्रमोट नहीं कर पा रहे, दूसरों के बिजनेस को प्रमोट होते देखते
1: जी
0: हैं, लगता है बड़ी अच्छी टैग लाइन्स के साथ उन्होंने अपने बिजनेस को एक नाम दिया है और नए नए तरीके से उसको प्रमोट कर रही
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: तो दिल चाहता है कि हमारा भी एक बिजनेस है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जो खुद का बिजनेस होता है, जिसको हमने खुद सींचा होता है अपने टाइम देकर और बाकी चीज़ों के साथ, तो लगता है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट वो लोगों तक जाए, वो कॉन्सेप्ट जाए, और वो हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो ऐसे में डिजिटल मीडिया प्रमोशन कोर्स जो है ये परेशानी सॉल्व कर सकता है। आपने
1: बिल्कुल
0: आंखों की
1: बिल्कुल
0: परेशानियां सॉल्व कर दी हैं, तो ये भी जरूर कर दीजिए।
1: शिवानी, जब मैं आपकी बातें सुनता हूं तो मुझे यूं लगता है जैसे मैं किसी 200 साल की खातून से बात कर रहा हूं। इतनी सियानी बातें आप कहां से लाती हैं? मतलब आपने तजुर्बे कर करके सीखी हैं, लोगों ने दुख बहुत दिए हैं आपको, लोगों ने खुशियां बहुत दी हैं आपको, लोगों ने आपका दामन खुशियों से भर दिया है, या आपको अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छी कंपनी मिली है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस मिली हैं। इतनी सियानी बातें तो कोई बहुत पुरानी खातून कर सकती है, और मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि आप इतनी पुरानी है नहीं।
0: जी हाँ, 200 साल से थोड़ा तो कम। हाँ,
1: चलो
0: दो सौ
1: 198 कर लेते हैं, चलो।
0: अभी आमिर एक एआई का कुछ मुझे वाकया बता रहे थे, तो बहुत दूर नहीं वो दिन जब आप हमें 200 साल का भी पाएंगे
1: ओ
0: आमिर।
1: यस यस
0: बिल्कुल,
1: यस, यू आर
0: डेफिनेटली,
1: राइट, है ना
0: एक मशीन ये भी करेगी, है ना। मतलब
1: शिवानी? मैं आपको बता दूं, जो रिसर्च हो रही है, आप मेरी रिसर्च को हमेशा कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़े कह देती हैं, ये अच्छी बात नहीं है, और अपनी रिसर्च आप बड़ी ठोक बजा के बताती हैं और बड़ा ऑथेंटिसिटी उसकी दिखाती हैं, लेकिन मेरी रिसर्च को आप 2 नंबर रिसर्च कह देती हैं, लेकिन ये सच्ची वाली सही
0: अच्छा,
1: वाली रिसर्च है।
0: ठीक है।
1: और रिसर्च ये है कि जो उम्र की तवालत है, यानी तवीलुल उम्री जिसे कहते हैं, यानी उम्र का लंबा होना, उस पर तो काम बहुत देर से चल रहा था
0: अच्छा।
1: और वो किसी हद तक लोगों को कामयाबी भी हुई, यानी लाइफ स्पैन बढ़ाने में। अब लिटरली ये मुमकिन है कि 100 साल से ज़्यादा लोग जी सकेंगे आसानी से।
0: अच्छा,
1: जी हाँ, ऐसी मेडिकेशन, ऐसा तरीका, ऐसा उसलूब उन्होंने दरियाफ्त या ईजाद कर लिया है अमेरिका में। लेकिन इससे अगली रिसर्च बड़ी खतरनाक है।
0: अच्छा।
1: हाँ, अब साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं कि इंसान की जो डेथ है, इंसान की जो मौत है, उसको अवॉइड किया जा सके,
0: ओ,
1: इंसान हमेशा जी
0: अमर
1: सके,
0: रहे।
1: अमर रहे, जैसे प्यार अमर हो जाता है, इसी तरह इंसान भी अमर रहे और कभी इस दुनिया से जाए ही ना।
0: जी
1: उस पर बड़ी दकीक तहकीक हो रही है, बड़ी बारीक बीनी के साथ तहकीक हो रही है, और उसके लिए वॉलंटियर्स मांगे उन्होंने, तो मैंने आपका और अपना नाम दे दिया कि जिन पर वो तजुर्बे कर
0: देखिए, हम
1: सकें।
0: किसी के काम आ सकें, प्यार हमारा अमर रहेगा वाला जो टैगलाइन है, तो कोई कोई अगर ये गाने रोज गाते हैं प्यार हमारा अमर रहेगा, तो
1: जी,
0: प्यार जो अमर रहे और आप दुनिया से चले जाएं कैसे हो
1: और
0: सकता है?
1: ऐसे तो नहीं हो
0: तो
1: सकता
0: आप
1: ना।
0: भी अमर रहे ना।
1: देखिए, उन्होंने कहा है कि हमेशा जिन लोगों को जीना है वो अपने आप को वॉलंटियर करें, हो सकता है कि वो दवाई उन पर काम कर जाए या जो उन्होंने तहकीक किया वो उन पर काम कर जाए और वो हमेशा जिए। ठीक है, चलो हम और आप, नाम मैंने तो दे ही दिए, अगर उन्होंने बुला लिया हमें, चलो हमेशा ना जिए तो 300-400 साल ही चलो जी लें, तो इतना ही
0: हाँ, इतना
1: काफ़ी
0: काफी है, मतलब
1: है ना।
0: कुछ कुछ तो कर ही
1: तो
0: लेंगे
1: आधा
0: इतना।
1: तो हम जी चुके, 150-200 साल तो जी चुके, चलो एक 100 साल और जी लेंगे हम, है ना।
0: किसी के काम ही आ सके हम वॉलंटियर करके। आप में से कितने लिसनर्स सुन रहे हैं, अगर हो सकता है कि आगे जाने के बाद आप सोचें कि इस रिसर्च का हिस्सा बने, इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, तो आमिर आप लोगों का नाम भी डाल देंगे। 416-303-3639 पे आप कॉल कीजिए,
1: हाँ,
0: और आमिर की काफ़ी चलती है ऐसे डिपार्टमेंट्स में।
1: और साथ में वो पैसे भी देते हैं, पता, वॉलंटियर करने
0: अच्छा,
1: के। हाँ, कि मतलब उम्र भी लंबी हो जाए और आपको मुफ्त का पैसा मिल जाए, और क्या चाहिए आपको।
0: लो जी, ऐसे हालात में ये भी काम हो गया।
1: शिवानी, आप देखें, बैठे बिठाए अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि आप 17 साल की हो जाएं दोबारा, तो क्या मजा आ जाएगा आपको जिंदगी में, है ना?
0: नहीं,
1: होना चाहेंगे
0: मैं
1: आप?
0: नहीं।
1: आप ऐसे ही 110 साल की रहना चाहती हैं?
0: हाँ, मैं 17 की नहीं होना चाहती, क्योंकि जब मैं 17-18 साल की थी ना, तो मैं मम्मी पापा, मैं बहुत पढ़ाई करती थी, स्कूल से घर आते थे, लाइफ में ज़्यादा फन नहीं था, सिर्फ पढ़ते रहते थे बस्तों के बोझ तले, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: पढ़ाई की वजह से आप दोबारा यंग
0: हाँ,
1: नहीं
0: मैंने
1: होना
0: बहुत पढ़ लिया।
1: चाहते। अभी देखो वक्त वक्त की बात है, आप कहती हैं आपने बहुत पढ़ लिया, आज भी कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनकी उम्र 35-40 साल 45 साल हो सकती है और वो बेचारे पढ़ने जा रहे हैं, आज भी हैं ऐसे लोग
0: उनमें जो ये बात कर रहे हैं वो भी उनमें शामिल हैं, जो रोज पढ़ने जाते हैं इन पर्सन, ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम या स्टडी फ्रॉम होम नहीं, इन पर्सन पढ़ने जाते हैं। लेकिन आप, मैंने पढ़ लिया।
1: देखो शिवानी, मेरा पढ़ाई का तस्वीर कुछ अलग है। हम वो लोग हैं जिन्होंने तख्तियां लिखी हैं और तख्ती के नीचे कच्ची पेंसिल से, जैसे लेड पेन कहते हैं आजकल यहाँ,
0: और उसकी नोक टूट जाया करती थी,
1: उसकी नोक
0: अक्सर कटते थे उसको।
1: नहीं, आपने मतलब उसको कोई कमजोर आदमी समझा हुआ था, उस पर इतना प्रेशर लगा देती थी वो बेचारा टूट ही जाता था।
0: कई बता ना कि अच्छी राइटिंग के लिए गड़ा गड़ा के लिखते हैं हम
1: तो वो कच्ची पेंसिल से लिखा करते थे। इसे हम कहते थे वहां रीजनल लैंग्वेज में पूर्णे, तो वो कच्ची पेंसिल से लिखते थे। वालिद साहब लिखते हैं, बड़े भाई लिखते हैं, मास्टर साहब लिखते हैं, वो लिखा और उसके ऊपर ऊपर स्याही से लिखा जाता था।
0: Exactly.
1: और वो स्याही ऐसी थी कि उसके गहरा ना होने पर, गहरा स्याह काला ना होने पर भी दो हाथ लग जाते थे कि ये दवात आपने ठीक क्यों नहीं बनाई, यानी फॉरगेट अबाउट राइटिंग, वो तो उसकी बात ही तो बहुत बाद में आएगी कि तुमने ठीक लिखा या नहीं लिखा या सीधा लिखा या उल्टा लिखा, ये अलग बात है। लेकिन अगर आपकी दवात स्याह नहीं है तो उस पर भी अलग सजा है,
0: अलग सजा।
1: अगर आपको वो तख्ती सही तरह से पहुंचनी नहीं आती उस पर भी अलग सजा, अलग है सजा। उसको ठीक से सुखाया नहीं है उस पर भी अलग सजा। इतनी सजाएं थी कि आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त मुझे मालूम हो रहा है कि आप 17 साल की दोबारा नहीं होना चाहते।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे घर में जैसे आजकल तो बड़ा अच्छा ना कि किसी किसी वर्ड से आपको स्पेलिंग याद करने की बच्चों को जरूरत ही नहीं है। एक लव्स ई डाल दीजिए उसके सारे वर्ड्स आ जाएंगे, आपने कर लीजिए। हमारे संडे को डिक्टेशन जो होती थी ना पहले, आप
1: इमला कहते उसको,
0: हाँ इमला, तो संडे को न्यूज़पेपर का वो पढ़ के और उसका जो एडिटोरियल होता है वो पढ़ के, जो टफ वर्ड्स होते थे जो उसके डिक्शनरी में मतलब निकालिए और उसको अपने सेंटेंसेस में लिखिए,
1: तो जुमले में इस्तेमाल की।
0: छुट्टी एक दिन की होती थी संडे, सैटरडे तो बैक होम में छुट्टी का कोई कल्चर ही नहीं था।
1: मैंने जो आपके बारे में सुना है आपकी हर रोज ही छुट्टी होती थी, मतलब कोशिश करती थी आप?
0: नहीं, कोशिश करती थी लेकिन ये कोशिश नाकाम नहीं होती थी। तो संडे को भी ये माना जाता था पेरेंट्स के थ्रू कि आप सारा दिन खेल रहे हैं, शाम को भी खेल रहे हैं, बहुत है, अब 2 घंटे डिक्टेशन दीजिए, तो जैसे कि आपको स्पेलिंग याद रहे, वो सब रहे। आज की डेट में तभी स्पेलिंग,
1: हाँ, मैं तो आज तक बस अब्बा जी की डिक्टेशन याद है कि ये करो वो करो, ये कर लो वो कर लो, वो बहुत मुश्किल डिक्टेशन होती थी। अखबार की डिक्टेशन को तो हम ओवर रूल कर ही लेते थे किसी तरीके से।
0: अब खेलने जाओ, अब पढ़ने बैठ जाओ, अब याद करो, अब स्कूल चले जाओ।
1: क्या गुलामाना सी जिंदगी थी, है ना?
0: हमारे वहाँ हमारे दूरदर्शन पे अचानक प्रोग्राम्स आते आते एक शहनाई टाइप बजने, शहनाई नहीं सॉरी, वो एक जो सैड ट्यून होती है, हाँ वो बजती थी, हाँ तो हम समझ जाते थे कि ऊपर वाला आत्मा को शांति दे, लेकिन कोई चल गए तो कल छुट्टी होगी।
1: हाँ, छुट्टी के इंतजार में रहता था इंसान के किसी तरीके से।
0: कितने ऑनेस्ट है ना, ये बात ऑन एयर कह रहे हैं हम।
1: जी जी,
0: तो मैं 17 साल की वो सब यादें जो है, आई एम लिविंग द बेस्ट लाइफ ऑफ माय लाइफ
1: विदाउट स्टडिंग। आप सुन रहे हैं लवी डवी शो, आपका हमारा ये साथ जुड़ा रहेगा आज 11 बजे तक। स्टे ट्यून्ड।

0: और सह बात करें सात समंदर पार जाने की या सात समंदर पार से वापस आने की, तो वजह एक ही है। हम बैक होम भी अच्छा ही काम कर रहे थे, वहाँ रहते थे, खुशगप्पियाँ, यार दोस्त, अपने पराए, वालिदैन, सब लोग वहाँ मौजूद थे। ज़िंदगी बहुत बेहतरीन और बेस्ट नहीं तो कम अज़ कम ऐसी ज़रूर थी जिसमें थोड़ी थोड़ी खुशियाँ, थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ, कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा चल रहा था। और फिर हमने ये इरादे किए कि हम परदेश जाएँ, किसी और मुल्क में जाएँ। आपको याद पड़ता है कि ये फैसला आपने क्यों किया था? एक ही वजह होगी कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएं या और भी स्ट्रांग हो जाएं, पैसा आ जाए आपके पास, खुशहाली आ जाए आपके पास। हम यहां आए और हमने नौकरियां करनी शुरू कर दी और नौकरियों में ग्रोथ बिल्कुल उतनी हुई जितनी के हमारी सोच आगे बढ़ सकी, यानी ना हमारी सोच आगे बढ़ी और ना ही नौकरियों में तरक्कियां हो पाई। हमने अगर $1,00,000 कमाया तो हमने टैक्स की मद में $35,000-40,000 गंवा दिया। हमारे पास, हमारे हाथ में वही $4,000-5,000 आए $1,00,000 साल का कमाने के बावजूद भी, जिन्होंने सिर्फ हमारा किचन ही चलाया। इसलिए जरूरी है अपने कारोबार कीजिए। याद रखिए, तारीख में वही कम्युनिटीज कामयाब हुई, उन्होंने ग्रो किया जिन्होंने अपने काम किए हैं, कारोबार किए, बिजनेस किए। और आपने घबराना इसलिए नहीं है कि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ये पक्का, सच्चा, खरा, शफाफ वादा है कि आपको वो कारोबार करवा के ही दम लेंगे। बहुत सी लिस्टिंग्स हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत से जरिए हैं, बहुत से तरीके हैं और पूरा फाइनेंशियल अरेंजमेंट आपको करके देते हैं। हसीब शेख, वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू वेरी मच जी फॉर नाइस इंट्रोडक्शन, काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। और स्पेशल थैंक्स के आप उस दिन तशरीफ लाए और आपका जो थॉटफुल और नॉलेजफुल आपकी कंपनी थी उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टू।
2: हसीब साहब, मैं शिवानी बात कर रही हूँ, आपका वेलकम लवी डवी शो पर। और अभी आपके इंटरव्यू से पहले जब आप इंटरव्यू पे आने आ रहे थे तो हम, मैं और आमिर बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल के वक्त में चाहते हैं कि अपना काम हो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, कंफर्टेबल लाइफ करें, अपने मास्टर, अपने मालिक खुद हों। तो आप जब आते हैं तो ये जहन में सवाल आता है कि ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस आपके पास अवेलेबल हैं जो हमारे लिसनर्स उठा सकते हैं इसका और अपना एक कारोबार शुरू कर सकते हैं।
1: थैंक यू वेरी मच जी शिवानी जी, आपके साथ आज पहला हमारा वो इंटरेक्शन होगी। आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। हमारे पास इस वक्त ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड, जो इजी टू, जिसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं होती, जिसमें कोई आपको क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये होता है रेस्टोरेंट बिजनेस। ये इसमें एक होता है QSR, जिसको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कहते हैं, जिसमें आपको विद इन 2 weeks टाइम में आपको ट्रेन कर दिया जाता है, वेल ट्रेन्ड हो जाता है बंदा, एक वीक में भी हो जाता है, लेकिन मेरे जैसा निकम्मा भी 2 weeks में हो जाता है। तो इजी टू गेट इट डन है। तो हमारे पास ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स है। ब्रैम्पटन में हमारे पास फ्रेंचाइज बिजनेस है, ब्रैम्पटन में ही हमारे पास नॉन फ्रेंचाइज बिजनेस है, ब्रंटन में ही हमारे पास एक शवरमा की फ्रेंचाइज है, एक बर्गर की फ्रेंचाइज है। हमारे पास राजों महाराजों वाला, अगर आपने बड़ा कोई सेटअप करना है तो वो सेटअप हमारे पास यहाँ पर मिसिसागा में है।
2: अच्छा।
1: यानी डेफिनेटली अगर आप हैमिल्टन के एरिया में देख रहे हैं तो हम आपको हैमिल्टन के एरिया में, अगर आप ओशवा या इस तरह देख रहे हैं तो उस एरिया में भी है
2: जी।
1: बाकी रह गया कि दूसरे नंबर पे आ जाता है, उस बिजनेस को कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर। इसमें भी कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, सर ये होता है कि बंदे ने काम करना हो। तो हमारे पास कुछ कन्वीनियंस स्टोर और डॉलर स्टोर है, अगर कोई बंदा इसमें इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप एटलीस्ट एज ए सेल्फ एम्प्लॉय, आप दोनों बिजनेस जो मैंने बताए हैं एज ए सेल्फ एम्प्लॉय, आप $8,000-10,000 टेक होम आप कर सकते हो।
0: वेरी नाइस,
2: क्या बात है,
0: बहुत अच्छा।
1: $8,000-10,000 आपने, जैसे अभी अमर साहब ने बताया था कि जो अब आप $1,00,000 बनाते हो, $35,000-40,000 आपका टैक्स में चला जाता है, लेकिन ये आपका सेल्फ एम्प्लॉय है, यहाँ पर आपको आपका अकाउंटेंट ज्यादा गाइड कर देगा, वो आपको बता देगा कि आपको शायद 5-8% भी ना देना पड़े
2: जी।
1: तो इस तरह की इनकम लेनी है तो आपको डेफिनेटली हमें कॉन्टेक्ट करना होगा। ये रेडियो शो जो होते हैं ये हमें आपसे मिलाने का एक रास्ता होते हैं। लेकिन आपको बड़ा बिजनेस चाहिए, होटल मोटल गैस स्टेशन चाहिए या छोटा बिजनेस चाहिए वो लेना है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे आपके पास बैठे हैं। तो अमर साहब के रेफरेंस से मैं अमर साहब को बता रहा था उस दिन आए थे कि हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग है
0: अच्छा
1: फॉर सेल है और ये कोविड के दौरान बंद हो गया था तो उसके बाद उन्होंने खोला नहीं। तो ये तकरीबन 8 acre की लॉट है और इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। तो इस तरह की वंडरफुल अपॉर्चुनिटी लेनी है तो डेफिनेटली बहुत से लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हम कहीं पे ऐसी लोकेशन मिल जाए जहाँ पे हम डे केयर सेंटर बनाए, ऐसी लोकेशन मिल जाए जिसमें यहाँ पे हम वेयर हाउस बना लें, तो IT हाउस बना लें, कोई मेडिकल ओल्ड एज हाउस बनाना चाह रहे हो, कोई इस तरह का कुछ भी करना है या कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना है, तो वो बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं। ये बनी बनाई बिल्डिंग है, अगर आप खुद बनाओगे तो शायद आपको $5 million की बने, और ये 1.75 मिलियन की बनी बनाई विद 8 acre लॉट जिसमें फुटबॉल ग्राउंड भी है, बास्केटबॉल क्लब भी है, सब कुछ आपको मिल जाता है।
0: वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यहाँ शेख साहब का नंबर आपको दे रहे हैं, आपको किसी रेस्टोरेंट का तजुर्बा है, नहीं है तो तजुर्बा मिल जाएगा, काम आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो काम सिखा देंगे। बहुत से रेस्टोरेंट चलते हुए रनिंग, कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, किसी मिनिस्ट्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, चलता हुआ काम है। इधर आप सौदा मुकम्मल करेंगे, इधर आपकी क्लोजिंग होगी, अगले दिन पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। या फिर किसी स्कूल की बिल्डिंग लेना चाहते हैं, कोई गैस स्टेशन लेना है आपको, तो ये नंबर रहेगा शेख साहब का, यही मिलाएंगे आप 647-988-4449। कारोबार कीजिए, अगर आपको तरक्की की मंजिलें तय करनी है, यहां कनाडा आने का सही मकसद या ऑब्जेक्टिव पा लेना है, मकसद पूरा करना है यहां आने का, तो फिर पैसा बनाइए। और अगर आपके पास पैसा है, अगर आपका अपना कारोबार है, तो दुनिया वाकई आपके पीछे होगी, आप दुनिया को चेज नहीं करेंगे। यहां है नंबर 647-988-4449। बिजनेस के बारे में मशवरा शेखों से बढ़ के भला कौन दे सकता है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं शेख साहब, कोई एक ऐसा मशवरा, कोई एडवाइस, कोई बात फाइनेंशियल अरेंजमेंट के हवाले से कि अगर किसी के पास $1,00,000 है और वो कोई रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है तो क्या उसे कोई गवर्नमेंट की हेल्प भी मिल सकती?
1: जी, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है जी इस मामले में, और अगर आप आते हैं तो कनाडा स्मॉल बिजनेस लोन को आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन है।
0: अच्छा।
1: जिसके लिए सबसे जरूरी होता है कि जी मैं लेना है, जी मैं अपने यार रखना है या मैं जॉब करनी है, तो कनाडा स्मॉल बिजनेस लोन मोस्टली इंकरेज करता है अगर आप खुद काम कर रहे हैं और आपके पास क्रेडिट स्कोर जो है वो 750 प्लस हो और आपके पास प्रूफ ऑफ डाउन पेमेंट हो कि आपके पास है। बाकी BDC लोन का भी यही है कि 35% डाउन पेमेंट होता है, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट पे डिफरेंट होता है। एनीवे डूएबल है अगर अच्छा। आप काम करना चाहते हैं, आप नियत कर लो, मुराद हम खुद ही ले आएंगे, क्योंकि आप कदर आपका नसीब शेख हसीब शेख
0: हसीब,
1: इसको मिस नहीं करना। आप नियत बनाओ, आप बिजनेस करवाना हमारा काम है।
0: तो शेख साहब आपने कोई डाइट प्लान शुरू किया है? मैं आपसे मिला था कुछ रोज पहले तो आपने वजन बहुत कम किया, बड़े स्लिम स्मार्ट नजर आ रहे हैं, तो मुझे तो कोई लगता है आपकी उम्र भी 15 साल रिवर्स हो गई।
1: तो जी आपकी आपके इंतजार में और आपकी जुदाई में
0: I like it, I love it. हसीब शेख को फोन कीजिए, कमाल के आदमी, इनसे जरूर मिलिए, कारोबार कीजिए, तरक्की कीजिए, इस मुल्क में आने का अपना मकसद पूरा कीजिए। 647-988-4449 4949. शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए.
1: थैंक यू.
0: जी, और बात करें हम आज की इस खूबसूरत सुबह की, तो सुबह का ये मौसम या शाम में बारिश का ये मौसम कुछ शख्सियात का बहुत पसंदीदा रहा है. एक बहुत खूबसूरत शायर हैं और उनकी एक गजल मुझे याद आ रही है. हिजर करते या कोई वसल गुजारा करते, हम बहरहाल बसर ख्वाब तुम्हारा करते.
2: क्या बात है.
0: अब तो हमें मिल जाओ तुम कि तुम्हारी खातिर, कितना दूर आ गए हम दुनिया से किनारा करते.
2: क्या बात है.
0: और जरफे आई ना कहां और तेरा हुस्न कहां, हम तेरे चेहरे से आईना सवारा करते.
2: अमेजिंग.
0: और महवे आराइश रुख है वो कयामत सरे बाम, आंख अगर आईना होती तो नजारा करते.
2: Beautiful.
0: और एक खास शेर है एक खास शख्सियत के लिए कि जब है ये खानाए दिल आपकी खलवत के लिए, जब है ये खानाए दिल आपकी खलवत के लिए, कोई और आए यहां भला कैसे गवारा करते.
2: क्या बात.
0: हिजर करते या कोई वसल गुजारा करते, हम बहरहाल बसर ख्वाब तुम्हारा करते.
2: वाह, आमिर आपकी कंपनी में रह के शेर का उधार लेना मैंने भी बंद कर दिया. तो बशीर बद्र साहब की शायरी. ये चराग बेनजर है, ये सितारा बेजुबा है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है.
0: दूसरा कहाँ है.
2: वही शख्स जिस पे अपने दिलो जान निसार कर दूं, वही शख्स जिस पे अपने दिलो जान निसार कर दूं, वो अगर खफा नहीं है तो जरूर बदगुमा है.
0: वाह.
2: कभी पाके तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, ये जन्म जन्म का रिश्ता तेरे मेरे दरमियान है.
0: वाह वाह.
2: मेरे साथ चलने वाले तुझे क्या मिला सफर में, वही दुख भरी जमी है, वही गम का आसमान
0: है.
2: मैं इसी गुमा में बरसों बड़ा मुतमईन रहा हूँ, तेरा जिस्म बेतगैर मेरा प्यार जाविदा है. उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा
0: हम सफर कहाँ है. वाह.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639.

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584
3: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
4: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
2: लवी डवी शो, और इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे लेने का इजाजत, और कल होती है आपसे मुलाकात। आमिर और शिवानी आपसे कहना चाहते हैं हैव अ ग्रेट डे, अपना ख्याल रखिएगा, ड्राइव सेफ, और नंबर टू कॉल 416-303-3639। नमस्कार।
5: जिंदगी भी शाहराहों पर, रास्तों पर रवां दवां ट्रैफिक की तरह है। इन भागती दौड़ती गाड़ियों, रास्तों पर रवां दवां इन गाड़ियों में और जिंदगी की ट्रैफिक में एक ही फर्क है कि यह जिंदगी का रास्ता वन वे ही है। एक बार, एक दफा जिस रास्ते पर से गुजरेंगे आप, वहां दोबारा कदम रखने, पलटने का मौका मुयस्सर नहीं आएगा आपको। जहां से गुजर गए, जहां से चले गए, वहां लौटना नामुमकिन होगा। इसलिए जो कीजिए, जहां से गुजरिए, जिस रास्ते का हिस्सा बनिए, वहां एक मिसाल कायम कर जाइए, क्योंकि जिंदगी वहां वापस लौटने का मौका दे या ना दे ये आप नहीं जानते। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए आमिर तुफैल और शिफानी को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। And hey, you, I...

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर. It deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद ए मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR for advertising. Call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वेयर योर कार गेट्स द केयर.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
0: Cashpoint, one stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs, jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: Uh-huh.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. South Asian Unlimited Radio, जहां न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होंगी बिल्कुल अनलिमिटेड. एंटरटेनमेंट तो बहुत है लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल अनलिमिटेड. न्यूज और व्यूज तो हर जगह मिलेंगे लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल अनलिमिटेड.
3: यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor.
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। बाहर का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 17। आई डोंट नो इफ इट वॉज अ ग्लिच दिस मॉर्निंग, और अचानक मैंने AQI देखा आज अर्ली मॉर्निंग एट अबाउट 6 o'clock, एंड इट सेड 791, एंड आई हैव नो आइडिया इफ इट वॉज अ glitch on the phone, yeah, pata nahi kya tha, but then later on the AQI was at about 49. Right now it's at 55. I have no idea how true that is. Agar kisi ne dekha ho to let me know, 416-593-0055 pe. And sunset jo hai aaj wahi hoga takriban 8:35 pe. It's going to be that time of the year jahan par ab weather, we are going to have long days, and it's ab sun nikal gaya hai, shukar hai. And tomorrow's cloudy, sunny, 13. Friday beautiful weather, 20. Saturday ko usse bhi beautiful hai, 24 degree, and Sunday ko 22. Yeah, it's absolutely amazing weather. Mukesh saab ki awaaz mein Raj Kapoor saab par film aaya, ek din bik jayega maati ke mol, jag mein reh jayenge pyare tere bol. Exactly, sirf bol hi reh jate hain, yaadein reh jati hain, baaki sab cheezein jo hain कहां चले जाती हैं, nobody has any clue. 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है। 12:15 की अपनी हेडलाइंस बिल्कुल रेडी है। उससे पहले आयशा मुनव्वर जी से भी थोड़ी सी बातचीत जरूर करेंगे। आयशा मुनव्वर जी डेथ सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट हैं, और साथ ही साथ हमें अलग अलग तरह के, हमें पता चलता है कि भाई किस तरह से आपको छुटकारा मिल सकता है डेट से। शी इज़ नॉट ओनली अ डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट एज वेल एज अ इंसॉल्वेंसी काउंसलर, एंड अलग अलग ऑप्शंस डेट सेटलमेंट के दिए जाते हैं। ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओवर 30 इयर्स से आयशा मुनव्वर जी जो है कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। नंबर 416-428-2165, 416-428-2165, 416-428-2165 आयशा मुनव्वर जी का नंबर है। आयशा जी से थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आयशा जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर।
2: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज में है, कौन सी चीज का आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी, एंड वी हैव टू एडवाइज यू, और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती है। हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ निगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ, और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियां हो गई, बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीजें जो है वो सेव रहती हैं, और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें, और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल, व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं। वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली। और उसमें यह कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसिस दे देते हैं तो कई दफा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाए। बट एनीवेज फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन give us a call. My phone number is 416-428-2165. That is 416-428-2165. Thank you very much.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी. एंड नंबर एक बार मैं आयशा मुनव्वर जी का फिर से दे दूं. डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इंसॉल्वेंसी काउंसलर, ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. आज रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह से आई है. सुबह सुबह दोस्तों जो रिपोर्ट पढ़ने को मिली है, इट इज एब्सोल्युटली स्कैरी वेयर वी आर सीइंग सो मेनी मोर देन 37,000 कैनेडियंस फाइल फॉर इंसॉल्वेंसी प्रपोजल्स. सो you know, if you need any kind of help, you know Aisha Munawarji, 416-428-2165, 416-428-2165. Win lifetime trading, 905-206-1008. Har Saturday afternoon, 12:30 to 3:30, inka free seminar hota hai. Aap apni seat please reserve karwa lein. Chhoti si break lete hain, 12:15 ki headlines lekar foreign aate hain wapas.
3: Kaun hu main? Kabhi lagta hai, shor hu main. Kabhi lagta hai, maun hu main. ये समझ नहीं आ रहा आखिर कौन हूं मैं. कभी लगता है मुस्कुराहट हूं मैं, कभी लगता है घबराहट हूं मैं. खुद को रोज तलाशू आखिर कौन हूं मैं. कभी लगता है मन

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हों या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
5: Real estate is not easy business, और जो easy नहीं उसे easy बनाते हैं Realtor Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley। घर खरीदना या फिर घर बेचना, first time home buyers या फिर investors, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है Raj Joshi, Realtor बेमिसाल। Call Raj Joshi from Royal LePage Credit Valley Realty 647-866-1086, 647-866-1086। Raj Joshi, सिर्फ नाम ही काफी है।
6: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com। Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर।
7: Doing business your way.
6: Member of Wayne's Auto Group.
8: Good afternoon. शुरू करते हैं South Asian Unlimited Radio की ताजा तरीन headlines.
9: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Rajdhani Sweets and Restaurant, Kavya Home Your Care, Clear Optical by Varun Kanda, McQueen Dental Care, Don Valley North Hyundai. Shuru karte taza tareen headlines. Last minute call ke baad, Nvidia CEO Jensen Huang bhi Donald Trump ke China trip ka hissa bane. Suspected norovirus death ke baad, France confines 1,700 on the cruise ship. Meta US employees ne protest organized kiya against the mouse tracking technology. Lebanon mein hui Israeli strikes mein 13 log mare gaye. Trump ka Cheen daura shuru hua with an eye on Iran trade issues and Taiwan. Satellite images ke anusar, Pakistan may be shielding Iran's military aircraft. Noor Khan Air Base par and Iranian aircraft claims par, US Senator ne Pakistan ko lekar kaha, I don't trust them in regards to being a mediator. Iran war ke oil shock ne US consumer inflation ko 3-year high par pahuncha diya hai. Trump ne Cuba ke saath talks ka elan kiya aur kaha ki failed country asking for help. Trump ne Iranian aircraft par laser attack ki AI images share karte hue kaha, bing bing gone. Trump ne Chinese President Xi Jinping ko ek good and smart man bataya aur ye bhi kaha ki we have a very good relationship. Hantavirus outbreak ke chalte Britain to isolate 10 people as precaution. लोकल समाचारों में टोरंटो में हुए 2 सेक्स असॉल्ट्स के सस्पेक्ट को हिरासत में लिया गया। ओंटारियो मॉनिटर कर रहा है।

7 additional logo ko considered low risk hantavirus contacts and Premier Doug Ford ne TTC aur Union se kaha FIFA World Cup se pehle deal ko mukammal kare. Don Mills parking lot mein women dead after being struck by a driver and 7 more people in Ontario considered low risk hantavirus contacts. Dusri aur Bharatiya samacharon mein N. Rangaswamy sworn in as Puducherry Chief Minister for the record 5th time. Anti-terror agency ne Delhi mein narco terrorist ko arrest kiya after extradition from Portugal. पश्चिम बंगाल में राशन से आटा हटाने का ऑर्डर खाद्य मंत्री का कहना है कि एक हफ्ते में सरकार की कार्य योजना होगी बिल्कुल स्पष्ट. मणिपुर में 3 चर्च लीडर्स शॉट डेड. सिंगर दलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पर हुई फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है हमले की जिम्मेदारी. और दूसरी ओर क्रिटिसिज्म के बाद टीवीके के विजय ने एस्ट्रोलॉजर को ड्यूटी से निकाला. नीट यूजी 2026 कैंसिल हुआ. सीबीआई ने दर्ज किया केस. खान सर ने कहा एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए. 22 लाख स्टूडेंट्स अफेक्टेड. पूरी रथ जगन्नाथ 2026 की तैयारी तेज हुई. और तपती धरती जलता आसमान 17 सिटीज का पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा. गर्मी से लाल हुआ भारत का नक्शा. राहुल गांधी ने अगले सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन पर कहा यह बिल्कुल बायस्ड है. महाराष्ट्र में मंदिर की दीवार के गिरने से 6 डिवोटीज मारे गए, 14 हुए जख्मी. और रजनीकांत ने आर्ट ऑफ लिविंग के जबरदस्त एक्सपीरियंस को लेकर कहा नोबडी इवन लुक्ड एट मी, इट ओपन्ड माय आईज. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अबव नॉर्मल रेनफॉल के बावजूद यमुना इज स्टिल टॉक्सिक. नेपाल ने इंडियन टूरिस्ट पर लगाई न्यू रिस्ट्रिक्शंस की रिपोर्ट को बेसलेस बताया. और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिवोर्स केस में कहा महिला का करियर एम्बिशन नॉट क्रूएल्टी और डिसर्शन. दूसरी तरफ पाकिस्तान की खबरों से डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को काबुल और नई दिल्ली में कोई फर्क नहीं दिखता. उन्होंने कहा कि सेम एनिमी ऑन बोथ बॉर्डर्स. स्टूडेंट सीकिंग मेडिकल स्टडीज अब्रॉड के लिए एमडी कैट एमपीएमडीसी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हुई. पीएमडीसी ने स्टूडेंट्स को सलाह दी टू सिक्योर मल्टीपल एंट्री वीजाज. स्टूडेंट्स से कहा गया टू वेरीफाई फॉरन इंस्टीट्यूशन बिफोर ज्वाइनिंग. पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने यह कदम उठाया है टू सेफ गार्ड स्टूडेंट्स फ्यूचर. केपी के चीफ मिनिस्टर अफरीदी ने अडियाला जेल के पास इमरान खान की सिस्टर्स के सिट इन को ज्वाइन किया. स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बीच पुलिस ने अडियाला जेल को रोड को सील कर दिया है. पीटीआई सपोर्टर्स और लीडर्स गैदर एट द फैक्ट्री चेक पोस्ट. सेक्शन 144 इन्फोर्स्ड अक्रॉस रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद. इमरान खान कस्टडी में 1000 दिन पूरे कर चुके हैं हैविंग बीन जेल्ड इन सिंस ऑगस्ट 2023. जेल अथॉरिटीज ने लगातार उनके फैमिली मेंबर्स और पीटीआई लीडर्स को उनसे मिलने पर रोका है. ये रिपोर्ट सामने आई है. T20 सीरीज ओपनर में पाकिस्तान की विमेंस टीम ने जिम्बाब्वे को 153 रन से हराया. आयशा जफर की सेंचुरी और फातिमा सना के 3 विकेट स्पेल ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड जीत दिलवाई. पीटीआई लीडर ने किया दावा इमरान खान लूजेस विजन इन वन आई. पीटीआई सेक्रेटरी राजा कहते हैं कि बुशरा बीबी इज फेसिंग फैब्रिकेटेड केसेस. स्पोर्ट्स जगत से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में जसप्रीत बुमराह मेंटेन्स टॉप स्पॉट. बैटर्स में यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल वर प्लेस्ड एट नंबर 8 और 9. सलमान अली आगा के वर्ड्स बैकफायर हुए एज बांग्लादेश डिफीट पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेस्ट्स एट होम इन ढाका. विराट कोहली ने कंसेक्यूटिव 2 डक्स को लेकर अपने ऊपर जोक करते हुए कहा थैंक्स फॉर गिविंग मी अनदर चांस. बॉलीवुड खबरों से एक्टर इमरान हाशमी की गन मास्टर G9 इस साल दशहरे पर रिलीज होगी. द फैमिली मैन के एक्टर शारिब हाशमी ने कहा वाइफ नसरीन का कैंसर रिलैप्स हुआ है फॉर द 6th टाइम. नसरीन इज अ 5 टाइम सर्वाइवर ऑफ ओरल कैंसर फॉर द डिजीज सिंस हर डायग्नोसिस इन 2018. एक्ट्रेस मौशमी चैटर्जी का कहना है कि उन्होंने 15 साल की उम्र में शादी की थी टू फुलफिल डाइंग एंट्स विश. And Alia Bhatt makes her first appearance at Cannes 2026. Superstar Akshay Kumar ne Welcome to the Jungle ki stylish new look drop ki. Internet can't keep calm. Film mein 2 decades baad Akshay Kumar, Raveena Tandon bhi reunite karne wale hain. Ye thi South Asian Unlimited Radio ki taza tareen headline. Studio ka number 416-593-0055. Aur Kishore Kumar saab kehte hain ye jo mohabbat hai. R.D. Barman ka music, Anand Bakshi ke lyrics. Enjoy. I'll be right back.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
0: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर, गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ मीता ओझा, पिनाक ओझा जी, 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से सर्व करते हैं. मेजर इंटरसेक्शन इज नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड. द क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM. द नंबर टू कॉल इज 6477602779. मीता जी, आपका स्वागत है.
2: थैंक यू सनी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो
0: जी, मजामा, गुड आफ्टरनून. एक तो बीता जी, लॉन्ग वीकेंड मंडे को है, आर द आवर्स द सेम फॉर काव्या होम्यो केयर?
2: एक्चुअली इस लॉन्ग वीकेंड जो है सैटरडे एंड मंडे क्लिनिक विल रिमेन क्लोज्ड, सो वो 3 दिन बंद है.
0: ठीक है जी दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि सैटरडे संडे, ऑब्वियसली संडे इट्स ऑलवेज क्लोज, सैटरडे संडे मंडे फॉर द लॉन्ग वीकेंड काव्या होम्यो केयर विल बी क्लोज. सो जो भी आपने चाहे दूर रहते हैं फोन पर भी कंसल्टेशन करनी है, या यू वॉन्ट टू स्विंग बाय इफ यू आर इन द एरिया, यू नो यू कैन वॉक इन, गेट एन अपॉइंटमेंट, बट प्लीज नोट सैटरडे संडे मंडे. मीता जी एंड द फैमिली नीड्स अ बिट ऑफ अ ब्रेक because they're always, always open, even on long weekends and stuff. So, a much deserved break. Meeta ji, kis aaj is health segment mein kis topic par karenge baat cheet?
2: थैंक यू सनी जी, आज हम देखेंगे इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस, उसके बारे में देखेंगे.
0: जी बच्चन साहब ने भी कल कहा है आपके इंसोम्निया से, मुझे याद आया कि बच्चन साहब अपने ब्लॉग में कल लिख रहे थे कि उनको नींद नहीं आती रात भर.
2: जी या अक्सर एजिंग के हिसाब से ये प्रॉब्लम पाई जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना नींद थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जो इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस मींस डिफिकल्टी इन फॉलिंग द स्लीप, के एक बार आने की ही प्रॉब्लम है कि रात को आप लेटते हैं लेकिन नींद ही नहीं आ रही है, या स्टेइंग अस्लीप कि एक बार तो नींद आ जाती है, 2-3 घंटे सो लेते हैं लेकिन उसके बाद जैसे जाग लग गई, एक बार उठ गए फिर वापस इट्स डिफिकल्ट टू फॉल बैक टू स्लीप. जो क्वालिटी स्लीप आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, आप सोए हैं लेकिन दिमाग जागा हुआ है कि कॉन्स्टेंटली थिंकिंग चल रही है, साउंड स्लीप होनी चाहिए वो नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसको हम इंसोम्निया ही कहेंगे. तो यहाँ पे क्वालिटी स्लीप होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिसमें आपका पूरा बॉडी रिजुविनेट होता है ड्यूरिंग डीप स्लीप. और आप कह लें कि ये जो नींद होती है ये 11 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम है रात का, तो वो नाइट टाइम में आपको नींद आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है. यही वो टाइम है जिसमें ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, सो जो छोटे बच्चे हैं बड़े हैं उनके ग्रोथ के लिए ये जरूरी है, और काफी सारे फंक्शंस हमारी बॉडी कह लें कि ड्यूरिंग डीप स्लीप करती है, हमारा माइंड के जिसको रेस्ट चाहिए ताकि वो डे टू डे अपनी टास्क परफॉर्म कर पाए, तो वो नींद से मिलता है. सो एडल्ट में कितनी नींद होने चाहिए, आप कह लें कि 6-8 आवर्स जो है वो नॉर्मल एडल्ट में, इतनी स्लीपिंग आवर्स इन 24 आवर्स इतनी नींद मिलनी चाहिए. तो टीनेज के बच्चे हैं उनको 8-10 घंटे की चाहिए, जिस तरह वो छोटे हैं बच्चे आप देखते हैं कि वो लगातार सोते रहते हैं, तो उम्र के हिसाब से, और फिर जैसे आप कह लो 60+ 70+ होते जाते हैं तो नींद आने में तकलीफ आनी स्टार्ट हो जाती है. अब कभी कभार सैडनेस है, या आप कह लें कि खांसी जुकाम हो गया या नेजल ब्लॉकेज हो गई, तो आपको 1-2 दिन ऐसे स्ट्रेस वाली बात हो गई तो कुछ एक दिन नींद नहीं आके फिर वापस नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जब लगातार ये प्रॉब्लम चल रही है तो तभी आपको इसकी टेक केयर करनी चाहिए. और छोटे बच्चों से लेके बड़ों में, क्योंकि बच्चों में भी क्या होगा कि अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो वो फिर किसी भी चीज पे उनका अटेंशन नहीं रहेगा. स्कूल जाएंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे, इरिटेबिलिटी बढ़ जाना, टायर्डनेस रहेगी दूसरे दिन भी. और जिनको छोटे बच्चों को बड़ों को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है तो उनको भी अक्सर नींद से जागे लेकिन फ्रेशनेस नहीं है, वो टायर्ड रहते हैं, थके से रहते हैं. और जिन लोगों को आप कह लें कि कंटिन्यूअस स्ट्रेस रहती है, मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन एंजाइटी है ना, बिना वजह की सोच लग जाना, तो ऐसे में रात को सो ही नहीं पाते हैं, लगातार थिंकिंग चलती रहती है, नींद नहीं आ पाती है. हेल्थ कंडीशन करके भी आपको ये ट्रबल हो सकती है, जैसे जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, रिफ्लक्स है, लेटने के साथ ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाएगा और फिर उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा नींद आना. तो ऐसे में स्क्रीन टाइम भी ज्यादा है, सोने से पहले आप फोन लेके बैठे हो या टीवी की कोई सीरियल वगैरह वॉच कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके माइंड को जो है वो रिलैक्सेशन चाहिए नींद से पहले, वो नहीं मिलेगी. तो ऑब्वियसली फिर जब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है नींद आने में प्रॉब्लम करेगा. स्टिम्युलेंट्स लेते हैं कि चाय कॉफी नाइट टाइम के, कई बार ऐसे होता है ना कि डिनर के बाद चाय चाहिए, तो ऐसे में ये स्टिम्युलेंट मिलेगा तो उसके साथ ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा. सो चाय कॉफी कहा जाता है जिनको प्रॉब्लम है, 4 बजे तक 5 बजे तक शाम को आप ले लें, उसके बाद लेटर ऑन चाय या कॉफी ना लें तो उससे भी हेल्प मिलेगी. अब एडिक्शन है कि अल्कोहल नहीं लेते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, तो रात को नींद नहीं आती है, तो अक्सर उनको भी नींद की प्रॉब्लम पाई जाती है. अब कोई भी रीजन से इस तरह के कंसर्न आपको हो रहे हैं कि प्रॉपर नींद नहीं मिल रही है, तो ऐसे में इस कंडीशन को इग्नोर ना करें, काफी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ते जाते हैं. सो इन होम्योपैथी वी डू हैव वेरी गुड ट्रीटमेंट. इसमें कोई स्लिपिंग पिल नहीं है कि आपने ली और 8 घंटे नींद आएगी, नो. लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते हो, आपके माइंड एंड बॉडी के बीच हार्मनी एस्टेब्लिश होने से आप खुद देखोगे कि आपकी जो जितनी भी नींद आ रही है, क्वालिटी स्लीप है, फ्रेश उठ रहे हैं, वो थकावट नहीं है, और धीरे धीरे आपका जो स्केड्यूल है वो सेट होता जाएगा कुछ ही मंथ्स में. नींद नहीं आना से लेके किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड मसाज थेरेपी, पेन से, बॉडी पेन से, आर्थराइटिस है, बैक पेन, साइटिका, नेक पेन है, या फिर हेडेक की प्रॉब्लम है, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, धड़न की प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे में वी डू हैव मसाज थेरेपी. तो ये कॉम्बिनेशन से काफी आपको आराम मिल सकता है. सो फील फ्री टू कॉल अस, काव्या होम्यो केयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं.
0: बिल्कुल दोस्तों, काव्या होम्यो केयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ अमिता ओझा, पिनाक ओझा जी, 10 कोट्रल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं. नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है. क्लिनिक इज ओपन मंडे टू सैटरडे 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग. दिस लॉन्ग वीकेंड क्लिनिक विल बी क्लोज्ड ऑन सैटरडे, संडे एंड मंडे, ओनली फॉर दिस लॉन्ग वीकेंड. नंबर टू कॉल ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, दवाई शिप की जाती है, आप फोन पर भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, दवाई आपके घर पहुंच जाएगी. 6477602779. मीता जी बहुत बहुत शुक्रिया.
2: थैंक यू सो मच सर.
0: थैंक यू जी. 6477602779. cholebhature.ca. 4 locations से सर्व करते हैं, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, 1 in Vaughan, एंड ऑल locations हैव टेक आउट एंड डाइन इन ऑप्शन. cholebhature.ca. कुमार सानू की आवाज, 1942 अ लव स्टोरी का ये अमेजिंग सा गीत फिल्माया ऑन अनिल कपूर. एंजॉय.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty ले और हर एक के साथ पाए एक extra entry. आज drive करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट
2: pujahut.com।
0: जय श्री राम।
3: 10 मीटर बस इन्ना को याद रखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ। esasafe.com/stoplooklive ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
4: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ, minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment, walk in ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें। 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation, for all your tax related matters, 289-748-4040 289-748-4040।
5: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th। इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते। संडे May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो। डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में। विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com, Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर।
6: Doing business your way.
5: Member of Wayne's Auto Group।
4: ये रास्ते ले जाएंगे ऊंचाइयों की शिखर तक, हौसला रख। ये रास्ते ले जाएंगे ऊंचाइयों के शिखर तक, हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने ना दिया हो? जुनून, हौसला और पागलपन आज भी वही है। जुनून, हौसला और पागलपन आज भी वही है। मैंने जीने का तरीका बदला है, तेवर नहीं।
0: कॉन्डो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है? बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे Day 1 से। कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ। 416-666-2745।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। एंड अतीक खान साहब हमारे साथ हैं, लोकल डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, विद 25-26 ईयर्स ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन व्हाट ही डज। एंड क्या होता है कि कई बार आपके दिमाग में, आपके एक्सपीरियंस से, एक आइडिया से एक बिजनेस कॉन्सेप्ट को जन्म मिलता है और फिर आप ये सोचते हैं कि यार, इफ दिस वर्क्स फॉर मी, दिस विल वर्क फॉर thousands of other people, and that is how I think Atik bhai ne ye shuruaat ki. By profession also, he's been a chartered accountant, so but he plays with the numbers, he knows the numbers, he knows saving, he knows growth, he knows how to create a successful business concept. Ek to hota hai business concept, ek to hota hai aapne successfully ek business concept ko create kiya hai. Just in case the newer listeners that tuned in right now are wondering kya baat kar raha hu main, you know, तो अतीक भाई उस पर रोशनी डालेंगे। 416-666-2745 416-666-2745। एंड आई हैव हर्ड इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स, जब मैं एक्सपर्ट्स को, मुझे बहुत शौक है पॉडकास्ट इंजॉय करने का एंड स्टफ लाइक दैट, जहां पे आपको कोई ना कोई नई नॉलेज मिलती है, एंड द बिगेस्ट ऑफ देम and the most experienced of them all talk about, you know, jab metals ki comparison karte hain, stocks ki comparison karte hain versus land ki comparison karte hain, you know all the experts are always on the side of the land property, but more so the land itself. Atik bhai, aapka swagat hai.
7: थैंक यू सो मच सनी साहब, आपका, आपके लिसनर्स को गुड आफ्टरनून। और आपने बिल्कुल सही बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पॉडकास्ट वगैरह वॉच करके समझते हैं, इंट्रीगिंग होती है, बिजनेस कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। मेरा भी यही काम है, मैं खुद भी एजुकेशन से रिलेटेड रहा हूँ और अब लैंड डेवलपमेंट का पार्ट रहा हूँ। ऐसा होता है सनी साहब, वो लिसनर जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जो लैंड बैंकिंग को या लैंड डेवलपमेंट को नहीं समझते बट करना चाहते हैं, तो लिसनर्स हमारा काम यह है कि जिस जगह पे फ्यूचर ग्रोथ होने वाली हो उस एरिया में फ्यूचर को देखते हुए आप कोई सस्ती लैंड खरीदते हैं. एंड व्हेन आई यूज द वर्ड सस्ती लैंड, सनी साहब, ये लैंड्स मिलती हैं रिसीवरशिप के थ्रू, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू, सिटी ऑक्शन के थ्रू, वो चीजें जहां पर आम जनता को एक्सेस ना हो वो प्रॉपर्टीज मैं निकाल के लाता हूँ, उसको परचेज करता हूँ. आप मेरे साथ पार्टनर बनते हैं, हम दोनों अपने पैसे को साथ मिलके लगाते हैं, दोनों का नाम प्रॉपर्टी पे जाता है. उस प्रॉपर्टी को हम डेवलपमेंट प्रोसेस या आप अप्रूवल प्रोसेस कह लें या जोनिंग अप्रूवल प्रोसेस कह लीजिए, उससे गुजारते हैं. और जब वो हमको लेटर मिल जाता है सिटी से अप्रूवल का, उस टाइम पे हम उस प्रोजेक्ट को या तो सेल कर देते हैं या कंस्ट्रक्शन में ला के फिनिश करते हैं. जब मैंने बात करी ऐसे एरियाज की जहां फ्यूचर ग्रोथ आ रही हो, मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूंगा आने वाले सालों में कनाडा में पहली दफा स्पीड ट्रेन आने वाली है जो टोरंटो से लेके क्यूबेक सिटी तक जाएगी. और अगर आप जाकर उसको गूगल करेंगे तो आपको उसका रास्ता भी पता चल जाएगा कि वो कौन सी रेल रोड या लिंक के ऊपर वो लाइन बनेगी. अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये इन इन एरिया से गुजर के ये लाइन बनेगी जो स्पीड रेल की है, और आइए सनी साहब मैं और आप मिलते हैं और एक ऐसी लैंड जो 5-10-50 एकड़ की हो, रेलवे लाइन के बिल्कुल साथ हो, क्लोज हो, हम वहां परचेज करें, उसके ऊपर फ्यूचर के लिए कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अप्रूवल कराएं, और जब लेन बननी शुरू हो जाए या सिटी उसको डेवलप करेगा उस टाइम पर हम अपने प्रोजेक्ट से एग्जिट आउट करेंगे. आपको जानकर हैरानगी होगी 200% तक रिटर्न्स इसमें बन जाते हैं. मुझे बताइए कनाडा में कौन सा ऐसा लीगल बिजनेस है कि जहां पर आपको सेफ्टी भी मिले, आपके पास एक सॉर्ट ऑफ गारंटी भी हो कि आपका पैसा डूब नहीं रहा है, और फ्यूचर में आने वाले टाइम में गारंटीड वहां पे डेवलपमेंट आ रही हो. ये वर्ड गारंटीज अनाउंस करना बड़ा आसान होता है लेकिन करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है. और शुक्र ऊपर वाले का मैं ये काम पिछले 20-25 सालों से करता आ रहा हूँ, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक क्लाइंटेल बन गया है. आप रिव्यूज देख सकते हैं मेरे लोगों से, आप उसके बारे में टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा बिजनेस के रिटर्न्स कैसे बनते हैं. आप आइए मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट बनिए, बल्कि मेरा क्या है वो आपका प्रोजेक्ट है, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, काम भी सीखें और बिजनेस में पैसा भी बनाइए. चलते चलते इतनी बात और ऐड करूंगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, वरना मैं उसको कंक्लूड इस तरह करता हूँ कि सीनियर होम्स की इस वक्त बहुत डिमांड है. सीनियर होम का मतलब उसमें रिटायरमेंट कम्युनिटीज आ जाती हैं, सीनियर होम आ जाते हैं, अल्जाइमर होम आ जाते हैं, नर्सिंग होम्स आ जाते हैं, ये सब चीजों में इस वक्त बहुत जरूरत है, बहुत शॉर्टेज है ऐसे प्रोजेक्ट्स की. मेरे पास लैंड है, अप्रूवल्स हैं, आप आइए इस चीज का पार्ट बने, नंबर मिलाइएगा और कॉल करके मैसेज जरूर छोड़ें 416-666-2745.
4: जी अतीक भाई, जाने से पहले वेरी क्विकली हमारे एक लिसनर का मैसेज है, आई डोंट सी द नेम बट ओके, पूछ रहे हैं कि अतीक भाई व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस.
7: तो समी साहब ऐसा होता है मेरे पास दो तरह के क्लाइंटल हैं, कुछ लोग वो हैं जिनको मंथली इनकम चाहिए, तो यूं समझ लीजिए कि जो भी हमारे पास रेंटल प्रॉपर्टीज है उसका जो रेंट आ रहा है वो आपको एलोकेट हो जाएगा रफली अबाउट 10-12% पर ईयर का बनता है. आप वो ले सकते हैं जितने पैसे भी आपके पास हो, उसमें अमाउंट की कोई कंडीशन नहीं है. सिमिलरली दूसरे टाइप में 50-100,000 एज अ रीजनेबल नंबर है जिसका रिटर्न जब आपको 2x या 3x या 4x मिलेगा तो आप अपने कोई ना कोई लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इन बातों का कि डेट्स अपने खत्म करिए, क्योंकि जैसे ही आप डेट फ्री होंगे यकीन करें आपकी लाइफ बढ़ जाएगी.
4: बिल्कुल दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि अतीक खान साहब की जो वेल्थ ऑफ नॉलेज है इन व्हाट ही सेज, इन व्हाट ही डज एंड व्हाट ही हैज बीन डूइंग फॉर द लास्ट 2.5 decades, एक बार उनसे मुलाकात करिए एंड दिस कुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू डिड इन 2026. कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि कोई नहीं यार कर लेंगे अगला महीना, अगला हफ्ता, अगला फिर 6 महीने बाद, करते करते साल गुजर जाता है, फिर हम कहते हैं यार हम कर लेते, माइट इज वेल डू इट, क्योंकि देर इज नो ऑब्लिगेशन इन मीटिंग अतीक भाई. मीट हिम, हैव ऑल द क्वेश्चंस रेडी एंड गो फ्रॉम देयर. दैट्स द बेस्ट. थिंग टू डू. पहला कदम 416-666-2745 पे आपने कॉल करना है. 416-666-2745 द वन एंड ओनली अतीक खान. अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया.
7: थैंक यू सो मच सर.
4: थैंक यू ब्रदर. 416-666-2745 अतीक भाई का नंबर है. राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 100% प्योर वेजिटेरियन फूड सर्व करते हैं. जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम ही है राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट. 30+ लोकेशन से सर्व करते हैं. और राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस की तरफ से मैंज निंदी कौर की आवाज में विसल बजा फ्रॉम द मूवी हीरोपंती. बाहर का तापमान हो चुका है 15 डिग्री सेल्सियस. और अगर आप शादी ब्याह की तैयारियां कर रहे हैं बिकॉज this is that time of the season in GTA and in Canada, so Asians is a popular South Asian clothing or textile store hai Markham Road Lawrence Avenue ke ilake mein Scarborough mein 3601 Lawrence Avenue East Unit 23 Scarborough. और यहां पर जो ladies के fashions हैं, styles हैं, latest 2026 वाले साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर. और अब कहीं men सोच रहे हैं कि भैया हमारा क्या, आपके लिए traditional clothing है at Asians, jewelry and gift items हैं. प्राइस इनका राइट है, जबरदस्त प्राइस है, वेरी कंपेटिटिव प्राइस. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उस साल जिस साल की हम बात करते हैं 2026 या जिस साल की भी हम बात करते हैं, दे हैव द लेटेस्ट दैट यू कैन फाइंड बैक होम. एशियंस 416-438-6568 एशियंस एट 3601 लॉरेंस एवेन्यू. साउथ एशियन क्लोथिंग का नंबर वन स्टोर है एशियंस. एक बार चक्कर जरूर लगाएं. एंजॉय द सॉन्ग. आई विल बी बैक.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
3: अच्छी याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे। choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448।
5: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइन-इन लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा and won by Vaughan Mills.
6: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca.
7: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th tak. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
8: There is another sky, ever serene and fair, and there is another sunshine, though it be darkness there. Never mind faded forests, Austin, never mind the silent fields. Here is a little forest whose leaf is evergreen. Here is a brighter garden where not a frost has been. In its unfading flowers, I hear the bright bee hum. Prithi, my brother, into my garden come. Prithi, my brother, into my garden come.
9: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. जब जब कुछ इस तरह की पंक्तियां हाथ लगती हैं तो आप तक पहुंचाने का मकसद होता है एंड आप पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इंस्पायर्स अस टू डू बिट मोर. ओके, आई हैव वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पीपल इन माय लाइफ हु इज ऑन द लाइन. अमन मेहता साहब इंडस्ट्रियल लाइंस के साथ काम करते हैं एज अ फाइनेंशियल प्लानर. काम करते क्या है, मतलब द गाय इज़ एन एक्सपर्ट एट व्हाट ही डज फॉर 20 इयर्स नाउ. 241 क्लेरेंस स्ट्रीट, यूनिट 26, ब्रैम्पटन. रैंडमली भी मैं अपने लिसनर्स को ये कहना चाहूँगा, बिना किसी ऑब्लिगेशन के, कई बार आपके दिमाग में कई चीज़ों को लेकर सवाल होते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को लेकर सवाल होते हैं, जस्ट फील फ्री टू कॉल अमन जी. आई मीन, ही इज़ ऑलवेज आउट देयर, यू नो, मेकिंग श्योर कि वो किसी ना किसी की ज़िंदगी को बेहतर अगर बना सकें, फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ में उनका योगदान हो, बिना किसी ऑब्लिगेशन के, ही इज़ ऑलवेज डूइंग दैट. 416-707-9900. अमन जी, आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर.
10: सनी जी, वेरी थैंक यू. आई एम हम्बल जो आप इतना प्यार देते हैं. एंड यू नो व्हाट, आई विश आई कम अप विद एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑल माय लिसनर्स. So first of all, a very warm good afternoon to all the listeners of CMR 101.3 FM, my beautiful listeners and 101 ki team, and especially to you. You know, I love, agar mera bus chale na, main 4 din piche background mein aapki awaaz mein show sunta rahun aur enjoy karta rahun.
9: Thank you Amanji. You know, the feeling is always mutual and it's like a mutual fan club that we have for each other. And aapka 10 ka dam bahut damdar show tha aur अभी भी, यू नो, कब उसकी वापसी होगी, एवरीवन कीप्स आस्किंग मी, यू नो. और मैं आपके असिस्टेंट सेक्रेटरी की तरह जवाब देता रहता हूँ कि इल बी बैक.
10: सनी जी, एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें. यू नो व्हाट, योर लेवल इज केबीसी लेवल, अमिताभ बच्चन डायनेमिक वॉइस लेवल पे आप शो कर रहे हैं.
9: बाप रे.
10: इवन दो आई नो इट वॉज नॉट अ बैड शो, बट अगेन कंपेयरिंग इट विद यू, आई डोंट वांट टू इवन टॉक अबाउट दैट. यू नो, एज फार एज I'm linked with you, and I'm aapke radio pe aata hu, I feel happy. And that is my 10 kadam now.
9: Thank you. No. I mean, that is your humility. Achha, humility personified hai, bhai, Aman Mehta. 416-707-9900 is the number. Topic hai, Aman ji, aaj ka ki why most people want wealth, but miss the simple execution jo hoti hai. And why do most people fail to build wealth even though everyone wants to be rich, including myself? Is pe aap bataiye. You're the expert. We really want to hear from you.
10: Sunny, bahut pyara topic hai. You know, jab bhi hum kehte hai na, grass is green on the other side. Definitely it is. All you have to do is thoda sa different. If you keep on doing the same things, you will never get different results. To achieve different results, you have to think differently out of the box. And that is where I educate people that investment is not at all complicated. Simple, main aapko ek guru mantra deta hoon. Wo guru mantra ye hai, commit to saving before spending. You know, savings before spending. Ye pehla mantra hai. Aur iske saath agar aap discipline, to koi bhi magic return aapke liye impossible nahi hai.
9: Ji. Aur iske upar se ek aur baat hai, dosto. Aman Mehta saab se, main kehta hoon, ये जो आपकी मुलाकात अमन जी के साथ होगी, आप जो उनसे बात करेंगे, आप अपने आप को थैंक यू करेंगे, मुझे करें ना करें कि भाई पहले क्यों नहीं किया. बिकॉज जिन लोगों के पास मैं ये सोचता हूँ वेल्थ ऑफ नॉलेज होती है, उनसे जितना हम समेट सकें और बिना ऑब्लिगेशन के, एंड टेक देयर हेल्प इन ऑल द फाइनेंशियल प्लानिंग दैट वी वॉन्ट टू डू फॉर अस, फॉर द फैमिली एंड फॉर आर किड्स. 416-707-9900. पता नहीं होता है भाई, जो जो चीज के बारे में पता नहीं होता, हमें यह पता ही नहीं होता है कि उससे हमें फायदा कितना हो जाएगा. इसलिए पहला कदम उठाइए. अमन जी, व्हाट आर द बिगेस्ट फैक्टर्स इन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग? सबसे बड़े फैक्टर्स हैं क्या?
10: बिल्कुल सनी जी, जो आपने कहा कि यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो इज द फर्स्ट की. मैं आपको आज गुरु मंत्र जो दे रहा हूँ, बहुत छोटे टॉपिक में आज बात करेंगे हम, मे बी 2-3 मिनट, लेकिन मैं आपको ऐसी चीजें देके जाऊंगा, थिंग्स फॉर योर सोल और थॉट फॉर योर सोल, जहां बैठ के सोचेंगे यार वाकई मैं ये मिस कर रहा था. चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. सबसे पहले स्टार्ट अर्ली का मतलब टूडे इज द राइट डे. इफ यू मिस इट टिल टुमारो, यू मिस्ड वन डे. नंबर टू, कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं है कि जब पैसे आएंगे तब मैं सेविंग करूंगा. आप कभी सेव नहीं कर पाएंगे. वो जो कहते हैं ना कि मैं कल अमीर होऊंगा, वो कल टुमारो नेवर कम्स.
9: एग्जैक्टली.
10: थर्ड, अगर आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं, यू आर इन बिगर ट्रबल. अ लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्टेड इन टू, यू नो, ऑयल. नाउ ऑयल इज डाउन, तो गोल्ड इज अप. सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर डाइवर्सिफाइड. नंबर चार, सनी भाई, आई एम श्योर ये चीज जब लोग सुनेंगे कहेंगे यार वाकई मैंने कभी सोचा नहीं है. प्रॉफिटिंग. आपने पेपर गेन देखा, आप खुश हुए. आपने पेपर लॉस देखा, आप रो लेते हो. व्हाट इज दी फन इन दैट? मजा तब है जब आप प्रॉफिटिंग हो, कैश आउट करें. तो जब भी आपको लगे कि आपके फंड ग्रो कर चुके हैं, 10% 15% कैश आउट करें, एक डेट मार के आए, एक ट्रिप लेके आए, गोल्ड बाय करें. वो जो आप लाइफ लॉन्ग आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी ना प्रॉफिटिंग की, पीपल आर मिसिंग दैट. सो व्हाई क्राई इफ यू आर नॉट हैप्पी व्हेन इट वाज अप.
9: आपसे सीख के मैं एक चीज तो अपने बच्चों को भी बताने मैंने शुरू कर दिया है, एंड आई थिंक आवर लिसनर्स हैव आल्सो स्टार्टेड डूइंग इट, इफ नॉट दे शुड बी डूइंग इट. कि बच्चे, जल्दी से जल्दी शुरू करो. जो अमन जी बार बार कहते हैं कि जितने जल्दी आप शुरू करते हैं, चाहे $50 $100, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उसे साइड में एवरी मंथ डालना शुरू करिए, एंड इन द लॉन्ग रन दैट्स वेयर यू विल सी दोज बिग गेन्स. और अगर कोई लेट हो गया है मेरी तरह थोड़ा सा, तो इट्स नेवर टू लेट. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से टू माई सेल्फ एज वेल. अमन जी, why is starting early so important, जो आप always बताते हैं, और हमारे listeners के लिए final message आपका क्या है? और एक listener है जो on air आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं.
10: जी सनी जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली. आपको पता है सेवन वंडर सबको पता है लाइफ के, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग. नाउ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? ग्रोथ ओवर ग्रोथ. एंड दैट इज वेयर अर्ली स्टार्ट सेविंग हेल्प्स इन. व्हाट डज दैट मीन इज $1 million बजट फॉर somebody who wants to retire, अगर वो 45 की एज में शुरू करते हैं, दे नीड $5,000 अ मंथ. इफ दे स्टार्ट एट 35, दे नीड 2,000. इफ दे स्टार्ट एट 25, दे नीड 500. एंड इफ दे स्टार्ट एट एज 18, गेस व्हाट, विद $100 और $150 अ मंथ, दे कैन रीच $1 million.
9: वाओ.
10: जो कल निकल गया वो तो निकल गया. सो द अर्लीस्ट इज एज ऑफ नाउ. मेक द डिसीजन, टॉक टू अ फाइनेंशियल प्लानर. अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, डू गिव मी अ कॉल. मी एंड माई होल टीम इज सिटिंग इन द रूम नाउ. सहज, जन्नत, कुलविंदर जी, निक्सन, वी आर ऑल सिटिंग डाउन इन द रूम, and you know, working on these strategies. All I say is spend 15 minutes and then make a decision, and I'm sure this 15 minutes will make a big decision to change in your life.
9: बिल्कुल दोस्तों, अमन जी की एक बहुत बड़ी टीम है और इस टीम की सबसे बेहतरीन बात यह है, इनकी बेटी सहज, जितने इनके साथ जो को एसोसिएट्स हैं, एंड यू नो इट्स लाइक अ फैमिली. अलका जी इज ऑल्सो देयर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कमर्शियल ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के रेट्स एज वेल. अलका जी से भी आप संपर्क ऑफिस पे कर सकते हैं. इट्स एन इंटायर बिग टीम अंडर द सेम रूफ ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल सर्विसेज टू यू. 416-505-2735 अलका जी का नंबर है फॉर इंश्योरेंस. 416-505-2735. क्विकली अमन जी, आई एम गोइंग टू टेक द कॉलर. आप अपना क्वेश्चन पूछे, आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
11: जी, मेरा सवाल ये है कि टिपिकली फाइनेंशियल प्लानर्स ये बता सकते हैं कि साल का कितना परसेंट मैक्सिमम आदमी बना सकता है इन्वेस्टमेंट जो आपका पाते.
10: ब्यूटीफुल क्वेश्चन जी. ये वही क्वेश्चन है कि गाड़ी है, आप कितनी स्पीड चला सकते हैं. अगर आपको कंट्रोल आता है, अगर आपको ड्राइविंग आती है, तो आप 200 पे भी चला सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो 10 वाला बंदा भी डर रहा होता है. सो रिटर्न्स, आई हैव डन मोर देन 25-30% रिटर्न्स इन अ ईयर. बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एज, रिस्क फैक्टर, हाउ मच यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट, और वो पैसा आपका फर्स्ट पॉकेट है या नहीं है. But I conservatively always say 7-8% is a very decent return, sir.
9: There you go. दोस्तों, बाकी जितने भी सवाल, कई बार अमन जी के सेगमेंट के बाद मुझे टेक्स्ट में सवाल आने शुरू हो जाते हैं. Do me a favor, call the expert. I'm really not the expert in this. मैं every time जब अमन जी ऑन एयर आते हैं, ये फ्राइडे को आते हैं अमन जी, आज मेरी रिक्वेस्ट मैंने इसलिए की थी क्योंकि फ्राइडे को माई कजन गेटिंग मैरिड, सो इस वजह से मैंने रिक्वेस्ट की थी. बट फ्राइडे को जब अमन जी आते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू द सेगमेंट, क्योंकि मुझे पता होता है यार आज मैं कुछ सीख के घर जाऊंगा यहां से. 416-707-9900 अमन मेहता साहब का नंबर है. ऑफिस लोकेटेड 241 क्लेरेंस स्ट्रीट, यूनिट 26 इन ब्रैम्पटन. इफ यू हैव मनी सिटिंग इन द बैंक, बिलीव मी, वो सारे का सारा पैसा, $100,000, $50,000, $300,000, $500,000, इफ इट्स नॉट ग्रोइंग, इफ इट्स जस्ट सिटिंग, तो वो सिट ही करेगा, वो कुछ करेगा है नहीं. तो एक बार अमन जी से संपर्क कर लीजिए, बिलीव मी यू वॉन्ट रिग्रेट इट. अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
10: थैंक यू सनी, थैंक यू. यू नो वट, इतने ही एक्साइटेड मेरी पूरी टीम होती है आपसे बात करने के लिए. एवरी फ्राइडे, यू नो द होल ऑफिस इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी जस्ट लिसनिंग टू योर वॉइस. तो थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग डिलीवरी जो आप दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज एंड द होल सीएमआर टीम.
9: थैंक यू ब्रदर, बेस्ट विशेस टू योर टीम, हैप्पी लॉन्ग वीकेंड टू यू एंड द फैमिली एंड द एंटायर टीम, और मुलाकात होती है बहुत जल्द.
10: थैंक यू सर.
9: थैंक यू अमन जी. 416-707-9900. ओके, फीफा की तैयारी दोस्तों दुनिया भर में चल रही है. यहां पर सबसे ज्यादा है कनाडा में, क्योंकि यहां पे हमारे मैचेस होने टोरंटो एंड वैंकूवर में. डॉन वैली नॉर्थ हंडे इज गिविंग फीफा टिकट्स. इट्स अ बैलेट जो कि ड्रॉ किया जाएगा जून के महीने में. ऑफर एंड होता है 31 मई को. इफ यू बाय एनी हांडे फ्रॉम डॉन वैली नॉर्थ हंडे, दो नेम्स दो टिकट्स के लिए ड्रॉ के लकी ड्रॉ के लिए डाले जाएंगे. इफ यू बाय विंटर टायर्स फ्रॉम देम विद स्टोरेज, वन नेम for one ticket. Similarly, any extended warranty purchase karenge, one name for one ticket will be put in for a lucky draw. 7537 Woodbine Avenue in Markham, Steeles Woodbine Wala Major Intersection, Don Valley North Hande. Don Valley North Hande, yaad rakhiye, not only these FIFA tickets that you could win, uske upar se jo deals aapko milne wali hai wahan par, amazing, amazing, amazing. Goriya Re Goriya from the movie Aina, Jolly Mukherjee, Lata Ji ki awaaz mein, 1993 ki film thi, filmaya on none other than Jackie Shroff and Juhi Chawla.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty लें और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज drive करें, कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
4: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ.
3: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ.
4: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ.
3: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ.
4: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
3: 647-739-8710. लाइसेंस नंबर M2000-3450.
5: McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hain. Talk to Sirat 905-794-8883. Chahe braces lagwane hain, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
6: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
7: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही. होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
6: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
8: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
9: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं. For everything auto

0: ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲਿਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿਰਫ $1,000 ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ, ਓਨਲੀ $4,000। ਨੋ ਹਿਡਨ ਫੀਸ, ਨੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਕਾਲ ਮੀ ਐਟ 647-408-7066, ਦੈਟ ਇਜ 647-408-7066। ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਯੂ ਸੇ ਸੈਲ ਐਂਡ ਆਈ ਸੇ ਸੋਲਡ।
1: बिल्कुल दोस्तों, आप कहेंगे सेल और तब तक सोल्ड का बोर्ड लग जाएगा। सुखी कौर इज हैज़ सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, और जितनी एक्सपीरियंस सुखी जी रियल एस्टेट की दुनिया में रखती हैं और जिस तरह से अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं, GTA में उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ऑलवेज वो हमारे साथ ऑन एयर शेयर करती हैं, एंड देन सम बियॉन्ड GTA एज वेल। सुखी जी का नंबर होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी 647-408-7066-647-408-7066। देखते हैं सुखी जी आज इस लॉन्ग वीकेंड से पहले पहले क्या जानकारी लेकर आई हैं। सुखी जी, आपका स्वागत है।
0: वेरी गुड आफ्टरनून सनी जी, सबसे पहले तो आपको एंड सभी लिसनर्स को मेरे सुखी की तरफ से वेरी हैप्पी वेंसडे। आई होप एवरीबडी इज एंजॉयिंग देयर डे। आई नो वेदर इज नॉट वेरी प्लेजेंट टुडे, इट इज रेनिंग, बट एवरी डे एवरी वेदर हैज इट्स ओन गुड एंड बैड।
1: जी बिल्कुल।
0: सनी जी, कुछ लिस्टिंग्स शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो अगर हमारा कोई लिसनर सोच रहा था कि उन्होंने कस्टम बिल्ड हाउस बनाना है, बहुत ही बिग लैंड पर बनाना है, तो से नो मोर। मेरे पास बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी आई है जो कि ब्रैम्पटन से अराउंड 20 से 25 मिनट की ड्राइव पर है। 83 एकर लैंड पर यह पावर ऑफ सेल की प्रॉपर्टी है। अभी मार्केट में आई नहीं है, पावर ऑफ सेल पर यह प्रॉपर्टी आने वाली है। 83 एकर लैंड पर बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है आपको। 6 bedrooms ऑन द मेन फ्लोर एंड 3 bedroom इन द बेसमेंट। बहुत ही अच्छा घर है, फुली फुली फुली अपग्रेडेड, एंड लाइक आई सेड 83 एकड़ की लैंड पर यह प्रॉपर्टी है। आपको यहाँ पर कैबिन बना हुआ है, फार्मिंग कर सकते हैं, वहाँ पर बार्न भी बना हुआ है। आपको अगर प्रॉपर्टी देखनी है या कोई भी क्वेश्चन है, मार्केट में आने से पहले ये घर देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सुखी को कॉल कर लीजिए एट 647-408-7066 Another property बताना चाहूँगी, हमारे पास ब्रैम्पटन में जो क्रेडिट वैली एरिया है, वहाँ पर डिटैच घर अवेलेबल है जो कि 4 bedroom का डिटैच घर है। 2 bedroom की लीगली फिनिश्ड बेसमेंट है विद सेपरेट एंट्रेंस विद किचन। नो वर्क नीड्स टू बी डन। अंडर 10 years old ये घर लेना चाहते हैं इन ब्रैम्पटन में। सेलर इज मोटिवेटेड टू सेल। कॉल कर लीजिए, फ़ोन उठाइए 647-408-7066। अगर आपको ये है कि अभी यू आर नॉट श्योर कि आपके पास इनफ डाउन पेमेंट है या नहीं है, और आप नहीं, आप ये इस बात के लिए श्योर नहीं है कि आप क्वालिफाई घर बाय करने के लिए करते हैं या नहीं करते हैं, प्लीज़ गिव मी ए कॉल, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है। आई विल गेट यू प्री अप्रूव्ड। पहले आपको प्री अप्रूव करवाया जाएगा, फिर आपकी नीड के हिसाब से आपको घर लेकर दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर ओन सिचुएशन। चाहे आपके पास 5% की डाउन पेमेंट है, 10 और 15, डू नॉट वरी। गिव सुखी अ कॉल एट 647-408-7066 647-408-7066। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुखी जी, एंड होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी की बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हैं सुखी कौर जी। 647-408-7066 एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर, सेकंड टाइम होम बायर, एज अ सेलर इन्वेस्टर, एक बार सुखी कौर जी से संपर्क करें। बहुत ही अमेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं सुखी जी, एंड शी ऑल्सो हैज़ अ टीम ऑफ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट वर्किंग विद हर। अप्रेजल करवानी है, इंस्पेक्शन करवाना है, प्री अप्रूवल लेना है, लॉयर्स की आपको, शी हैज अ टीम ऑफ लॉयर्स एज वेल। सो सारा काम जो है आपका हो जाएगा विद सुखी कौर एज योर रियल्टर। 647-408-7066 647-408-7066। के सुनिधि चौहान की आवाज में खट्टा मीठा वॉज अ फिल्म दर्शाया, ये गीत है फिल्माया ऑन अक्षय कुमार एंड ट्रिशा। एंड आजकल ट्रिशा इज इन द न्यूज क्योंकि विजय बन गए हैं चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के। सो ऑब्वियसली अब जो है यू नो उन्हें ट्रिशा को हमने ओथ सेरेमनी के दौरान भी देखा है. सो ऑब्वियसली

0: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
1: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स, डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Nave और Dennis Street, Markham, Park. Doing business your way. A Wayne's Auto Group.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
5: जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए जैसे ऑटो होम लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 647-628-0040। दैट इज 647-628-0040।

0: स्टेशन।
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040, दैट इज 416-451-0040, और विजिट skylakeimmigration.com।
0: Skylake Immigration।
2: South Asian Unlimited Radio presents Immigration Unlimited by Manan Gupta, powered by Skylake Immigration.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाले सेगमेंट में। स्काईलेक इमिग्रेशन से द नंबर वन कंपनी इमिग्रेशन की दुनिया में मनन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आपके सवाल, मनन जी के जवाब। मनन जी, आपका स्वागत है।
4: थैंक यू सो मच सनी जी फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को सुन रहे सभी लिसनर्स और परिवार को बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून
3: आपको भी। और चलते हैं पहले कॉलर के लिसनर के सवाल की तरफ। गौरव पुरी जी पूछ रहे हैं कि मनन गुप्ता जी, आई एम अ कैनेडियन पीआर एंड वर्क एज अ लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर। आई नीड टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप, हाउएवर आई एम अनएबल टू डॉक्यूमेंट माई ट्रैवल हिस्ट्री ड्यू टू काउंटलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रिप्स, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज अ ट्रक ड्राइवर। वो कहते हैं प्लीज एडवाइस सूटेबली, क्या मुझे करना चाहिए।
4: पहले तो गौरव जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप ट्रकिंग और सप्लाई चेन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सो यू आर मेकिंग अ इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन टू नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी, सो थैंक यू फॉर दैट। जहां तक सवाल है आपकी कैनेडियन सिटीजनशिप के जो रेजिडेंसी को प्रूव करने के लिए, देखिए ये बड़ा जरूरी है कि आपने 1095 डेज पिछले 5 सालों में कैनेडा में स्टे किया हो। और अगर आप लॉन्ग हॉल ट्रकर हैं तो हर वो ट्रिप जिसमें आपने कनाडा और यूएस का बॉर्डर पार किया है, लेकिन अगर आपने नाइट स्टे कनाडा में किया है तो वो इट विल बी काउंटेड एज कैनेडियन रेजिडेंसी। सो इन सब चीजों का हिसाब तो आप पिछले 3 सालों का रख लें। अगर आपके पास नहीं रिकॉर्ड है तो यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट टू CBSA कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी को आप ATIP के जरिए अपनी ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपका पूरा लेखा जोखा आपको 3 से 4 हफ्तों में PDF फाइल भेजेंगे, उससे आप अपनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इस चीज को इंश्योर करें कि आपकी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स मीट करती हूँ। जी
3: गौरव पुरी जी, नंबर नोट कर लीजिए, आप शो सुन रहे हैं 416-451-0040 स्काईलेक इमिग्रेशन। सुनील शर्मा जी का आपके लिए सवाल है। मनन, माय वर्क परमिट इज एक्सपायरिंग बाय मिड जून, व्हाट कैन आई डू टू फैसिलिटेट अप्लाइंग फॉर अ विजिटर रिकॉर्ड। गुड क्वेश्चन।
4: देखिए अगर आपका जॉन साहब वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है अगले महीने, तो दिस इज अप्रोप्रिएट टाइम। ऑलमोस्ट रिकमेंडेड तो यही होता है कि 1 महीना पहले आप अपनी विजिटर रिकॉर्ड की एप्लीकेशन फाइल कर दें। बट फिर भी आपने जो आपकी वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट है उससे इंश्योर कर लें कि उससे पहले पहले अपने विजिटर रिकॉर्ड की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, क्योंकि उससे आपका मेंटेन्ड स्टेटस हो जाएगा जब तक IRCC फॉर्मली डिसाइड नहीं करता। लेकिन विजिटर रिकॉर्ड का आपने बेसिस क्या बनाना है, दैट यू नो बेटर कि कोई पर्सनल रीजन है, आपने वाइंड अप करके वापस अपने होम कंट्री जाना है या नया वर्क परमिट अप्लाई करने का है। आजकल विजिटर रिकॉर्ड की एप्लीकेशन ज्यादातर रिफ्यूज भी हो रही है, क्योंकि एज यू नो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा इज रिड्यूसिंग द टेम्परेरी रेजिडेंस इन कैनेडा। सो आपकी विजिटर रिकॉर्ड की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सॉलिड विद फाइनेंशियल जो से क्रीडेंशियल्स हैं वो जरूर अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ में लगा दीजिएगा।
3: जी आखिरी सवाल मनोज जैन जी का है, स्काईलेक इमिग्रेशन के मनन गुप्ता जी को, 416-451-0040 दोस्तों नंबर याद रखें। मनोज जैन आपसे पूछ रहे हैं कि मनन जी, हाउ सून कैन आई गेट अ न्यू पासपोर्ट इशूड आफ्टर अक्वायरिंग कैनेडियन सिटीजनशिप।
4: देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ट्रैवल करना है, कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो उसके लिए आपको कैनेडियन पासपोर्ट चाहिए होगा। वंस यू गेट योर सिटीजनशिप प्रोसेस डन, ओथ सेरेमनी के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट को लेकर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करें जल्दी से जल्दी। वैसे पासपोर्ट कैनेडा की तरफ से एक्सपीडाइटेड सर्विसेज अवेलेबल है, आप वीकेंड और स्टैचुटरी हॉलीडे पर भी अपना पासपोर्ट जारी करवा सकते हैं बट फॉर दैट यू हैव टू शेल आउट एडिशनल $300 से $400 तक की एक्स्ट्रा अर्जेंट प्रोसेसिंग फीस होती है। लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पैसे भी स्पेंड करने पड़ेंगे। नॉर्मली 10 से 20 दिनों बिजनेस डेज में पासपोर्ट जारी हो जाता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने ट्रैवल प्लान्स सिटीजनशिप होने के बाद ही यू नो एग्जीक्यूट करें, अननेसेसरी खर्चा करने की मेरे हिसाब से तो आवश्यकता नहीं है। जी
3: जी एंड कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, ऑलवेज याद रखें द वन एंड ओनली मनन गुप्ता जी एंड हिज टीम एट स्काईलेक इमिग्रेशन, 416-451-0040, 416 4164510040. अपने सवाल अगले वेंसडे के लिए आप immigrationsegment@gmail.com पर भेज सकते हैं फॉर मनन जी. मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
4: थैंक यू वेरी मच अनिल जी, हैव अ गुड डे.
3: थैंक यू सर. 4164510040. एक बार फिर से बता दूं, एशियंस जो कि एक बहुत ही पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग और टेक्सटाइल स्टोर है, मार्कम रोड और लॉरेंस एवेन्यू के पास स्कार्ब्रो में, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट स्कार्ब्रो. और आपने शॉपिंग करनी है, खासकर जब ये सीजन ही शादियों वाला सीज़न होता है, एक से बढ़कर एक लेडीज़ को चाहिए होते हैं कपड़े, लहंगे, सलवार सूट्स, तो साड़ीज़ हो, लहंगेज हो, सलवार सूट्स हो या फिर ब्राइडल वेयर हो, सारे लेटेस्ट लेटेस्ट फैशंस पहुंच चुके हैं एट एशियंस एंड मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग एज वेल. ऐसा ना हो मेन को लगे हमारे लिए वहां पे क्या है. ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स 4164386568. एशियंस नाम आपने रखना है याद. एंड अगला गीत जो है बिल्कुल हमने लाइनअप आपके लिए कर दिया है, आप ही की रिक्वेस्ट है, इंजॉय करें. आते हैं वापस.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940.
1: He's breaking through the midfield.
2: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. Winter tires या extended warranty लें और हर एक के साथ पाएं एक extra entry. आज ड्राइव करें कल जीतें. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
0: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, Brampton and Georgetown. Exams के लिए doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle के superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal for real estate buying, selling, investments. एक बार इनसे जरूर संपर्क करें. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30-plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
3: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से. अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें. कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन. 647-866-1086, 647-866-1086. राज जोशी, नाम ही काफी है.
0: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
4: ये वो जगह है जहाँ हर धर्म को बराबर रखा जाता है, हमारी सद्भावनाओं का सम्मान किया जाता है और हमारी जनरेशन के लिए भी पुरानी कलाकृतियों को संभाला जाता है. ये है इंडिया सजावट एंड पूजा हट, धर्म, संस्कृति और कला का सुमेल. 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808.
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16 तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: Unlimited Radio on CMR 101.3 FM, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान जी हमारे साथ हैं. देर ओपन 7 डेज अ वीक 11 AM टू 7 PM एंड द नंबर इज 905-450-2828. और देखते हैं कि विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की क्या धमाकेदार डील्स लेकर पहुंचे सुल्तान जी. सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर सुल्तान जी, आपका स्वागत है.
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
0: सुल्तान जी. सबसे पहले टीवी सेक्शन पर आपसे कुछ अमेजिंग डील्स लेते हैं लॉन्ग वीकेंड की.
1: बिल्कुल सनी भाई, एक्चुअली हमने भी कंपनी से ये बात की थी, ईमेल की थी, फिर मीटिंग हुई हमारी और डिसाइड किया गया, क्योंकि राइट आफ्टर मदर्स डे वीकेंड ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड आ गया, तो इसकी वजह से मदर्स डे वाली प्राइसेस, जो कि जैसे मैं हमेशा कहता था साल में एक दफा मदर्स डे आता है और साल में एक दफा ही मदर्स डे प्राइस मिलती हैं, वही प्राइसेस विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे एक्सटेंड की गई हैं. तो 18th of March तक आपको स्पेशल लोएस्ट प्राइसेस जो हैं ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे मिलेंगी, जिसमें 85 इंच सैमसंग टीवी आपको मिल रहा है ओनली 999. सिर्फ 999 में आप 85 इंच का सैमसंग टीवी ले सकते हैं, जिसकी रेगुलर $1800 प्राइस थी. सेल पे भी ये 1399 का बिकता है, लेकिन 999 का विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे आपको दिया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से. 55 इंच सिर्फ 399 में या 65 इंच सिर्फ 699 में अगर लेना है तो आपको आना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस. 905-450-2828 हमारा नंबर है, या BramptonAppliances.com, ये वन वर्ड है BramptonAppliances.com, हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं 905-450-2828 जी.
0: 905-450-2828 जहां पर लॉन्ग वीकेंड विक्टोरिया डे की अमेजिंग डील्स लेकर सुल्तान जी पहुंच चुके हैं. अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शंस को भी यहां पर हम कवर करेंगे ताकि देखते हैं कि उन सेक्शंस में भी क्या अमेजिंग डील्स हैं. जी सुल्तान जी.
1: बिल्कुल जी, बंडल पैकेजेस में तो बहुत शानदार डील है, मोर देन 40% कस्टमर सेव कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3-पीस किचन बंडल लेना है स्टेनलेस स्टील का, तो $5000 वाला 2999 में मिलेगा विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड 18th of May तक. $2000 आप 3-पीस किचन बंडल पे सेव करेंगे और 6 मंथ में पे करना है. अगर आपको बिल्ट इन किचन लेना है या पैनल रेडी फ्रिज, वो भी 48 इंच का, या पैनल रेडी डिशवॉशर के साथ बंडल पैकेज चाहिए, तो 40% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है. हमारे पास जो बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप, बॉश का बिल्ट इन वाल्वन विद माइक्रोवेव, बॉश का बिल्ट इन डिशवॉशर और बॉश का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज विद आइस एंड वाटर डिस्पेंसर, $16000 वाला बंडल पैकेज बिल्ट इन किचन विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे ओनली 9900 में, 9900 में मिलेगा 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पे. फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ये प्लैटिनम सीरीज है, प्लैटिनम कलर में आपको वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ मिलेगा $2500 वाला ओनली 1799 में. इसमें भी सिर्फ वॉशर एंड ड्रायर लेने पे ही आपको $700 की सेविंग होगी. विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मिस ना करें, बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है जी 905-450-2828. टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1700 वाला 1099 में पेयर मिल जाएगा, वॉशर ड्रायर दोनों. और अगर आप किचन में काउंटर टॉप एयर फ्रायर लेना चाहते हैं, वो भी निंजा क्रिस्पी, निंजा बेस्ट नेम है इस वक्त, प्रीमियम ब्रांड है निंजा क्रिस्पी, हमारे पास इस वक्त स्पेशल प्राइस पे आया है जी $300 वाला ग्लास पॉट के साथ निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर ओनली $149 में, जस्ट ओनली फॉर विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मंडे 18th of May तक ये स्पेशल प्रमोशन है. जरूर विजिट करें 801 Govaird Drive West, just east of Chinkoozi on Govaird hai ji, Brampton TV and Appliances, 905-450-2828, 905-450-2828
0: ji. Ji, bahut bahut shukriya Sultan ji.
1: Thank you very much ji, bahut shukriya.
0: Ji, 905-450-2828, Brampton TV and Appliances.
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन गोवेहेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस. This is .ca.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं. ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है. 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है. हर कदम हम आपके साथ. 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finlay Ave इन Ajax, 289-372-3330 और acvc.info.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है. ऐसा क्यों?
3: नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं. घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान. फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com. प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन.
4: सुन रहे हो, मेरे प्रादी आज फ्लाइट है इंडिया तो.
5: ओ याद है पर उनु कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरे दी फड़ लियावे.
4: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खा ले, इंडिया दे सपने ना देखो. choleBhature.ca ते चलो.
6: choleBhature.ca बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो. choleBhature.ca. कॉल 9054582448.
7: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
8: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
9: Ye time hai for expert service at your local Toyota dealer.
8: One easy stop for oil changes, brake checks and tire swaps. Book your appointment today. Kyunki ye safar hone wala hai toofani.

0: Joshi.
1: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM. Welcome back, friends. Ek aur kahani meri zubani. Ek chutki imandari. एक संत ने ग्रामीणों को खाने पर आमंत्रित किया। अचानक याद आया कि रसोई में नमक तो सुबह ही खत्म हो गया। संत शिष्य से बोला, जरा बाजार से एक पुड़िया नमक लेते आओ। ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पे खरीदना, ना अधिक पैसे देना और ना ही कम। शिष्य ने पूछा, अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूं और चार पैसे बचाता हूं तो इसमें हर्ज ही क्या है? संत बोले, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। सभी संत की बात सुन रहे थे। एक बोला, महाराज कम दाम पे नमक लाने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? संत ने कहा, सोचो कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा, तभी ना जब उसे पैसों की सख्त जरूरत है, और जो कोई भी उसकी स्थिति का फायदा उठाता है वह उस मजदूर का अपमान करता है जिसने कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, लेकिन खुद ही देख लो हम कहां पहुंच गए हैं। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। Stay blessed, ladies and gentlemen.
2: 10 meter, बस इतना को याद रखो। तो हनु ऊपरों लांग दिया बिजली दिया पावर लाइंस तो कटो कट 10 meter दूर रहना चाहिए है। ओंटारियो विच बिजली तो होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण पावर लाइंस हैं। अते बिना छुए भी तो आड़ी मौत का कारण बन सकती हैं। जेकर तुसी बाहर काम कर रहे हो तो उपरों लंघ दिया पावर लाइनस वल ध्यान दियो। अपने आप नू अते अपने उपकरणों नू इन्हां तों घट्टो घट 3 meter दूर रखो। इलैक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वालों सुनेहा ESASafe.com/stop look live ते होर जाणो।

जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शालिनी आप लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। म्यूजिक, मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरा हुआ आपका फेवरेट शो। आज का मूड दोस्तों सिंपल है, स्टे हैप्पी स्टे ट्यून्ड। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी शायरी से। मुस्कुराते रहो तो सफर आसान हो जाता है, हर दिन फिर एक नया अरमान हो जाता है। जो दिल से जीना सीख ले उसका हर पल खास हो जाता है। तो दोस्तों इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आज के सफर की शुरुआत करते हैं, जहां होगा बॉलीवुड कैलेंडर, आपके फेवरेट सॉन्ग्स, थोड़ी सी फिल्मी गॉसिप्स, मेहमानों का साथ और आपसे हमारी दिल से बातचीत, यानी एक और एक्शन पैक्ड एंटरटेनमेंट पैक्ड शो जस्ट फॉर यू। तो सुनते रहिए शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी शाम के 4 बजे तक ऑन CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून।

0: and roll to the beat of the dough. Come on, shake your body, rock and roll to the beat of the dough.
1: रॉक एंड रोल सुनिए बहुत ही अमेजिंग गाने के साथ की आज के शो की शुरुआत. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3. आप हैं मेरे यानी शालिनी के साथ और आज है दोस्तों वेंसडे मे 13th. 2 बज चुके हैं और 4 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा बरकरार. गेस व्हाट, आज का मौसम क्या कहता है. 14 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्टली क्लाउडी स्काई है, फील्स लाइक 12 डिग्रीज और साथ ही यही है आज का हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर जा सकता है 7 डिग्री सेंटीग्रेड रात के 11 बजे और आपको महसूस हो सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड. थैंक गॉड वी हैव अनदर डे टू स्माइल, अनदर डे टू ब्रिंग स्माइल टू समबडी एल्सस फेस, अनदर डे टू फील हैप्पी, अनदर डे टू मेक ब्यूटिफुल मेमोरीज फॉर आवर फ्यूचर. तो चलिए दोस्तों अगले 2 घंटे का इस्तेमाल बहुत ही वाइजली करते हैं और आपको करते हैं एंटरटेन एक बार फिर से मस्ती की रेलगाड़ी पर. तो हो जाइए शालिनी के साथ सवार और आज के शो में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ट्रैक्स लेकर आए हैं जहां पर मिले जुले गाने होंगे 50s के, 60s के, 80s के, 90s के और नए दौर के गाने भी होंगे. इसके साथ साथ एक गजल की फरमाइश आई है, सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त एक गजल, तो बहुत प्यारी सी गजल है वो भी शो के दौरान आपकी नजर करेंगे. शेर व शायरी भी होगी और आपसे आज के लेटेस्ट टॉपिक पर बातचीत भी होगी और बहुत कुछ होगा दोस्तों. और अगर आप चाहते हैं हमारी आवाज में अपनी आवाज मिलाना, कोई सजेशन देना चाहें, कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजना चाहें, किसी अपने तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहें, किसी का स्पेशल डे हो, बर्थडे, एनिवर्सरी, तो कोई भी आप मैसेज पहुंचा सकते हैं हमारे जो है शो को ज्वाइन करके. आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 416-593-0055. छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेंगे दोस्तों, उसके बाद लौटते हैं और खोलते हैं बॉलीवुड के पन्ने और देखते हैं आज कौन सी सेलिब्रिटी मना रही है अपना स्पेशल डे. एंजॉय शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है. Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@seanmedia.com, seanmedia.com.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
3: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
4: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
5: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
4: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
5: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुंचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
4: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
6: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का. फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26. 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर. अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे. डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर. मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, दैट्स 905-789-6600.
7: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
8: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
7: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: 1008 or visit winlifetime.com. Win Lifetime.
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Sean Express, Gaano Ki Sweet Dish. This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant. वेलकम बैक दोस्तों, शालिनी आपका स्वागत करती है CMRFM 101.3 पर एक बार फिर से मस्ती की रेलगाड़ी पर. और दोस्तों, अगर आपको फील गुड वाइब्स चाहिए ना, पार्टी मूड चाहिए या एकदम फ्रेश एनर्जी और साथ में रोमांस भी चाहिए, तो एक आवाज है जो हर बार परफेक्ट फिट बैठती है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपर कूल सुपर एनर्जेटिक सिंगर बेनी दयाल की. और इनकी जो वॉइस है ना, उसका स्टाइल कुछ अलग है. मॉडर्न है, फंकी है, फुल ऑफ एनर्जी है. आज बर्थडे मना रहे हैं बेनी दयाल. बॉलीवुड के बड़े इंटरेस्टिंग सिंगर हैं. 13 मई 1979 को इनका जन्म हुआ था. प्लेबैक सिंगर हैं, ही इज़ बेस्ड इन UAE. प्रोमिनेंट सिंगर हैं हिंदी के साथ, मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, मराठी, बहुत सारी और लैंग्वेजेस में. ही इज़ अ मेंबर ऑफ द बैंड S5 और अपना एक्टिंग डेब्यू भी इन्होंने एक मलयालम फिल्म के साथ किया था, बाय द पीपल, अ सस्पेंस थ्रिलर. और इसके साथ इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. एक बार इन्होंने शुरुआत कर दी ना, बस पीछे नहीं देखा इन्होंने. यूनिक वॉइस टेक्स्चर के लिए जाने जाते हैं, वर्सिटिलिटी के लिए जाने जाते हैं. चाहे रोमांस हो, डांस नंबर हो, हर जॉनर में एब्सोल्यूट हिट. और इनके हिट गानों की बात करें तो तमाम इनके जो गाने हैं ना, वो हिट आफ्टर हिट ही हुए हैं. पार्टी हो, रोड ट्रिप हो, बेनी दयाल के सॉन्ग्स में जो है एक अलग ही जान आ जाती है हमारे ट्रिप में. और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत लाइक आई सेड S5 बैंड से शुरू की थी, जो एक रियलिटी शो से बना था. और वॉइस इतनी अलग है कि रोमांटिक सॉन्ग्स से लेकर आप अगर हिप हॉप डांस नंबर्स देखें, बड़े ईजिली वो स्विच बैक एंड फोर्थ करते हैं. AR रहमान के साथ काफ़ी काम किया है और मुझे इनसे मिलने का मौका मिला था जब मैंने AR रहमान का शो किया था यहाँ पर टोरंटो में कुछ साल पहले. सो वेरी ग्राउंडेड आर्टिस्ट, अ वंडरफुल आर्टिस्ट. और उन्हीं को हम डेडिकेट करते हैं आज का अगला गाना फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना नजरें मिलाना. आप हैं शालिनी के साथ मस्ती की रेलगाड़ी पर CMRFM 101.3. गुड आफ्टरनून.

0: कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। और दोस्तों जब प्यार होता है तो कभी कभी नजरें कहीं और होती हैं, निशाना कहीं और होता है, ऐसा होता है। और जिससे नजरें मिलती हैं शायद उससे प्यार नहीं होता, कहीं और प्यार हो रहा होता है, नजरें कहीं और होती हैं। लेकिन जब असल मायने में प्यार होता है ना, तो उसको पता रहता है कि नजरें तो उस तरफ हैं लेकिन प्यार मुझसे है, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोस्तों। और ऐसे ही जिंदगी में छोटी छोटी बातें होनी चाहिए, और दैट मेक्स द लाइफ सो सो इंटरेस्टिंग। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आज के डिस्कशंस के लिए हम लेकर आएंगे अब से कुछ ही देर में। और आज भी चाहिए हमें आपके बहुत सारे कॉल्स। आई रियली रियली वॉन्ट टू हियर वॉट यू से अबाउट टूडेज टॉपिक, बहुत जल्दी बताएंगे। फिलहाल बता दें, अगर आपको चाहिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज दे रहे हैं ऑल ओवर ऑन्टेरियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और उनकी जो एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है। कोई मिडल मैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक। स्टाइल भी सुपीरियर, एक्सेप्शनली गुड लुक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ एक साथ। तो आप लोग दोस्तों अगर अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, सो दे हैव फ्रेंचाइज ऑप्शन अवेलेबल। कॉल कीजिएगा यश विंडोज एंड डोर्स में धरण जी को 416-732-3600, 416-732-3600। और देओल ट्रैवल की आज की डेट्स आ चुके हैं दोस्तों, आज की लेटेस्ट लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं, और इन डील्स का आप फायदा उठाइए दुनिया भर में। वेर एवर यू वॉन्ट टू गो यू कॉल देओल ट्रैवल फर्स्ट। टोरंटो से दिल्ली या मुंबई जा सकते हैं इस महीने में वन वे $820 में। नाउ अमृतसर जा सकते हैं वन वे इन द मंथ ऑफ मे 960 में दो बैग्स के साथ। दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा है $1,490, लिमिटेड सीट्स हैं। और साथ ही टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली जा सकते हैं सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप $1,540 दो बैग्स के साथ। नाउ टू लोकेशंस टू सर्व यू, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन। देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200, 588-5100 and 588-4200. It's 2:23 right now. दोस्तों एक छोटा सा टाइनी सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद आज की ताज़ा हेडलाइंस का हम रुख करेंगे, और देखते हैं कि आज इंडिया की इंटरनेशनल खबरें और हमारी लोकल खबरें क्या कहती हैं। बहुत जल्दी वापस लौटते हैं, आज का टॉपिक भी आपको बताएंगे। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, और अगर सीधे मैसेज भेजना चाहें हम तक तो 416-569-7812, 416-569-7812। गुड आफ्टरनून, आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first-time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Sean Express. Simply good. Retro style, old.

0: नमस्कार। शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन। पहले जान लेते हैं हेडलाइंस। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीन रवाना होने से पहले उन्होंने कहा ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। ईरानी ड्रोन हमले के बाद यूएई के टैंकर से तेल लीक। वहीं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सिर्फ दो गाड़ियों के साथ निकले पीएम मोदी। आमतौर पर पीएम के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है। हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना या खास पूजा पाठ जरूरी नहीं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन की एलएनजी और 45 दिन की एलपीजी का स्टॉक। और दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कांस आज से शुरू हो चुका है। फेस्टिवल 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में जारी रहेगा।
1: और अब नजर डालते हैं लोकल टॉप खबरों की ओर। और सबसे पहले एक टॉप क्राइम की खबर है। दिल दहला देने वाली खबर आ रही है स्कार्ब्रो से। टोरंटो पुलिस सर्विस के मुताबिक लगभग 2 साल की बच्ची ओरिना चू की मौत के मामले में उसकी मां सी टैंग यांग को फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्ज में गिरफ्तार किया गया है। ये इंसिडेंट मिडलैंड एवेन्यू और स्टील्स एवेन्यू ईस्ट के पास मंगलवार सुबह हुआ, जहां बच्ची घर में बगैर वाइटल साइंस के मिली है और हॉस्पिटल में आज उसको मृत घोषित कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। चलेंगे डाउनटाउन टोरंटो, जहां पर अर्ली मॉर्निंग आर्म्ड रॉबरी की खबर आ रही है। स्पेडाइना एवेन्यू और ब्रेमनर बुलेवर्ड एरिया में 4 मास्क्ड सस्पेक्ट्स ने कार में बैठे विक्टिम्स को टारगेट किया और करीबन 500,000 वर्थ ऑफ ज्वेलरी लूट ली। एक विक्टिम को माइनर इंजरीज आई हैं, जबकि सस्पेक्ट्स अभी भी फरार हैं। जीडीए में पेट्रोल प्राइसेस यानी गैस प्राइसेस फिर से बढ़ने वाली हैं। एनर्जी एक्सपर्ट के मुताबिक गैस प्राइसेस जल्द ही 194.9 सेंट्स प्रति लीटर तक पहुंचेंगी। समर में 220 सेंट्स प्रति लीटर का नया रिकॉर्ड बन सकता है। मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। पील रीजन में एक बड़ा फ्रॉड नेटवर्क पकड़ा गया है। पील रीजनल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो काउंटरफिट लाइसेंस प्लेट्स बनाकर बेच रहे थे। ये प्लेट्स 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस से जुड़ी हुई हैं, ऑटो थेफ्ट्स और वायलेंट कार जैकिंग्स में इस्तेमाल हुई हैं। कई प्लेट्स लेजिटिमेट ओनर्स के नंबर से मैच कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन इस वक्त ऑनगोइंग है। उधर फ्लेमिंगडॉन पार्क स्टैबिंग केस में बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने 6 टीनेजर्स और एक 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। 16 साल के एक लड़के पर अटेम्प्टेड मर्डर चार्जेस लगे हैं, बाकी सस्पेक्ट्स पर एग्रीवेटेड असॉल्ट के चार्जेस लगे हैं। पुलिस के मुताबिक पहले फाइट हुई थी और फिर सस्पेक्ट्स व्हीकल्स में वापस आकर अटैक करने लगे। फाइनेंशियल स्ट्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर, और जिसमें कहा जा रहा है कि कनाडा में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऑफिस ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ बैंक्रप्सी कनाडा के अनुसार 2026 के पहले 3 महीनों में 37,121 इंसॉल्वेंसीज फाइल हुई हैं। ये 2025 से 8.5% ज्यादा है। 2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये हाईएस्ट लेवल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कैनेडियंस अब रिकॉर्ड लेवल डेट कैरी कर रहे हैं। अंत में मौसम का हाल चाल। टोरंटो में आज मौसम रहेगा प्लेजेंट, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड, हाई ऑफ 14 डिग्रीज एंड लो ऑफ 7 डिग्रीज। अगले हफ्ते ह्यूमिडिटी के साथ 30 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा फील होने के पूरे पूरे हैं आसार। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157। दैट्स 416-570-0157।
2: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम। इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-5300
3: वीरे, वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
4: भाई चार लोकेशन तो देण सेवावा, बस इसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
5: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालों 10-30% सस्ती प्राइस दा दावा कर देने।
6: मिड्डा फर्नीचर आओ, घर दफ्तर नु सजाओ। ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, मिसी सागा ते कैम्ब्रिज लोकेशन ते आओ ता सही,
5: आजमाओ ता सही, अपना बनाओ ता सही। मिड्डा फर्नीचर, कॉल करो 416-901-2810, 416-901-2810, मिड्डा फर्नीचर।
7: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, डोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
0: आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए हर घड़ी आपका विचार और हमारा अंदाज। शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेल गाड़ी। वेलकम बैक दोस्तों, शालिनी आपका स्वागत करती है सीएमआर एफएम 101.3 पर वंस अगेन। और साथ ही दोस्तों, आज है वेंसडे May 13th और आज के दिन को देखते हुए क्या खास होने जा रहा है आज के दिन में, क्या चीज है जो आज के दिन को और बहुत ज़्यादा ख़ास बनाती है, ये अब मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन में क्या क्या स्पेशल हो रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बता दूं कि आज के दिन में ना खाने पीने की बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है खाने पीने को देखते हुए कि आप काफ़ी कुछ आज खा सकते हैं और काफ़ी कुछ पी सकते हैं। कहते हैं कि खुशी का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, तो अच्छा कुछ खाना चाहते हैं तो आज खा ही लीजिए बगैर किसी गिल्ट के। बट समहाउ ऐसा हो रहा है कि आजकल शुरुआत ही खाने से हो रही है, 3-4 दिन से यही बातें हो रही हैं कि कुछ भी खाइए गिल्ट फ्री। तो आज जो ऐसा गिल्ट फ्री खाने का तो दिन नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है। हेल्दी से शुरू करते हैं। हेल्दी, टेस्टी एंड मिडल ईस्टर्न फेवरेट है हमस, और हमस लवर्स आज आपका दिन है। तो ये आप चिप्स के साथ भी खा सकते हैं, पीटा के साथ खा सकते हैं हमस, तो सबसे पहले तो ये खा लीजिए। इसके अलावा नेशनल एप्पल पाई डे है। इन एप्पल पाई अ डे कीप्स द बैड मूड अवे, ऐसा कहा जाता है। तो जैसे एप्पल डॉक्टर को अवे रखता है, वैसे आपने एप्पल और पाई मिक्स कर दिया तो आपका बैड मूड गुड मूड हो जाता है। और फ्रेशनेस के लिए आज है नेशनल फ्रूट कॉकटेल डे। आप हेल्दी फ्रूट्स का मिक्स बना सकते हैं, टेस्टी भी और हेल्दी भी। इसके अलावा हेल्थ रिमाइंडर्स के लिए आज है कॉफ ड्रॉप डे। और वेदर जैसे चेंज हो रहा है, इसमें कॉफ होना बहुत ही लाजमी है, तो आपके थ्रोट के लिए केयर बड़ी जरूरी है। जैसे खासतौर पर हम जैसे प्रोफेशन में जो लोग हैं, हमारे जैसे प्रोफेशनल, उनके लिए तो थ्रोट को बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रखना पड़ता है, राइट? सो कॉफ ड्रॉप आप जरूर लीजिए अगर आपका गला खराब है तो। इसके अलावा एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, डोनेट अ डेज वेजेस टू चैरिटी डे। एक दिन में आप जितना भी कमाते हैं अगर पॉसिबल है तो आज आप किसी चैरिटी को डोनेट कर दें, क्योंकि गिविंग इज द रियल हैप्पीनेस। नेचर लवर्स के लिए आज है ट्यूलिप डे। हाउ कैन वी फॉरगेट कलरफुल ट्यूलिप्स जो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का सिंबल होता है, तो ये है। इसके अलावा दांतों की बात कर लें तो रूट केनाल अप्रिसिएशन डे है। जितनी आपकी स्माइल अच्छी होती है उतनी जरूरी आपके डेंटल केयर भी है, तो ये जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज है नेशनल क्रूटॉन्स डे। सैलेड में अगर आपको क्रंची क्रूटॉन्स खाना पसंद है तो स्मॉल थिंग्स दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डे कि आज के दिन में क्या क्या स्पेशल होने जा रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों बता दूं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपसे मैं पूछना चाहती हूं कि कनाडा आने के बाद आप लोगों ने कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपने जिंदगी में पहली बार की है। कनाडा आने से पहले आपने कभी नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, किसी ने बैक होम हेल्पर्स हमारे बहुत होते थे, किसी ने कभी डिशेस नहीं धोई थी, यहां पर आकर बर्तन चौका खटका सब करना पड़ता है। सो व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू फील यू हैव नेवर डन बिफोर कमिंग टू कनाडा और यहां पर आकर आपने किया। जैसे हर बार कभी कभी बैक होम ये भी आदत होती थी कई लोगों को कि लेफ्ट ओवर खाना नहीं खाते थे, हर बार फ्रेश खाना बनता था, कुक होता था, वो खाना बनाता था। यहां पर आकर लेफ्ट ओवर खाना फ्रीज करते हैं लोग, बाद में खाते हैं कई सारे लोग। टिम हॉर्टन्स की कॉफी का एडिक्शन आपको हुआ है, अपॉइंटमेंट लेकर मिलने का जो है आदत यहाँ पर आकर बनी, बैक होम कभी अपॉइंटमेंट्स नहीं लिए अगर आपने। इसके अलावा बेसमेंट लिविंग एक्सपीरियंस अगर आपको बैक होम में नहीं हुआ यहाँ पर आकर हुआ है। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू स्टार्टेड इन योर लाइफ पहली बार आफ्टर कमिंग टू कैनेडा, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। तो बताइए हमें, हमारी लाइन्स आर ओपन नाउ 416-593-0055 और अब चैप्टर 2 खोलते हैं बॉलीवुड का और बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। और आज का ये बॉलीवुड का जो चैप्टर है ये स्पॉन्सर किया जा रहा है कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के सौजन्य से। और अगर आप चाहते हैं आपके घर में या आपके बिजनेस में पैटियो कवर लगवाना, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स, तो आज ही कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी से संपर्क करें। ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। बिल्कुल फ्री बारबेक्यू मिलता है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। बहुत ही टॉप क्वालिटी के मटीरियल्स हैं, मॉडर्न डिजाइन हैं, कंपेटिटिव प्राइसिंग है। सनरूम बनवा सकते हैं, कस्टम कैनोपी लगा सकते हैं और अपनी आउटडोर को और भी ज्यादा ब्यूटिफुल बना सकते हैं। 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन में लोकेटेड है कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी। नंबर आप नोट कर लें 416-831-4790। और अब जब बात करें एक ऐसी पर्सनालिटी की जिन्हें कहा जाता है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, स्टाइल है, बोल्ड चॉइसेस भी हैं, हम बात कर रहे हैं बेहद ग्लैमरस और बेहद पॉपुलर सनी लियोनी की। इनका बॉलीवुड सफर काफी यूनिक रहा है। इन्होंने एंट्री ली रियलिटी शो से और फिर धीरे धीरे फिल्मों में अपनी जगह बना ली। सुपरस्टार का ही जाती हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सोशल मीडिया आइकॉन भी हैं। और रागिनी MMS 2 के बाद इनकी पॉपुलैरिटी जो है स्काई रॉकेट हो गई और वो हाउस होल्ड नाम बन गई। और चलिए सनी लियोनी की बात आती है तो इन्हें कहते हैं बेबी डॉल। तो कनाडा में पली बड़ी है बेबी डॉल और रियल नाम इनका है करणजीत कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बेबी डॉल के साथ इस सेगमेंट की, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर। एंजॉय।

0: बेबी डॉल में सोने दी, बहुत अमेजिंग सा गाना आपकी नजर क्या, क्योंकि आज बर्थडे है सनी लियोनी का और कैनेडियन है और इनको लोगों ने बहुत बहुत बहुत पसंद किया है, तो भाई ऐसा गाना तो बनता ही था। और सारे गानों की फरमाइश आ चुकी है और डेफिनेटली हम वो सारे गाने आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो का नंबर 4165193 0055, आप हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपसे मैंने पूछा था एक सवाल कि कनाडा में आने के बाद कौन सी वो एक ऐसी चीज़ है जो आपने ज़िंदगी में पहली बार शुरू की। हर चीज़ में सॉरी बोलना, एक लाइन में अच्छे बच्चों की तरह खड़े रहना, दूसरे इंसान का वेट करना, दूसरे की बात नहीं काटना, यू नो वी डोंट टॉक ओवर समबडी एल्स, कोई बात किसी ने ख़त्म नहीं की उससे पहले हम बात शुरू करने की कई बार हमारी आदत होती थी बैक होम, लेकिन यहाँ पर इसको अच्छा नहीं माना जाता। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़, मेरे पास एक अभी मैसेज आया है लेकिन उनका मैं नाम नहीं बता सकती, उन्होंने कहा है कि मैं पहले बैक होम ऐसा बहुत करता था, सामने वाले की बात ख़त्म नहीं होती थी कि अपनी शुरुआत कर देता था अपनी बातों की, और यहाँ पर आकर मुझे, मैंने जब एक कनेडियन कंपनी में काम किया तो देन आई रियलाइज्ड कि इसको अच्छा मैनर नहीं माना जाता, यू नो पीपल डोंट लाइक इट कि इफ़ यू ट्राई टू टॉक ओवर दैम। तो दैट वॉज वन थिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग आफ्टर कमिंग टू कैनेडा। तो वॉट इज़ दैट वन थिंग जो आपने ज़िंदगी में पहली बार शुरू की कैनेडा आकर, ज़रूर हमें बताइए 4165930055। और दोस्तों हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो वेल्थ किस काम की। जिंदगी में परेशानियां आती रहती हैं जब आपकी बॉडी बिल्कुल प्रॉपर शेप में नहीं रहती, इसीलिए एक बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सा प्रोग्राम होने जा रहा है योगा के हवाले से, और ये 10 घंटों का प्रोग्राम है, 3 दिनों तक चलेगा और फ्राइडे से स्टार्ट होगा। एंड दिस इज अमेजिंग अमेजिंग प्रोग्राम जहाँ पर सिखाया जाएगा कि अपने आप से कैसे प्यार किया जाता है, किस तरह से आप एनर्जी को एक सही मायने में चैनलाइज कर सकते हैं, किस तरह से अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम संवार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होने जा रही हैं इस फ्राइडे, सैटरडे और संडे को होने जा रही है, नेशनल बैंकवेट हॉल, ये मिसिसागा में है, 7355 टॉरब्रैम रोड पर, और 15 मई से 17 मई तक होगा, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं सिया जी ज्यादा जानकारी के लिए। सिया जी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी, कैसी हैं आप?
1: नमस्कार शालिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस, थैंक यू।
0: थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सिया जी, और बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और तमाम हजारों लाखों लिसनर्स तक आपकी आवाज़ इस वक्त हमारे शो के माध्यम से जा रही है, तो ज़रूर बताएं कि किस तरह का इवेंट है और कैसे हमारे लिसनर्स इसमें भाग ले सकते हैं।
1: शालिनी जी, आपने काफ़ी कुछ तो आप ही ने शेयर कर दिया है, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि ये वन स्टॉप वर्कशॉप है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं होगा या सिर्फ योगा नहीं होगा, इसमें सब कुछ होगा। तो योगा अच्छा। भी होगा, मेडिटेशन भी होगी, म्यूजिक थेरेपी भी होगी, प्राणायाम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा सांस है, तो हम शायद 30% अपना सांस यूज करते हैं डेली बेसिस पे आउट ऑफ 100। सो आप वहाँ आते हैं तो आप अपनी लंग कैपेसिटी, अपने सांस को कैसे कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल पूरा दिन आपकी बनी रहे, कि आपको कोई एनर्जी ड्रिंक्स ना लेने पड़े, मतलब आप यही समझ ले कि ये एक एनर्जी का कैप्सूल ही है।
0: क्या बात है, वाव। तो सिया जी, ये 3 दिनों का हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और कितने घंटों का होगा ये प्रोग्राम, क्या वक्त रहेगा और कौन कौन से इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं?
1: जी, फ्राइडे इंट्रोडक्शन डे है, 5 AM to 7 AM होगा, सैटरडे एंड संडे दोनों दिन 5 AM to 9 AM होगा। सो आप पूरा टाइम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कवर की जाती हैं। अगर किसी को ऐसे लगता है कि इट्स टू लॉन्ग या वो नहीं कर सकते हैं सब एक्सरसाइजेस, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पेस पे कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत है, वो आना चाहते हैं, हम चेयर्स भी सप्लाई कर देंगे अगर वो नीचे नहीं बैठ सकते। बच्चे 10 साल से ऊपर आ सकते हैं विद द अकॉम्पनिंग विद देयर पेरेंट्स।
0: अच्छा, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. सो 10 साल से ऊपर के बच्चे भी जा सकते हैं, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि सिया जी बचपन से अगर अच्छी हैबिट्स हम बच्चों में डालते हैं तो उनका हम फ्यूचर सुधार देते हैं बेसिकली.
1: बिल्कुल शालिनी जी, और आजकल का 10 साल का बच्चा जो बहुत साल पहले 10 साल का बच्चा बच्चा होता था, पर क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं तो आज जो 10 साल का बच्चा है ऑलमोस्ट यू कैन से इज लाइक एन अडल्ट बिकॉज दे हैव टू मच इन्फॉर्मेशन. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम अपने साथ कनेक्ट करना भूल गए हैं. टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है, उसी के जरिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, उसी के माध्यम से हम शेयर कर पाते हैं लोगों के साथ टेक्नोलॉजी की वजह से. सो मैं उस चीज को भी नमस्कार करती हूँ. पर सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम हेल्थी रहना चाहते हैं जब तक हम इस प्लैनेट पे हैं, तो ये आपको अपने लिए समय निकालना होगा.
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात है. तो सिया जी दैट्स वंडरफुल, ये नेशनल बैंक्वेट हॉल में हो रहा है दोस्तों, ये डिटेल्स आप मुझसे कभी भी ले सकते हैं. तो सिया जी एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, क्या इसको अटेंड करने की कोई कॉस्ट है? अगर है तो कितना चार्जेस होंगे इसके?
1: शालिनी जी, ये 26 ईयर्स से श्री श्री ज्ञान विकास केंद्र फ्री वर्कशॉप कर रहा है. ये इंडिया से शुरू हुआ था, अब नॉर्थ अमेरिका में 16 ईयर्स से फ्री चलते हैं. इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये डोनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फीस नहीं है, बस आपका टाइम ही आपकी फीस है.
0: क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. तो सिया जी बिफोर यू गो, अपने सभी कोऑर्डिनेट्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लीज शेयर कर लें ताकि हमारे लिसनर्स आपसे बातचीत कर सकें.
1: जी, तो मैं आपको दो फोन नंबर दूंगी. एक तो है 416-571-2598. सेकेंड फोन नंबर 416-844-1535. 416-844-1535. आप हमें कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं, आप खुद ही रजिस्टर कर सकते हैं, या आप ऑन द स्पॉट भी रजिस्टर हो सकते हैं अगर आप सुबह 5 बजे तक वहां पहुंच सकते हैं 15 तारीख को.
0: क्या बात है, वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिया जी. तो दोस्तों 3 दिनों की वर्कशॉप है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप इन नंबर्स पे बात करें और अपनी बुकिंग करा लें और जरूर जाएं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं. सिया जी फिर आपसे जुड़ेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर.
1: थैंक यू वेरी मच शालिनी जी,
0: नमस्कार. जी दोस्तों, आप लोगों का मैं फिर से वेलकम करती हूँ. इट्स 2:55 राइट नाउ और आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे 4 बजे तक. बस अब से कुछ ही देर में आज की ताज़ा खबरें आपकी नज़र हम करेंगे. और आपसे पूछा था हमने एक सवाल कि कौन सी वो एक ऐसी हैबिट है जो आपने शुरू की कनाडा आने के बाद. तो एक हैबिट कुछ भी हो सकती है, आपको पहली बार स्नो जो है शवल आपने की हो, आपने यू नो स्नो में ड्राइव करना सीखा हो, आपने ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग किया हो, वर्क स्टडी हाउस चोर्स टुगेदर, क्या आपने नया किया कनाडा आकर, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें. न्यूज़ के बाद डेफिनेटली आपके कॉल्स हम लेंगे लाइव ऑन एयर. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812. वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का. फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26. 20+ साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा इडली वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर. अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे. डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर. मद्रास रेस्टोरेंट 905-789-6600. That's 905-789-6600.
2: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar. I have first-time home buyers clear an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates. Unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.

0: हम किसी का बुरा नहीं करते, यानी अपना भला नहीं करते। राजेश रेड्डी साहब के इस मानी खेस शेर के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को 8 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे। उनका विमान बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग ने उन्हें रिसीव किया। हान जेंग को शी जिनपिंग का भरोसेमंद माना जाता है और वे पिछले साल ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। ट्रंप के एयरफोर्स वन से उतरते समय करीब 300 बच्चे नीले और सफेद रंग की यूनिफॉर्म में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीन रवाना होने से पहले उन्होंने कहा, ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास हालात संभालने के लिए हर विकल्प मौजूद है। उन्होंने बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत में ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट पर भी चर्चा होगी, हालांकि व्यापार बैठक का मुख्य मुद्दा रहेगा। यूएई की सरकारी तेल कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक तेल टैंकर पर पिछले हफ्ते ईरानी ड्रोन हमला हुआ था। इसके बाद ओमान के समुद्री इलाके में जहाज से तेल लीक हो गया। कंपनी के मुताबिक टैंकर एमवी बराका से बंकर फ्यूल समुद्र में फैल गया। फिलहाल ये जहाज ओमान के तट के पास लंगर डाले हुए है। जहाज पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई, ये जानकारी भी निकल कर आई है। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: टाइम। जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: जी दोस्तों, एक ट्रेडिंग एक इस तरह की चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देती है, और ये चीज़ ऐसी है जो कई लोगों ने कई तरीक़ों से की है, लेकिन जो पाइनियर्स हैं इस फील्ड के, जो पिछले 18 सालों से हमारी कम्युनिटी में वेल एस्टैब्लिश्ड नेम है, और इनका सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है जो कभी आपको पीछे देखने नहीं देता, हमेशा आगे आगे आगे बढ़ते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इतनी प्रॉमिसिंग सॉफ्टवेयर है और हर इंसान वहाँ जाकर चाहता है अपना भाग्य आजमाना और एक स्माइल लेकर वापस आना घर। तो आइए देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी क्या आपके लिए फिट है। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रिनाउंड ट्रेडर एंड ट्रेनर फ्रॉम विन लाइफ टाइम, राफी जी। राफी जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स।
1: थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन राफी जी। तो एक सवाल हमारे लिसनर का आया है कि ये जो उथल पुथल इस वक्त मची हुई है फाइनेंशियल सेक्टर में, और आज ऐसी खबरों में भी आ रहा है कि तमाम 37,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी इंसॉल्वेंसीज फाइल की हैं इस साल, तो ये फाइनेंशियल बर्डन जो आ रहा है, जो उथल पुथल मची हुई है दुनिया भर में, तो इसका असर ट्रेडिंग पर कितना पड़ता है और ये बिजनेस कितना फ्रूटफुल है?
2: देखें, ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ है। मार्केट ऊपर जाए पैसे बनते हैं, मार्केट नीचे आए पैसे बनते हैं। आज के दौर पे जो है, आपके पास एक ऐसी स्किल जरूर होनी चाहिए जो आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के थोड़ा सा रिवार्ड डेली दे। हमारे पास कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के इस स्टेज पे आ गए हैं, जो रोज के 100, 50, 200, 300 डॉलर अब निकालने लगे हैं सिस्टम से। तो मैं एक ही तरह एग्जांपल देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा जिंदगी में 100 डॉलर निकालने के लिए, 200 डॉलर।
1: सही बात है,
2: अब ढूंढनी पड़ेगी। आसान सा काम है, 90 मिनट और सो सुबह 9 से 11 का।
1: जी राफी जी, आपकी आवाज आते आते बंद हो गई, तो 9 से 11 का वक्त आपने कहा देना चाहिए। कैन यू हियर मी? आई गेस राफी जी के साथ हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा, और हम दोबारा उनसे कनेक्ट करते हैं। तो बात हो रही थी ट्रेडिंग के बारे में, बात हो रही थी कि किस तरह से इस काम को किया जा सकता है, और जैसा हम रोज़ाना राफी जी से बातचीत करते हैं दोस्तों, इसमें कोई ना कोई जो है एक इतनी अमेजिंग चीज़ है, आपको कोई भी इसमें अपनी तरफ से मनी इन्वेस्ट नहीं करना अगर आप नहीं चाहते। देर आर फंडिंग कंपनीज हु आर गोइंग टू फंड योर ट्रेडिंग, और उस से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कोई भी पर्सन ये काम कर सकता है। आपको बस सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम को फॉलो करके यू विल बी अ परफेक्ट ट्रेडर विद इन नो टाइम। हार्ट ऑफ मिसिसागा में इनका बिल्कुल फ्री सेमिनार होता है एवरी सैटरडे 1 PM, और वो सैटरडे के सेमिनार के लिए आप आज और अभी अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं 9052061008। राफी जी, आई थिंक यू आर बैक विद अस, वेलकम।
2: जी सॉरी, मैं आई थिंक अंडरनीथ अ ब्रिज गॉट डिस्कनेक्टेड, सॉरी।
1: नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर बातचीत चालू थी, जैसा आपसे हम सुनते रहते हैं रोजाना, तो मैं वही बता रही थी लिसनर्स को कि इसमें कोई भी अपना मनी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट विद इफ यू डोंट वांट, और आपकी फंडेड कंपनीज रहती हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
2: जी एब्सोल्युटली, देखिए सबसे बड़ा रिस्क दो रिस्क होते हैं एक ट्रेडर को इस इंडस्ट्री में आते हुए, कि मेरे पैसों का नुकसान हो, वो हम एलिमिनेट कर देते हैं, आपने नहीं अपने पैसे इन्वेस्ट करने। दूसरा ये होता है, मुझे ट्रेडिंग आती नहीं है, नो प्रॉब्लम, एक्सपर्ट सुपरविजन है, 2 ऑफिसेज हैं, 6 मेंटर्स हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखा देंगे, नो प्रॉब्लम। मोस्ट पीपल इसमें क्योंकि अकेले होने की वजह से घबरा जाते हैं, हमारा प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, हॉबी के तौर पर नहीं कर रहे, बाकायदा प्रोफेशनल करते हैं। और क्यों करते आ रहे हैं, देखें इलान मस्क, इसको अगर ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ का है, किसको पैसे बनाने बुरे लगते हैं? एवरी डे हम बनाते हैं और हमें होता है और बने और बने और बने, तो दिस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस।
1: क्या बात है, वंडरफुल। तो जो फ्री सेमिनार है राफी जी, क्या आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस वीकेंड भी दोनों लोकेशंस पर?
2: हाँ जी, दोनों लोकेशंस पर, मैं खुद भी करूंगा, डैनियल भाई भी करेंगे, सो यू कैन कम टू एनी लोकेशन, लुक एट, एंड मंडे टू फ्राइडे 9 AM से आप 2 बजे तक हमारे ऑफिस पे विजिट करके इन पर्सन देख सकते हैं कि माहौल क्या चल रहा है, नो कॉस्ट।
1: वंडरफुल। और साथ ही दोस्तों आप वीकडे में भी जाकर, जैसा राफी जी कहते हैं, इफ यू आर बिजी ड्यूरिंग द वीकेंड्स यू कैन इवन गो ड्यूरिंग द वीकडेज एंड सी द फन, सी द लाइफ फ्लोर, सी हाउ पीपल आर मिंटिंग मनी एंड हाउ सैटिस्फाइड दे आर। सो कॉल एट 905-206-1008, दैट्स 905-206-1008, और विजिट द वेबसाइट winlifetime.com। थैंक यू राफी जी, आप जीतिए अपना आज का दिन और कल फिर आपसे मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू जी, टेक केयर।
1: यू आर मोस्ट वेलकम। जी दोस्तों, चलते हैं वापस इंडिया जहां से शिफाली हमारे साथ जुड़ेंगी अगला बुलेटिन लेकर। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी। गुड आफ्टरनून। शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।

वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफिला छोड़ सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। आमतौर पर पीएम के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रहती हैं। अब एक गाड़ी में पीएम जबकि दूसरी गाड़ी में एसपीजी और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहेंगे। पीएम जनता से लगातार पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या घटाने का आदेश दिया। पहले काफिले में 14 से 16 गाड़ियां रहती थी, लेकिन बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान उनके साथ सिर्फ 5 ही गाड़ियां चली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है। हिंदू बने रहने के लिए मंदिर जाना या खास पूजा पाठ जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घर में दिया जलाना भी आस्था दिखाने के लिए पर्याप्त है। ये टिप्पणी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संविधान पीठ ने की। बेंच धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव, सबरीमला मंदिर और दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े धार्मिक स्वतंत्रता मामलों पर सुनवाई कर रही है। बुधवार को सुनवाई का 15वां दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और विदेश यात्राओं से बचने की अपील गुजरात में दिखाई देने लगी है। पीएम की अपील का असर जानने मीडिया ने जब ट्रेवल एजेंसियों से बात की तो पता चला कि राज्य में इंटरनेशनल ट्रिप में 30% कमी आ गई है और अब लोग वैकेशन के लिए देश के अंदर ही पर्यटन स्थलों की ओर रुख करने लगे हैं। सूरत के ट्रेवल एजेंट ने बताया कि पीएम के बयान के तुरंत बाद से ही गुजरात में ये असर दिखना शुरू हो गया है और अब तो अंतिम चरण में पहुंच चुकी बुकिंग भी रद्द होनी शुरू हो गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल, 60 दिन की एलएनजी और 45 दिन की एलपीजी का स्टॉक है। सप्लाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। हरदीप पुरी ने दिल्ली में आयोजित सीआईआई के एनुअल बिजनेस समिट में पीएम की बचत की अपील का भी जिक्र किया। पुरी ने कहा, पीएम ने 2 दिन पहले जो बातें कही हैं उसको लेकर अफरा तफरी मचाना बेकार है। पीएम की बातों को ध्यान से सुने, उसका मनगढ़ंत मतलब ना निकालें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ को जान से मारने की धमकी आई है। उन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी एक ईमेल से आई जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गईं। ईमेल में भगवंत मान और सुनील जाखड़ को सिखों का दुश्मन बताया गया। साथ ही कहा गया कि सीएम ऑफिस को दोपहर 1:11 पर धमाके होंगे। पंजाब और दिल्ली में भाजपा के ऑफिस में 9:11 पर धमाके होंगे, ऐसा ईमेल में कहा गया। पंजाब सरकार और प्रशासन को भेजे गए ईमेल में लिखा है, पंजाब सीएम ऑफिस और बीजेपी ऑफिस में बम धमाके होंगे। पंजाब अब खालिस्तान बनेगा। भगवंत मान और सुनील जाखड़ दोनों को ठोकेंगे। इससे पहले भी सीएम भगवंत मान को धमकी दी गई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद थलापति विजय ने रूमर्ड गर्लफ्रेंड त्रिशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया। विजय ने त्रिशा कृष्णन की फिल्म करप्पू के लिए सुबह 9 बजे की स्क्रीनिंग रखने की स्पेशल परमिशन दी, जबकि अब तक साउथ

0: रिलीज हो रही है। पहले दिन से ही इसके सुबह 9 बजे के शो शुरू हो जाएंगे। फिल्म में त्रिशा कृष्णा और सूर्या लीड रोल में हैं। दुनिया भर का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल और कल्चरल इवेंट कांस शुरू हो चुका है। फेस्टिवल 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में जारी रहेगा। लॉरियल पेरिस की तरफ से कांस पहुंची आलिया भट्ट के अब तक 3 लुक सामने आ चुके हैं। तीसरे लुक में आलिया डिजाइनर तरुण तहलियानी की आइवरी साड़ी में दिखाई दी। वे फ्रेंच रिवेरा में भारत पेविलियन पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म मेकर आशुतोष गोवरीकर के साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पोस्टर और क्रिएटिव विजन लॉन्च किया। आलिया भट्ट और उर्वशी रौतेला के अलावा इस साल भारत से ऐश्वर्या राय, मौनी राय, अदिति राव हैदरी और एहसास चन्ना कांस के रेड कार्पेट पे पहुंचेंगी। एक्ट्रेस तारा सुतारिया भी कांस रेड कार्पेट पर डेब्यू करने वाली हैं। आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस की तरफ से कांस में आई हैं, तभी से कयास लग रहे थे कि उन्होंने ऐश्वर्या राय को रिप्लेस किया है। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
1: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते ओना दी टोयोटा दा होवेगा द ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देण के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो, क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812। वेलकम बैक दोस्तों, इट्स 3:22 राइट नाउ। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात की, मुझे ये बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने कनाडा में आकर कुछ नहीं नया नहीं सीखा, आप वहीं से सीख के आए थे, इसीलिए आपने मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जो आपने कनाडा में आकर पहली बार की होगी। तो ये मेरा आपसे सवाल था कि कनाडा में आकर कौन सी एक चीज़ है, नई चीज़ जो आपने की है, जो आपने कभी बैक होम नहीं की। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू। तो आप अपने सवालों के जवाब मुझे दे सकते हैं, और अदरवाइज मुझे लगेगा कि आपने कनाडा में आकर कुछ भी नहीं नया नहीं सीखा है। वेल, स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और अभी हम बात कर रहे थे 3-day वर्कशॉप के बारे में, जो योगा की वर्कशॉप होने जा रही है दोस्तों, और इसके लिए आपने नंबर मांगा। मैं फिर से आपको दे दूं नंबर 416-571-2598। बिल्कुल फ्री योगा का कैंप है फॉर 3 days, दिस फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री कैंप है। तो 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं, जो भी जाना चाहे। 416-571-2598 and 416-844-1535, that's 416-844-1535। और आपको बताते रहते हैं रोजाना हम, कई बार देओल ट्रैवल की डील्स हमारे साथ जो है, देओल ट्रैवल के साथ हम कनेक्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, और लेटेस्ट डील्स आप तक हम पहुंचाते हैं। और नवजोत इज जॉइनिंग अस नाउ। नवजोत, वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी।
1: थैंक यू सो मच शालिनी
0: जी। बताइए नवजोत, क्या लेटेस्ट डील्स हैं आज की?
1: तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए टोरंटो से दिल्ली और बॉम्बे तक का, अगर आप जाना चाहते हो मई के मंथ में, तो आपको ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है $820 में। एंड हम लेके आए हैं टोरंटो से अमृतसर के लिए भी, जो आपको दो बैग्स के साथ मिल रहा है $960 में। और राउंड ट्रिप्स हम लेके आए हैं दिल्ली से टोरंटो, जो मिड जून में जाके आप मिड अगस्त तक वापस आते हो, ये राउंड ट्रिप आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1490 में। इसमें हमारे पास अभी लिमिटेड सीट्स हैं, इसी को अभी ग्रैब करने के लिए कॉल करें। एक और ऑप्शन हमारे पास जो है टोरंटो से अमृतसर एंड दिल्ली, सेप्टेम्बर के मंथ में जाके अक्टूबर में अगर वापसी करते हो, तो आपको ये ऑफर मिल रहा है 1540 में, और वो भी दो बैग्स के साथ।
0: वंडरफुल,
1: थैंक यू।
0: कहाँ पे जी? तो नवजोत जी, कौन से नंबर्स पे बात कर सकते हैं और ये डील ले सकते हैं, और कब तक ये वैलिड है डील्स?
1: ये डील्स को ग्रैब करने के लिए आप अभी कांटेक्ट करें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं। हम अपने दो लोकेशंस पे सर्व करते हैं ये डील्स, और उनके लिए कांटेक्ट नंबर है 905-588-5100, 905-588-4200,
0: 905-588-5100 and 905-588-4200. Thank you so much हमसे जुड़ने के लिए नवजोत, फिर आपसे बातचीत करेंगे। All the best, take care.
1: Thank you, take care.
0: जी, और दोस्तों वेलकम बैक, आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ CMRFM 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी के साथ। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812। और आज का जो क्विज है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं मद्रास रेस्टोरेंट, जहां पर अनलिमिटेड मजेदार थाली खा सकते हैं फ्राइडे सैटरडे और संडे। और ये इतनी मजेदार थाली है जिसमें 20 से ज्यादा साउथ इंडियन डेलिकेसीज हैं, गर्मा गर्म अनलिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वेराइटी, और प्राइस आपकी पॉकेट को सूट करती है। 2026 में यानी 2026 ईयर को सेलिब्रेट किया जा रहा है $20.26 के साथ। और पर थाली 905-789-6600 है नंबर, 905-789-6600। मद्रास रेस्टोरेंट, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। फाइनली आई गेट टू हियर फ्रॉम समबडी कि उन्होंने कनाडा में आकर कुछ नया सीखा है। लेट्स हियर इट। गुड आफ्टरनून, कौन बात कर रहे हैं?
2: गुड आफ्टरनून, मैं राज बोल रहा हूँ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक राज जी, आप कैसे हैं?
2: सवाल पूछा कि हमने यहाँ पे आके क्या सीखा। दो चीज को जो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मेरे को तकरीबन 36 साल हो गया यहाँ पे आया हूँ, एक तो लेडीज को फर्स्ट किया, हम बैक होम में लेडीज के आगे जाती थी, अब हम लेडीज के पीछे जाते हैं, सबसे पहले उन लोगों को आगे करते हैं दरवाजा खोलने के लिए। और दूसरा बात यह है कि جس دور میں ہم اگریم ہوتے جو ہمارا بندش ہوتا ہے اس کے لیے ہم دور ہولڈ کرتے ہیں, دور نہیں چھوڑ دیتے. یہ جو چیز ہم نے سکھایا ہوتا
0: کیا بات ہے. تو کیا آپ خوش ہیں یہ چیزیں کر کے یہاں پر آ کر؟ آئی یو ہیپی کہ یہ اچھی عادتیں سیکھی ہیں آپ نے؟
2: جی اچھی معنی سے اپنا خواتین کو اپنی لیڈیز کو عزت دینا اچھی بات ہے.
0: کیا بات ہے, امیزنگ امیزنگ, آئی لو اٹ. اور بہت انٹرسٹنگ آپ نے ایک دم پن پوائنٹ کر دیا یہاں پر. پتا ہے ایک میرے جاننے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ بیوی میں اور ان کے ہسبینڈ میں یہاں پر آ کر اسی بات پہ لڑائی ہو گئی کہ ہسبینڈ آگے چلنے کی عادت تھی ان کو, تو بیوی پیچھے رہ جاتی تھی اور انہیں ریئلائز ہوا کینیڈا آ کر کہ یہ کتنا غلط تھا جو وہ وہاں پر کرتے تھے. He had to change his habits. They started getting into arguments because she realized ki bhai this is not the right thing to do.
2: Aane hamesha hum khawateen ko impress karte the, aage jaane nahi dete the. Abhi to jaise mera bhi aata hai main usko darwaza kholta hu, phir jaate band karte, kyunki humne samajh ko dekha sikha. Isliye aapka aisa kab nahi hota hai, apne life partner ko aap izzat dete hain, usme pyar bhar jata hai.
0: How sweet. Very nice. Very nice. Raji, thank you so much for joining us and sharing this wonderful thought.
2: Thank you so much. Thank you.
0: All right. Ji, take care. All the best. اور جی اور ویل دوستوں, تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کون سی ایک ایسی عادت آپ مجھے بتانا چاہیں گے جو آپ نے کینیڈا آ کر سیکھی جو انڈیا میں نہیں آپ کرتے تھے. تو لیٹس ہیئر اٹ فرام یو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کون سی ایسی عادت آپ نے سیکھی ہے ہمیں بتانا چاہیں, دین ڈیفینیٹلی یو کین گیو اس اے کال آن 416-593-0055. دیٹس 416-593-0055. ایک پرانے دور کی طرف چلیں گے دوستوں. ایک بہت ہی پیارا سا گانا ہے جس کی ریکویسٹ آئی ہے, اور یہ جو گانا ہے یہ مجھے بھی بہت پسند ہے. اس میں بہت سارا لو ہے, بہت سارا افیکشن ہے, اور گانا کچھ الگ قسم کا ہے. حالانکہ یہ گانا اس وقت کا نہیں ہے, یہ گانا ہے رات کا, لیکن یہ گانا اتنا پیارا ہے, اس میں اتنا پیار ہے, بس دیکھتے ہی بنتا ہے, سنتے ہی بنتا ہے. تو یہ چند لائنیں میری طرف سے, اور اس کے بعد یہ جو اوریجنل ٹریک ہے وہ ہم آپ کی نظر کریں گے. اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. گڈ آفٹر نون, گو ہیڈ پلیز.
3: ہیلو, گڈ آفٹر نون.
0: ہاں جی, کون بات کر رہے ہیں؟
3: میں ساگر بات کر رہا ہوں.
0: ساگر جی, جی ساگر جی بتائیے.
3: دیکھیے سب سے پہلے تو ہم لوگ جہاں سے آئے نا وہاں سے پھر چلے گئے دبئی وغیرہ, وہاں رہے پھر یہاں پر آئے, تو بہت چیزیں سیکھی. ایک چیز آ کے میں نے دیکھی کہ یہاں پر آ کے آپ کو آ کے ویدر چیک کرنا پڑتا ہے.
0: جی جی.
3: اور دوسرا یہ تھا کہ بھائی فیول پرائسز ہر جگہ الگ ہوتے ہیں, وہاں پر بھی چیک کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور تیسری بات یہ دیکھیے کہ آپ کو اپنا پیپر ورک کے اندر بہت بہت زیادہ ٹیکس ریٹرنز یہ وہ جو ہم لوگ بالکل عادی نہیں تھے, وہ چیزیں ہم نے سیکھ لی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ گھر کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی رانی کی, آپ کی بیگم کی, یا ماں ہوں یا جو بھی ہوں, لیکن ان کے رائٹس آپ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں, آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ بھی آ کے یہاں پر سیکھا ہے. ورنہ اس کے جو نتیجے ہیں وہ بہت غلط ہو سکتے ہیں آپ کے لیے زندگی میں. تو کنٹرول سیکھا ہے جی یہاں کے.
0: کیا بات ہے, امیزنگ امیزنگ. ویسے بات تو وہاں بھی منوا لی جاتی تھی, یہ الگ بات تھی کہ ہاتھ میں بیلن ہوتا تھا تو اس کے ساتھ منوا وہاں بھی لیا جاتا تھا, لیکن یہاں پر تو گورنمنٹ کی طرف سے رائٹ ہے لائک یو سیڈ. تو ویری انٹرسٹنگ.
3: لیکن ایک بات ایک بتائیے گا مجھے کہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی ہے وہ پاورفل ہے, لیکن ہر گھر کے اندر عورت کی حکومت ہوتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے
0: بھائی؟ کیونکہ عورت جو ہوتی ہے شاید وہ دل سے راج کرتی ہے گھر کے اوپر, اور یہ بڑی پیار سے دی بھی جاتی ہے ان کو یہ رائٹس یہاں پر, یا مطلب دینی بھی چاہیے اور دی بھی جاتی ہے, اور وہ بہت پیار سے ایکسپٹ بھی کر لیتی ہیں.
3: بالکل بالکل, I really accept that thing. لیکن جب گھر میں چوہا اور کاکروچ آ جاتے ہیں پھر مرد کو کیوں بلایا جاتا ہے؟
0: دیکھیے اپنا اپنا جانر ہے نا, جب چوہے کاکروچ
3: چور آ گیا ہے, بھوت آ گیا ہے, آپ جاؤ بیٹھ لے کے, آپ جاؤ جا کے ये भी तो औरत के उसमें ना, वो भी जा सकती है कभी लड़ने के लिए हमारे लिए।
0: देखिए ऐसा है कि ड्यूटीज तो बराबर बराबर बांटी जाती है ना, तो जब चूहे कॉकरोच आते हैं तो उसमें किसी और का आगे आना लाजमी है, और कई चीजों में विमेन का आगे आना अच्छा लगता है। ऐसी होते कहते हैं ना कि जिंदगी के दो पहिए हैं, मर्द और औरत, तो दोनों साथ मिलकर चलाते हैं गाड़ी। तो एज लॉन्ग एज वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग, ऑल गुड।
3: लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको मैडम, अगर ये औरतें ना होती तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बंजर होती।
0: देखिए क्या बात है, अमेजिंग।
3: माँ ना होती तो हमारी परवरिश नहीं होती, बीवी नहीं होती तो खाना नहीं मिलता। यानी कि बहनों का प्यार, बेटियों का प्यार, ये ऐसा है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन, अगर ये लोग नहीं होती जिंदगी में तो हमारी क्या हालत होती।
0: बिल्कुल सही बात है। और या मेन एंड वुमेन दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हमें डैड्स की जरूरत होती है, ब्रदर्स की जरूरत होती है, हस्बैंड्स की होती है, बेटे की होती है, वहीं पर उतनी ही ज्यादा जरूरत हमें माओं की होती है, बहनों की होती है, बीवियों की होती है, डॉटर्स की होती है। तो सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और भगवान ने लाइफ बड़ी बैलेंस करी हुई है, तो अपने आप ही इम्पोर्टेंस दे दी जाती है और ले ली भी जाती है, और ऐसा ही होना चाहिए, तभी जिंदगी वेल बैलेंस चलती है। But thank you so much for your call.
3: Thank you so much, ma'am. Take care. God bless you.
0: Appreciate you. Okay. Take care. All the best. Well, हमारे साथ कुछ और कॉलर्स जुड़े हैं, आइए
4: we'll move on to the next caller now. Good afternoon.
0: Who's this? हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
4: अभिषेक बोलो मैडम, कैसे हैं आप?
0: जी अभिषेक जी, बिल्कुल ठीक। How are you?
4: बस बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया टॉपिक लिया आपने आज, कि हमने क्या सीखा यहाँ पे आके। ठीक है, सीखने को बहुत कुछ सीखा आपने। जैसे छोटी छोटी बातें, सबसे इन द स्टार्टिंग आपने बताई कि हमने यहाँ पे थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना सीखा, किसी की बात को नहीं टोकना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सीखी। यहाँ सीखा हमने कि कोई किसी का नहीं है, फैमिली इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सभी को पीछे रखो, अपनी फैमिली को आगे रखो, और इन द एंड आपको अकेले ही सारी चीजें सफर करनी पड़ेंगी। दोस्त बोलने को बहुत मिलेंगे, साथी यहाँ पे बहुत मिलेंगे, लेकिन इन दी एंड जो कुछ होगा वो आपको खुद सफर करना पड़ेगा। एक सफर वाला सफर है और दूसरा सफर करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ये गांठ बांधनी पड़ेंगी। ये अच्छी भी समझ लें कि बुरी भी समझ लें, जितनी जल्दी हम इसके लिए तैयार हो जाएं वो ही सबसे बड़ी बात है। और फैमिली मस्ट है, फैमिली मस्ट है। अपने बच्चों को प्यार दें, जितना हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और अच्छी चीजें यही है कि यहाँ पे आप फैमिली के साथ आप काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इंडिया में घरों में ज्वाइंट फैमिली होती है, फैमिली में नोकझोंक होती है, यहाँ यह कि अकेले है, नोकझोंक होगी जो आप ही के साथ होगी।
0: सॉर्ट आउट हो जाएगी।
4: सिखाती है, हाँ जी, यही चीजें सिखाती हैं और यही चीजें, हाँ जी।
0: क्या बात है, वंडरफुल अभिषेक, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू जी। और अभी बात हो रही थी चूहे और खटमल की, और यहाँ पर मैं आपको जरूर बता दूं, किसी भी तरह की पेस्ट या वाइल्ड लाइफ से आप परेशान हैं तो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल इंक आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल पेस्ट कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ रिमूवल, एक्सक्लूजन, इको फ्रेंडली और सेफ ट्रीटमेंट्स हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है। अपने घर और बिजनेस को सेफ और पेस्ट फ्री रख सकते हैं। अयान काशिफ जी से आज ही बात कर लें, 6479664355 6479664355। और यश विंडोज एंड डोर्स का नाम मैं फिर से बता दूं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स, वो भी सबसे रीजनेबल प्राइस में, और सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो। खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और इनकी जो एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम है प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है, यानी कोई मिडलमैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। स्टाइल, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ साथ साथ, और प्राइस ऐसी जो पॉकेट को सूट करें। फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद अ फास्ट ग्रोइंग टीम, आप धर्म जी से आज बात कर लें, यश विंडोज एंड डोर्स में, 416-732-3600, that's 416-732-3600। और आज का सवाल मेरा वहीं पर है, वो ही है कि कनाडा में आकर कौन सी एक नई आपने आदत सीखी है, उस बारे में आप जरूर हमसे बात कर सकते हैं, 416-593-0055। चलते हैं अगले गाने की तरफ, और ये गाना हमने लिया है फिल्म कोहरा से, पुराने दौर का गाना है। चंद लाइनें मेरी तरफ से अर्ज करती हूँ,

0: किसी को खबर।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
2: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
3: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
4: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦਾ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
5: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
6: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
5: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर वीजा इज डिक्लाइंड।
6: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
7: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से 437-829-6023। इट्स 437-829-6023, मास्टर धनिक महाराज।
8: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
9: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
8: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
9: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन।
8: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
10: वेलकम बैक दोस्तों, आपका शालिनी स्वागत करती है CMR FM 101.3 पर वन अगेन, एंड इट्स 3:45 राइट नाउ। और आपका साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कनाडा में आकर कौन सी नई आदतें आपने सीखी हैं? मैंने आपसे ये पूछा था, क्या आपको टिम हॉर्टन्स का कॉफी एडिक्शन हुआ है? पहली बार स्नो शवल करनी आपने सीखी? लेट्स हियर इट। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं और क्या कहना है उनका। वेलकम, हेलो जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आई होप यू आर एबल टू हियर मी। वेलकम बैक, चलिए आप दोबारा ट्राई कीजिएगा 416-593-0055 और जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसा लगता है जब आप यहाँ पर आते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं फैमिली के साथ। कई लोग नई फैमिलीज बनाते हैं यहाँ पर आकर। और मेरे पास प्रभु जी आपका मैसेज है। व्हाट अ वंडरफुल नेम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु। प्रभु जी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ पर आकर ना हम लिटरली पॉकेट्स में जीना सीखते हैं। बैक होम हमें उस चीज़ की इतनी कदर नहीं होती। जैसे समर है तो बस समय ही लंबे चले जा रहे हैं क्योंकि मौसम जनरली गर्म होता है इंडिया में, पाकिस्तान में। बैक होम यहाँ पर क्या है, 2 महीने के समर में भी हम इतना काम कर लेते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, जहाँ पे वहाँ पर 8-10 महीनों में मिलकर नहीं कर सकते। फिर स्नो आती है तो फिर हमारे स्नो के हवाले से सारी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं। फिर बरसात आती है तो बरसात के हवाले से, स्प्रिंग के हवाले से एक्टिविटीज़ आती हैं। तो पॉकेट्स में हमारी ज़िंदगी ना डिवाइड हो जाती है। तो दैट इज़ सच अ वंडरफुल थॉट, कि हमें पता है कि हमारे पास बस इतना ही वक्त है और इतने वक्त में हमें इंजॉय करना है। और कैसे अपनी लॉन्ग वीकेंड्स लोग पहले से प्लान कर लेते हैं और पहले से बच्चों के साथ जाना होता है, प्री प्लानिंग करनी एंड ऑल दोस थिंग्स वी लर्न आफ्टर कमिंग हियर। आई गेस वी हैव अ कॉलर नाउ, लेट्स सी उनका क्या कहना है। वेलकम बैक, लास्ट फोर डिजिट्स 0099, आप ऑन एयर हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं जी। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं 416-593-0055 पर। और यहाँ पर एक बार फिर से हम देओल ट्रैवल की जो आज की डील्स हैं वो अनाउंस कर देते हैं। दोस्तों, आप दुनिया भर में कहीं भी जाना चाहते हैं, देओल ट्रैवल से एक बार बात कर लें, बैक होम जाना चाहते हैं या वेकेशंस अपनी बुक करना चाहते हैं, तो टोरंटो से दिल्ली या मुंबई मई के महीने में वन वे जा सकते हैं $820 में, टोरंटो से अमृतसर वन वे इस महीने में 960 में, दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा है 1490, लिमिटेड सीट्स हैं, टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली सितंबर टू अक्टूबर राउंड ट्रिप है $1540 दो बैग्स के साथ, लिमिटेड टाइम ऑफर है। और आप कॉल कर सकते हैं एटोबिको एंड ब्रैम्पटन, टू लोकेशन टू सर्व यू, देओल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। गुड आफ्टरनून, हु इज दिस?
11: गुड आफ्टरनून, माय नेम इज रजा।
10: रजा जी बताइए, रजा जी क्या कहना चाहेंगे?
11: असल में बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ पे हम दो महीने या तीन महीने में जो एंजॉयमेंट कर लेते हैं वो जाहिर है बैक होम में नहीं कर पाते और इतना समय नहीं होता, लेकिन एक बैक होम की एक याद जो है ना, वहाँ की जो आजादी और जिस तरह का एक वो कल्चर वहाँ का, वो हमें यहाँ नहीं मिल पाता।
10: सही बात,
11: मतलब यहाँ पर ये होता है सिर्फ कि आप आए जॉब करें और पैसे लें और घर चले जाएं, फिर ग्रोसरी करें सैटरडे संडे को और वो सारे पैसे आप वहाँ देकर आ जाए, पर हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं। अच्छा, मॉर्गेज हमें यहाँ पर एक ऐसा सिसरा कर देती है कि वो हमें इस चीज के पर मजबूर कर देती है कि हमारे पास टाइम ना हो। बैक होम के अंदर आपने देखा होगा सबके पास अपने
10: बहुत वक्त होता था, दैट्स राइट,
11: पेड़ घर होते हैं अपने, किसी वक्त भी आप चाहते हैं बताते हैं मैं आ रहा हूँ आ जाए, यहाँ तो कहते हैं मैं भी सुबह जॉब पर जाना है मुझे, कल मुझे यहाँ जाना है, तो वो एक टाइम जो है ना उसका, वो अपने टाइम फ्रेम उसने बनाया हुआ है स्केड्यूल, बस उसके ऊपर वो जी रहा होता है। थोड़ी सी कहते ना कि पाकिस्तान में आजादी होती है या इंडिया के अंदर, आज मैं 11 बजे शाम को 12 बजे बैठ रहे हैं, 2 बजे बैठ रहे हैं, 1 बजे, मतलब वो टायर्डनेस महसूस नहीं होती, जॉब पे चले जाते हैं सुबह उठ के हमको, हमें कितना महसूस।
10: अच्छा, और पता है वहाँ खाना भी कितना खा लेते हैं ना, यहाँ पर खाना थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो हैवी हो जाता है।
11: ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ जरा सा खाना खाया आपने इतना हैवी हो जाता है, और वहाँ आप एक बस जा रहे हैं मतलब चार चार घरों में जाते हैं आप और चार चार घरों में हर जगह ही आपको खाना पीना मिलता है, रिफ्रेशमेंट मिलता है, जो कुछ भी मिलता है, मगर इतना खाते हैं आप और सब कुछ हजम भी हो जाता है सारा कुछ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती आपको। यहाँ थोड़ा सा आपको जरा सा इसमें आराम है ये महसूस है, बाकी ये कि यहाँ की जो एक खूबसूरती है जिससे हम कहेंगे, क्योंकि हम बार बार चीजों को वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि यार वहाँ हमें ये था ये यहाँ पर ये नहीं, तो यहाँ हमें एक दूसरी चीज मिलती है कि यहाँ हमें चोरी डकैती नहीं मिलती, यहाँ पर हमें किसी किस्म की गंदगी नहीं मिलती, यहाँ पर हमें पानी साफ मिलता है, यहाँ एटमोसफियर हमें अच्छा मिलता है, यहाँ रूल रेगुलेशन चल रहे होते हैं, ये चीज देखकर तो हमें थोड़ा सा ये महसूस होता है कि हमारी जिंदगी सेफ है और हम ड्राइविंग भी बहुत एहतियात से कर रहे होते हैं सारी चीजें को, वहां पर इस मामले में इतना ज्यादा नहीं हो पाता ना, तो ये चीजें यहाँ की खूबसूरती है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे रहना पसंद करते हैं कि यार हम वहाँ जाएंगे बिजली नहीं होगी, बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं तो पानी नहीं है, गड़र उबल रहा है, पानी बाहर बह रहा है, गंदगी मौजूद है, तो मतलब ये सारी चीजें देख के फिर हम थोड़ा सा फिर सोचते हैं चले कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी अच्छाई का, अपने आप को सही रखने के लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए, तालीम का एजुकेशन के मामले में आप देख रहे हैं सारी चीजें गवर्नमेंट कर रही होती है यहाँ पर, ये हेल्थ का मामला देख रहे हैं आप इसके अंदर,
10: सही बात है बिल्कुल रजा जी, बहुत अच्छी बात आपने की है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, ट्रूली अप्रिशिएट, ओके टेक केयर,
11: थैंक यू
10: जी। दोस्तों, बहुत मज़ा आया आप लोगों से बात करके और बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर कि यू नो हम आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, रोज़ाना ये सफ़र में आप हमारे हम सफ़र रहते हैं, और जितने भी बिजनेस ओनर्स इस वक्त हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं, इफ़ यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन आवर शो, अगर आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर प्रमोट किया जाए, डू गिव अस अ कॉल आफ्टर द शो एट दिस नंबर 416-569-7812 और चलते हैं आज के बहुत ही खूबसूरत से अगले गाने की तरफ। कहते हैं कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी अधूरे रह जाते हैं, कुछ लोग दिल में रहकर भी कभी हमारे नहीं हो पाते, और जब मोहब्बत विदा लेती है तो चन्ना मेरिया जैसे गीत बन जाते हैं। और ये बड़ा टाइमलेस इमोशनल मास्टरपीस है चन्ना मेरिया। फिल्म का नाम है ए दिल है मुश्किल। आपकी नजर मस्ती की रेलगाड़ी पर।

sponsors for fast, effective and result-oriented ride. Get on board Sean Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812, or email info@seanmedia.com, seanmedia.com. Welcome to Madras Restaurant. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा इडली वड़ा स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर अनलिमिटेड सर्विंग्स अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास बिरयानी एंड लॉट मोर मद्रास Restaurant 905-789-6600. That's 905-789-6600.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम
1: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first-time home buyers ke liye an amazing opportunity. Freehold townhomes from $499,000 and detached homes from $605,000. First-time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first-time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
2: Aap sun rahe hain Sean Express on CMR FM 101.3. Sean Express, music jo kare aapko impress.
3: चलिए दोस्तों, और अब अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में भी हमारा साथ देने के लिए, और आप हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए। और आज के विनर हैं सागर जी विद द लास्ट 4 डिजिट्स 8514। आप विनर हैं और आपने जीती है मद्रास रेस्टोरेंट की तरफ से अनलिमिटेड थाली। इंजॉय करें थाली अपने अपनों के साथ। और अब इसी के साथ शालिनी इजाज़त मांगती है, कल होगी 2 से 4 फिर आपकी हमसे मुलाकात मस्ती की रेलगाड़ी पर। शो के बाद फॉर ऑल योर बिजनेस प्रमोशन हमारा डायरेक्ट नंबर है टू बुक योर एड स्पॉट्स 416-569-7812, 416-569-7812। कल तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Tours around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM। ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे और लॉग ऑन टू CMR.FM।
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्रों भाइयों, यूट्यूब वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। मित्रों भाइयों, टोरंटो का ट्रैफिक और गैस का ये भाव, टोरंटो का ट्रैफिक और गैस का ये भाव, जीभ हो रही है खाली, बढ़ रहा है घाव। अब अकेले गाड़ी चलाकर क्यों बनते हो कूल, अब अकेले गाड़ी चलाकर क्यों बनते हो कूल, पैसा बचाओ मेरे भाई, अब शुरू करो कारपूल। हाँ जी मित्र भाइयों, हो सके तो कारपूल करके गैस के पैसे बचाएं, क्योंकि जो कमाया वो अपना नहीं, जो बचत की वो ही अपना है, है ना मित्र भाइयों। बस आप गैस प्राइस के घाव सह सको, ऐसी हम दिल से दुआ करते हैं। ये हिडो वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू स्वीट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई और ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस।
4: डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, फैमिली डेंटिस्ट, केयरिंग फॉर ऑल योर डेंटल नीड्स, एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट्स जिनके पास CDCP यानी कि कैनेडियन डेंटल केयर प्लान है। अगर आपने ये प्लान रिसीव नहीं किया है और आप एलिजिबल है, तो इस प्लान में एनरोल होने के लिए विजिट करें CDCP वेबसाइट। CDCP की वेबसाइट विजिट करके एनरोल हो जाइए और कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स का। बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 905-564-2021। डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट।
5: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
8: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम,
9: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232।
10: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
11: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
4: हाँ जी मित्र भाइयों, रेडियो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। कनाडा के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक टोरंटो का डाउनटाउन कोर कल दोपहर गोलियों की गूंज और दहशत के साए में रहा। लुटेरों ने एक प्रसिद्ध ज्वेलरी स्टोर को निशाना बनाया और लाखों के जेवरात लेकर फरार हो गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना कल दोपहर करीब 2 बजे की है। 3 से 4 नकाबपोश हमलावर, जो हथियारों से लैस थे, दुकान में शामिल हुए। उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ को बंदूकों की नोक पर ले लिया। महज कुछ ही मिनटों में लुटेरों ने कांच के डिस्प्ले, जो कैश थे वो तोड़ दिए। लगभग $5,00,000 मूल्य के हीरे और सोने के आभूषण लूट लिए। प्रत्यक्ष दर्शियों का कहना है कि हमलावर एक काले रंग की एसयूवी में सवार होकर तेजी से फरार हो गए। टोरंटो पुलिस सर्विस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। सार्जेंट जेम्स टेलर ने बताया कि हालांकि इस हमले में कोई शारीरिक रूप से घायल नहीं हुआ है, लेकिन दुकान के कर्मचारी गहरे सदमे में है। पुलिस अब दुकान के भीतर लगे सीसीटीवी कैमरों और सड़क पर मौजूद ट्रैफिक कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा और डर है, क्योंकि ये इलाका हमेशा पर्यटकों और स्थानीय लोगों से भरा रहता है। टोरंटो में बढ़ती गन वायलेंस और ऐसी डकैतियों ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का काम है या स्थानीय अपराधियों का, इसकी जांच जारी है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी के पास भी इस घटना से संबंधित कोई जानकारी या डिश कैम फुटेज है तो तुरंत क्राइम स्टॉपर से संपर्क करे। हाँ जी विंद्र भाइयों, टोरंटो के दिल में दिन दहाड़े बड़ी डकैती, डाउनटाउन टोरंटो में हुई ये घटना। ये वॉइस हम में आपके दोस्त जतीन, डिटेल जानकारी weeklyvoice.com पर।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman, sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3 डिनर 5 to 10 वेडनेसडे को बंद मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं कॉल करें 9057952299 या विजिट करें गुरु लक्ष्मी.com गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का

0: पी के सबरवाल के साथ आज होगी चर्चा। बिंदर भाई हर वेनसडे 4:25 पर होती है चर्चा, लेकिन आज चर्चा शुरू होगी 4:30 को। 5 मिनट का और इंतजार, लेकिन पी के जी जुड़ेंगे हमारे साथ। पी के सबरवाल जी के साथ चर्चा आज होगी 4:30 पर। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
1: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545। संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
5: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
6: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
7: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस, कॉल करें 416-660-8545।
0: बिंदर भाइयों जो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बिंदर भाइयों खबर आ रही है कि टोरंटो में कल गैस प्राइस 4 सेंट्स ऊपर की ओर जाएगी। हाँ जी, कल तो 4 सेंट्स तक जाएगी, लेकिन कहा जाता है कि टोरंटो में गैस की कीमतें अब रॉकेट बनने वाली है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, मतलब अब पेट्रोल पंप पर जाना किसी हॉरर फिल्म देखने से कम नहीं होगा। मीटर की सुई इतनी तेज भागेगी कि आपको लगेगा पेट्रोल नहीं, आपकी धड़कनें चल रही है। हाँ जी बिंदर भाइयों, कहा जाता है कि बहुत ही जल्द गैस प्राइस $2 को छू जाएगी। बिंदर भाइयों पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस घर के बाहर पार्क करके गाड़ी को गैराज में रख के चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, या फिर साइकिल लेके जाना, साइकिल लेके जाना, या फिर कार पूल करना। बिंदर भाइयों तेल देखो या तेल की धार देखो, ऐसा कहा जाता था। अब तेल की धार नहीं, तेल की बूंदे ही दिखाई देगी $1.5 या $2 में। बिंदर भाइयों घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हाँ जी आने वाले दिनों में गैस प्राइस ऊपर की ओर जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। ये हिट वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
8: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा। मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10। वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं। कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com। गुरु लक्ष्मी साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का।
9: रेड्स फर्नीचर का ये मैसेज जरा ध्यान ना सुनो।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman, sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
3: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दाँत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009.
3: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 289-401-0009.
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना इस च साथ देण के चिप्स चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा ऑयल चेंजेस ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक ईजी स्टॉप अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होण वाला है तूफानी
5: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस कॉल करें 416-660-8545

0: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस एफएम 101.3 और मैं हूं अमिताभ। इट्स वेंसडे और वक्त हो चला है उनसे मिलने का जिन्हें आप और हम सालों से रियल एस्टेट की ट्रस्टेड अथॉरिटी मानते आए हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के असली धुरंधर की, श्री पी के सबरवाल। प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज हो या रेसिडेंशियल होम्स, पी के सबरवाल जी का बस नाम ही काफी है। विद डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड विनर ऑफ टॉप रियल एस्टेट अवार्ड्स, पी के इज नॉट जस्ट अ रियल एस्टेट ब्रोकर, ये है रियल एस्टेट की एक भरोसेमंद इंस्टीट्यूशन। PK is with us every Wednesday from 4:25 to 4:50 p.m. to navigate you through the shifting tides and opportunities in the Canadian and international real estate markets. तो अगर आपका भी real estate से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप PK से directly पूछ सकते हैं by calling our studios on 416-593-0055. That's 593-0055. सबरवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज हमारे श्रोताओं को अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाने दें और हम सभी को इस हफ्ते की रियल एस्टेट की कुछ खास अपडेट्स दें।
2: थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अवर लिसनर्स। अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। मेरे ख्याल से कॉन्डो टोरंटो कॉन्डो सेल जंप हुई है अप्रैल के महीने में। ट्रेप की रिपोर्ट जो भी आई है उसके हिसाब से कहा 300-250 यूनिट बिक रहे थे महीने के, अभी अप्रैल धीरे धीरे बढ़ रहे थे कुछ महीनों से, ऐसी बात नहीं है, शेयर बढ़ रही थी, लेकिन अप्रैल के महीने के अंदर 1553 कॉन्डोमिनियम्स जो है वो ग्रेटर टोरंटो एरिया में सेल हुए हैं, जिसके अंदर ओनली टोरंटो के अंदर 68% ट्रांजेक्शन हुई है, विच इज 1052 सेल्स। और ये जो है एवरेज प्राइस इसका 665,000 समथिंग रहा है। 401 जो एरिया कोड पड़ता है उसके अंदर ही सिर्फ 14.4% का ईयर ओवर ईयर काउंटर सेल का जंप आया है। और प्राइजेस की भी बात करें तो ये भी जीटी के अंदर प्राइस मंथ ओवर मंथ 2.4% बढ़ा है। बहुत महीनों के बाद ये देखने को मिला है कि जीटी के अंदर प्राइस एक महीने में 2.4% बढ़ा है फ्रॉम मार्च टू अप्रैल। लेकिन अगर हम ईयर ओवर ईयर देखें तो अभी भी कम है, 6.3% अभी भी कम है। तो ये वॉल्यूम जो है ये रिकवर हो रहा है, बिकॉज मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जा रही है इस वक्त, क्योंकि प्राइजेस बहुत ज्यादा डाउन हो चुके हैं, इंटरेस्ट रेट अफोर्डेबल है इस वक्त 4% के आसपास, और चॉइस बहुत ज्यादा है इस वक्त बायर के पास। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि ऊपर से ये होता है कि हर चीज की एक अति होती है, एक टाइम के बाद फिर दोबारा ट्रैक आना शुरू हो जाता है। वो अलग बात है कि इस बार हम ट्रैक में थोड़ा लेट आए हैं।
1: जी जी, और मिडिल ईस्ट में भी जो सिचुएशन यूएस और ईरान से कनेक्टेड जो चल रही है वो हालांकि सुधरी भी नहीं है इतनी अच्छी, लेकिन बिगड़ी भी नहीं है, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गिविंग सम कम्फर्ट टू द मार्केट्स। मेरा
2: जो ये सोचते थे यूएस की उनको दबा देंगे, वो दबे नहीं बिल्कुल भी, तो उसकी वजह से दूसरा भी ढीला हो गया। तो ये भी एक कारण है कि इसको थोड़ा सा ये नेगोशिएशन को बात चली गई है, विच इज गुड थिंग टू हैपन।
1: एग्जैक्टली सबरवाल साहब, इसी से जुड़ा एक मेरा एक स्टेटमेंट है जो मैंने पढ़ा था अभी रिसेंटली। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट, बट ऑब्वियसली यू विल नो मच बेटर, कि कुछ वन कंपनी हैज बॉट अबाउट सम कॉन्डोज वर्थ 500 मिलियन डॉलर्स। आपने भी सुनी है ये खबर, और इसका मतलब आपने क्या अंदाजा लगाया?
2: ये जेस्टा ग्रुप है, मॉन्ट्रियल बेस्ड ग्रुप है जेस्टा ग्रुप, तो इन्होंने ईयरमार्क किया है अपना 500 मिलियन टारगेट रख लिया है टू बाय 1000 यूनिट्स इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो दे हैव ऑलरेडी हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द डेवलपर्स, और उनसे कहा है कि भी आपके पास अगर प्रॉपर्टी इन्वेंटरी है और लगभग $800 के आसपास एवरेज अगर आप बेचना चाहते हो तो वी आर रेडी टू बाय। ये बड़ी अच्छी न्यूज है, और इसमें कई बिल्डर हैं ऐसे डेवलपर जो कि देना चाहते हैं जिनकी इन्वेंटरी बिल्कुल हिल नहीं रही। $1189 पर स्क्वेयर फीट इस वक्त रिकॉर्ड चल रहा है टोरंटो में, लेकिन उन्होंने 800 की ऑफर करी है, विच इज आई थिंक कि किसी के लिए गलत नहीं है। रीजन ये है कि HST रिबेट भी, जो HST नहीं लगना 13%, वो भी कम करो अगर, क्योंकि पहली अप्रैल के बाद वो भी शुरू हो चुका है। तो प्लस डेवलपर अपनी इन्वेंट्री निकालना भी चाहता है, तो इट इज ए गुड साइन. उन्होंने ये कैलकुलेट इस बेसिस पे किया कि $2,125 पर मंथ एवरेज रेंट है 500 स्क्वेयर फीट यूनिट का, यानी कि $4.25 पर स्क्वेयर फीट. तो उसको निकालते हुए इन्होंने ये प्राइस निकाला, विच इज आई थिंक वेरी फेयर. इससे बड़ी ज्यादा मदद मिलेगी इन्वेंटरी क्लियर करने में. नॉट ओनली जस्टा ग्रुप, आपको शायद पता होगा शुरू में हमने इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर हमने कहा था हाई आर्ट कैपिटल ने भी लॉन्च किया था 300 मिलियन का प्रोविंस बिल्डिंग ओंटेरियो फंड के साथ मिलकर बाय करने का, और उन्होंने जो है अनसोल्ड डेवलपर की इन्वेंट्री को खरीद के रेंटल में कन्वर्ट करने की बात की थी, और वो भी उसमें काम किया जा रहा है. और उन्होंने ये भी प्लान बताया था, दे आर रेजिंग $1 बिलियन इन डेट एंड इक्विटी टू बाय दीज यूनिट्स. तो यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि ये काम अब अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं भी आपको याद होगा मैं कई हफ्ते से कह रहा हूँ कि ये टाइम दोबारा इतनी जल्दी आने वाला नहीं है. जिस हिसाब से मार्केट गिरी है और 2019 और 2020 की मार्केट पहुंच चुकी है, और क्या उम्मीद कर सकते हैं, 6-7 साल पुरानी मार्केट प्राइस में चली गई. दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय. मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ लाइन में ये टाइम दोबारा नहीं आएगा.
1: ओके तो आपने सुना बहनों और भाइयों, पीके जी का कहना है कि दिस वुड बी अ गुड टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट. तो अगर आप भी रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पीके सबरवाल हमारे साथ लाइव हैं स्टूडियो में. स्टूडियो की लाइन खुली हुई है, आपको बस फोन उठा के कॉल करना है 416-593-0055. दैट्स 593-0055. सबरवाल साहब, एक क्वेश्चन मेरे पास आया है कि उनका कहना है कि कॉन्डो मार्केट आजकल काफी सॉफ्ट है, प्राइसेस अराउंड 25% डाउन है फ्रॉम 2022 की पीक से, लेकिन डिटैच्ड होम्स और लो राइज बिल्ड जो है 416 में काफी स्टेबलाइज हो रहे हैं. तो इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट बेट क्या होगी, कॉन्डो, टाउन हाउस या फिर डिटैच्ड, आपका क्या मानना है?
2: जहां पर आरओआई बढ़िया है, मैं तो सिंपल सी मेरी कैलकुलेशन होती है बड़ी सिंप्लीफाइड, मैं अपने आप को एक जिसे कहते हैं ना गुंजल में नहीं डालता, मैं अपने आप को कंफ्यूज नहीं करता. मैं तो सिंपल देखता हूँ
1: जी
2: कि मेरी पर डॉलर रिटर्न क्या है. सिंपल सी बात है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरी क्या है.
1: एग्जैक्टली
2: प्लस मुझे फ्यूचर क्या नजर आ रहा है. ये दो
1: चीजें यहाँ पे मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़े हुए हैं तो सीधा उनके पास चलते हैं. हेलो रेडियो वॉइस पर आप लाइव है, पीके जी से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड.
3: हेलो
2: जी,
3: मेरी आवाज आ रही है आपको?
2: हाँ जी जी आ रही है.
3: जी कैसे आप?
2: ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बताइए.
3: हाँ जी, मेरा सवाल था कि मेरा अपार्टमेंट कांडो जो है वो 47 फ्लोर पे है, और बिल्डर ने मुझे जो
2: कौन से फ्लोर पे है दोबारा बताइए.
3: 47
2: ओके ठीक है अच्छा.
3: हाँ तो उसकी पार्किंग जो दी है बिल्डर ने मुझे, वो 6 फ्लोर जो है ना ये पार्किंग दी है, लास्ट वन जो है
2: तो
3: वो भी सेकंड बिल्डिंग में येलो में
2: P6 में दी आपको. हाँ
3: जी जी, Y6.
2: नो ऐसे नहीं होता, ये लॉटरी सिस्टम होता है. वो तो हर आदमी को नाराज करके बैठ जाएंगे वो लोग, फिर अपनी मर्जी से थोड़ा दे देंगे वो कि आपको उन्होंने P6 दे दिया, किसी को P1 दे दिया. P1 और P2 में ये आप ये मुझे आवाज आने से लग रही, मुझे लगता है आप एक्सचेंज की बात कर रहे हैं शायद, एक्सचेंज वन की.
3: जी बिल्कुल, मैं एक्सचेंज वन की बात कर रहा
2: हूं. मेरे को आवाज आपकी पहचान ली मैंने. मैं बता दूं आपको, एक्सचेंज वन के अंदर P1 लेवल और P2 लेवल पहले तो विजिटर्स का है, ये दो लेवल को तो हटा दो आप बिल्कुल ही, और P2 लेवल के अंदर कुछ यूनिट है जो कमर्शियल है. अब आपका एक्चुअल जो स्टार्ट होता है पार्किंग वो P3 से स्टार्ट होती है, P3 P4 P5. अब वो बिल्डर क्या करता है, डेवलपर क्या करता है कि टू जस्टिफाई एवरीवन वो इसकी लॉटरी सिस्टम करता है. अब आपकी P6 में आ गई तो उसमें उनका क्या कसूर है? आपको पर्सनली तो वो जानते नहीं है ना, आपसे उनकी कोई दुश्मनी है. और ऐसे ही वो उसके अंदर अगर मान लीजिए आपके 600 यूनिट है तो 600 को तो जानते नहीं होंगे. चलो मान लिया 10-15 को 20 लोगों को जानते हैं पर्सनली, जो कि अनहोनी है, मान लो फिर भी जानते हैं, तो 10-15 पार्किंग इच्छा नहीं हो सकती. एक पार्किंग एक फ्लोर के अंदर उनकी पार्किंग जो है वो 125 पार्किंग है. अब 3 फ्लोर है तो उन्हें 400 के लिए पार्किंग है, क्योंकि स्टूडियो और 1 बेडरूम के साथ पार्किंग नहीं देते वो, तो 375 पार्किंग है, 125 के अंदर अगर 10-15 को जानते भी हो, 10-15 पार्किंग दे भी दें, तो आपको P6 में थोड़ा ना भेज देंगे। ये शिकायत जो है ना आपकी नहीं है, ये शिकायत हरेक की है। जिसको उन्होंने P3 में भी दे दिया ना, वो मुझे पता क्या बोल रहा है कि एलिवेटर से मुझे बहुत ज्यादा दूर जाके चल के मेरी गाड़ी उठानी पड़ती है। अब जो जिसको एलिवेटर के ऊपर दे दिया ना, सुनिए, जिसको एलिवेटर के निकलते ही दे दिया, वो पता क्या कहता है, मेरे लिए न्यूसेंस बनी हुई है, मेरी जगह में कोई ना कोई कार खड़ी कर देता है। मतलब कोई इस दुनिया में खुश है ही नहीं, सवाल ये है। तो इसीलिए
3: जितना हाई फ्लोर हो तो उतनी अच्छी पार्किंग मिलती है, ये कहने का मकसद था।
2: लेकिन लेकिन लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो ताहिर जी बोल रहे हैं शायद, यही है
3: ताहिर बोल रहे हैं जी।
2: हेलो हेलो
3: जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2: ओह अच्छा, ताहिर जी आप अगर ध्यान से सोचो तो थर्ड फ्लोर से सिक्स फ्लोर में जाने में आपको सिर्फ पता कितने, सिर्फ 40 सेकेंड लगते हैं। आप घड़ी देख के चलिएगा, मैंने तो सारी प्रैक्टिस कर रखी है। 40 एक थर्ड से फोर्थ में जाने में 20 सेकेंड, फोर्थ से फिफ्थ में जाने में 20 सेकेंड, और फिफ्थ से सिक्स में जाने में 20 सेकेंड, सेकेंड की बात कर रहा हूं मैं, इतना लगता है। और लेकिन एक बात और बता दूं, सबसे सिक्योर्ड आप है, पता आपको क्यों? क्योंकि जो कारें वगैरह उठाई जा रही है सबसे ज्यादा जो उठती है वो P1 P2 से, फिर P3 से, P6 तो जाते तक चोर भी थक जाता है।
3: मालक नहीं थकता, चोर थक जाता
2: है जी।
3: असल में अभी तो चूंकि नई बिल्डिंग है ना, तो हम लोग तो अक्सर ही रास्ता भूल जाते हैं, ढूंढते रहते हैं इधर।
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, मुझे एक दिन गाइड बना लीजिएगा अपने साथ और मुझे चाय पिला दीजिएगा। थैंक यू,
3: ओके, शुक्रिया,
4: बहुत शुक्रिया ताहिर भाई आपका। और सीधे चलते हैं पीके जी एक दूसरे कॉलर की ओर जो हमारा वेट कर रहे हैं। हेलो, आप रेडियो वॉइस पे लाइव है, पीके जी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
5: हाय, मैं ऑन है।
2: यस सर।
5: हेलो
2: जी सर, आप हैं?
5: नमस्ते अग्रवाल जी, मेरा नाम रफीक है
2: जी, रफीक।
5: और मैंने असल में फोन इसलिए किया कि मैंने इस साल अभी तक दो टाउन हाउसेस की क्लोजिंग हो चुकी है और दो जो है अपार्टमेंट MCT में वो भी ले लिए है, और मेरी जो ऑफर जो है वो अप्रूव हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है। तो
2: राइट, वेरी गुड, आप बाय कर रहे हैं अभी अभी
5: जी, आप
2: असाइनमेंट में या सीधा बिल्डर से ले रहे हैं?
5: हाँ, वो जो मैंने टाउन हाउसेस की जो क्लोजिंग हो चुकी है वो बिल्डर से 24 नवंबर में मैंने बुक किया था और अब जाके उसकी क्लोजिंग हुई है। तो अभी जो है MCT में, तो अभी जो है सेकंड यानी रीसेल में मैंने बाय किया वो।
2: और वो जो आपने 24 में टाउन लिए थे वो टाइम बिल्कुल बुरा नहीं था, बिल्कुल बुरा टाइम नहीं था, आपने सही टाइम पे लेना शुरू किया था। अब आगे बताइए, क्या पूछना चाहते हैं?
5: बस पूछना ये है कि बस ये राइट डिसीजन है अपना जो अभी चला, वो तो पुराना मेरी बुकिंग थी तो वो तो मुझे लेना ही था। अभी जो मैंने रिसेंटली जो अभी जिसकी क्लोजिंग नहीं हुई है, दो अपार्टमेंट, जो एक मैंने 425 का इंक्लूडिंग पार्किंग 580 स्क्वायर फीट, दोनों की साइज तकरीबन सेम ही है, एक MCT 1 में और दूसरा MCT 2 में है, तो ये सही मुनासिब है अपना?
2: बात ये है ना, देखो सीधी सी बात है, मैं इसको थोड़ा लाइटर वे में बोलता हूँ, पहले तो मैं आपको इसका जेन्युइन जवाब दे दूँ आपको। जितनी नेगोशिएशन कर सकते थे आपने कर ली होगी, तो आपने ठीक डिसीजन लिया, गिरी मार्केट में खरीदना आपने बड़ा अच्छा काम किया, और विच इज ए गुड थिंग, क्योंकि आपका प्राइस ये आपने लिया है, ये ओरिजिनल प्राइस से आपने लगभग 140,000 150,000 सस्ता लिया है, ये तो मैं आपको बधाई दे दूँ। दूसरी बात है, क्योंकि आपने मेरे थ्रू नहीं लिया इसलिए गलत काम किया।
5: सॉरी।
2: हो सकता है मैं आपको इससे ज्यादा भी सस्ता दिलवाता, और हो सकता है मैं आपको ऐसी ऑफर कर देता जो कि अनहर्ड ऑफ है, वो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, बाद में पूछेंगे तो बता दूंगा। ठीक है, ओके,
5: चले, मैं फिर बाद में आपको फोन करता हूँ।
2: मेरा नंबर देता हूँ, मैं मुझे पूछ लीजिएगा 6472994757। लेकिन जो आपकी ऑफर चल रही है उसको चलने दीजिए, और मेरी गुड विशेज आपके साथ है। थैंक यू
5: सो मच, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू।
4: रफीक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया प्रश्न के लिए। सबरवाल साहब, प्रश्न डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन मेरा है, ये है कि वी आर सीइंग प्राइसेस इन मिसिसागा एंड मिल्टन स्टेबलाइज फास्टर देन डाउनटाउन टोरंटो कॉन्डोज, सो इज द वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड स्टिल ड्राइविंग पीपल आउट ऑफ द GTHA सबर्ब्स और आर पीपल रिटर्निंग टू द सिटी कोर फॉर वैल्यू? आपका क्या सोचना है?
2: मतलब आपका मतलब कहने का यह है कि जो हमारे मिसागा वगैरह में जो यहाँ पर स्टेबलाइज प्राइस ज्यादा कर रहे हैं, ये मतलब कहना का आपका ना?
4: जी जी जी जी।
2: इसका सिंपल आंसर है, जितने ज्यादा प्राइस यहाँ गिरे थे उतने ज्यादा नीचे गिरे, उतना ही देर से वो ऊपर आएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब ज्यादा डाउनटाउन में प्राइस जबरदस्त बढ़ गए थे, अब वो उसी हिसाब से गिरे हैं, अब उसको स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा। मिसागा वाला एरिया में भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े थे, पर उतने नहीं बढ़े थे जितने की डाउनटाउन वगैरह में बढ़े थे। इसीलिए सिंपल सी बात है, ये ये ये खींचातानी है, जितनी तेज बढ़े उतनी तेज गिरेंगे, जितने स्लो बढ़े उतने स्लो गिरेंगे। डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला यहाँ पर लागू होता है, बस और की बात नहीं। अगर आप और अगर इंटीरियर में चले जाएं, और दूर चले जाएं, आप एनकेस्टर चले जाएं, आप और आगे चले जाएं, लंदन चले जाएं, तो नेचुरली आपको और भी ज्यादा स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा बढ़े भी नहीं थे।
4: जी। ओके और पीके साहब, एक क्वेश्चन ये था कि जिन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन कॉन्डोज में पैसा लगाया था 2021 में, अब उनकी क्लोजिंग आ रही है लेकिन बैंक की जो अप्रेजल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से करीबन 60,000 या 80,000 कम आ रही है,
2: इससे भी ज्यादा,
4: आपकी क्या राय
2: है? इससे भी ज्यादा कम आ रही है।
4: अच्छा,
2: मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो RBC को कॉन्टेक्ट करें। इस वक्त RBC ज्यादातर डेवलपर्स की जो क्लोजिंग आ रही है उनको वो कवर कर रहा है, और आरबीसी आपको ब्लैंकेट मॉर्गेज दे रहा है विदाउट अप्रेज किए, अप्रेज किए बगैर आपको ब्लैंकेट दे रहा है। आरबीसी को कॉन्टेक्ट करिए आप, कई कई प्रोजेक्ट है जहाँ पर आरबीसी है, लेकिन आरबीसी को आप तभी कॉन्टेक्ट कर सकते हो जब आपको आपकी इनकम जेन्युइन हो। बात यह ना, जब उल्टा सीधा नकली काम हो तो आरबीसी का जाना बेकार है, क्योंकि वो तो आपके अगर आप अप्रूव है तभी तो आपको देंगे, लेकिन कई जगह आई डोंट नो कैसे करते हैं लोग, क्या करते हैं, हमने तो कभी इस बारे में ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम ही जस्टिफाई नहीं कर रही, तो देर इज नो पॉइंट गोइंग टू आरबीसी। इफ यू हैव ए जेन्युइन इनकम, यू हैव ए गुड इनकम, यू कैन अफोर्ड, और इफ यू आर डाउटफुल अबाउट इट, टॉक टू आरबीसी। आरबीसी भी आपकी मदद करेंगे, और आटे में नमक चल जाता है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके आपको, वो भी बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपको ब्लैंकेट मॉर्गेज दे रहे हैं, उनसे बात करिए। अदरवाइज जो प्राइस कम है, ऑन एन एवरेज $100,000 प्राइस कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 6 लाख का कोई कॉन्डो है और उसका प्राइस 1 लाख कम है, तो आपको 80% चाहिए। 6 लाख में वैसे तो आपको मिल जाते थे 480,000, लेकिन 1 लाख कम होने के बाद अब लेंडर उसको 500,000 मानेगा, और 500,000 का 80% होता है 400,000, तो अब आपको लेंडर 4,80,000 की जगह 4 लाख देगा, लेकिन आपने लिया था 6 लाख का, तो अब 6 लाख के अंदर आपने अब 2 लाख लाना है। 1 लाख बीजा तो आपने डाउन पेमेंट दे दिया था
4: जी,
2: अब आपको 80,000 और एक्स्ट्रा लेके आना है, जो कि आपने अभी कहा 60 से 70-80 हजार, तो ये डिफरेंस आप बता रहे होंगे शायद, तो ये आपको और जेब से लाना होगा। और अगर आप नहीं ला पा रहे, हमें कॉन्टेक्ट करो, हमारे यहाँ पर रोज मीटिंग्स होती है, हमारे इन हाउस मॉर्गेज ब्रोकर इस किस्म का भी इंतजाम, आपको डाउन पेमेंट का कैसे इंतजाम करना है, डिफरेंस का कहाँ से निकालना है, कहाँ से लाना है, ये आप हमारे साथ आधा पौना घंटा बैठो, आपको इसकी सोल्यूशन मिलेगी। और मैं नंबर देता हूँ आपको 6472994757, सोल्यूशन है। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम वी आर रिचर देन व्हाट यू थिंक, जैसे स्कॉटिश बैंकी हुआ है ना पंच लाइन, तो हमें कई बार अपने खुद को नहीं पता होता, जब हम बैठते हैं तो उनको पता चलता है ये तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे, और कोई और भी तरीके हैं करने के, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट टेम्परेरी ली जा सकती है, हीलॉक से थोड़ा निकाला जा सकता है, बैंक से रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा पैसा लिया जा सकता है, और भी बहुत तरीके हैं। अगर आप कमर्शियल, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके अलग से और भी तरीके हैं बहुत काम करने के, मॉर्गेज लेने के, जिसके अंदर की अप्रेजल की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती। तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके अपना नाम लिखिए, नाम लिखेंगे तो कॉल बैक आएगी, तो कॉल बैक नहीं आएगी, और हम आपके साथ अपॉइंटमेंट बना लेंगे। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू। 6472994757 जी।
4: सबरवाल साहब, वक्त है अभी हमारे पास थोड़ा, तो बात करते हैं। थोड़ी सी खबर नेगेटिव होगी, फिर कमेंट्स आएंगे कि आप लोग नेगेटिव बातें करते हो, लेकिन हम क्या करें, खबरें ही ऐसी आ रही है मार्केट में, जो चल रहा है आप तो वही बयां करते हैं और हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो आजकल कंज्यूमर इनसॉल्वेंसी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं सबरवाल साहब, आपका क्या विचार है इन सब चीजों के बारे में, आप किस तरह से देखते हैं?
2: मेरे ख्याल से अमिताभ जी, ये नेगेटिव खबर नहीं है, ये सीख है, ये सीख है, ये आपको यहाँ से सीखना चाहिए, मुझे यहाँ से सीखना चाहिए, हर इंसान को यहाँ से सीखना चाहिए। ये इंसॉल्वेंसी की नौबत आई ही क्यों, पहली बात तो ये है। पहले तो मैं आपको ये खबर बता देता हूँ, ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 के अंदर 37,121 कैनेडियन उन्होंने फाइल किया है कंज्यूमर इंसॉल्वेंसी, ठीक है, ये हाइएस्ट है फ्रॉम 2009, जो हमारा जो एक बहुत बड़ा आपको पता है फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसके बाद ये हाईएस्ट है, 16 साल के अंदर हाईएस्ट है। तो इसके अंदर जो है ये जो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर 16.2% बढ़ी है हाईएस्ट, 4,200 के लिए बढ़ी है। ओंटारियो फॉलो करता है उसको 14.7% जो है 30,000 समथिंग इन्होंने फाइल की है, और प्रिंस एडवर्ड थर्ड आता है 20.3। एक और मैं हर एक घंटे में 17 कैनेडियन फाइल कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी, एवरी आवर 17 कैनेडियंस आर फाइलिंग फॉर इंसॉल्वेंसी। ये जो डाटा मैंने बताया ये बता रहा है कि मोर एंड मोर कैनेडियंस आर रीचिंग फाइनेंशियल ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेक पॉइंट आ गया। कहीं अभी पीछे सर्वे आया था, बताता उन्होंने कहा था वी आर अवे $200 पर मंथ फॉर द बैंक्रप्सी, $200 अगर हमें और देने पड़ेंगे हम बैंक्रप्सी की तरफ चले जाएंगे। वो कह रहे हैं हम जो है ना जो डेट ऑलरेडी उसको कैरी करना तो बाद की बात है, हम रोजमर्रा की जिंदगी भी नहीं जी पा रहे ढंग से। तो अब इसके अंदर एक बात बड़ी जबरदस्त मैं कहना चाहूंगा, देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कभी कभी अनहोनी घरों में हो जाती है
4: जी।
2: वो बात अलग है, अगर घर में कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई जॉब नहीं गई, कोई डिसेबिलिटी नहीं आई, घर गृहस्थी ठीक चल रही थी, तो बैंक्रप्सी क्यों आई है, इसमें मैं 100% नॉट 99% 100% मैं इसको कंज्यूमर का नुक्स बताऊंगा। ये क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है महीनों और महीनों का आपका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ये एक दिन में नहीं हुआ करता सक्सेना साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये मिसमैनेजमेंट है। स्पेंडिंग हैबिट्स और लाइफ स्टाइल आपका कई सालों से गलत चल रहा होता है, जो कि आपको यहां लाके रख देता है। मैंने बोला बार बार एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जॉब डिसेप्शन वगैरह ये वो रिलेशनशिप वगैरह वो बात अलग है, लेकिन अगर सब कुछ रेगुलर चल रहा है और अगर आप इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं तो आपने दिखावा कर रखा था, अपनी इनकम के हिसाब से खर्चे ज्यादा कर रखे थे, हैंडलिंग ऑफ योर फाइनेंसिस और लाइफ स्टाइल वो गलत आपकी हैबिट बनी हुई थी, और इसीलिए अब आपको जाकर ये भुगतना पड़ रहा है।
4: सबरवाल साहब, अगर आप इजाजत दें तो एक कॉलर हमारा थोड़ी देर से वेट कर रहे हैं और हमारा वक्त भी थोड़ा खत्म होने के कगार पे है, तो सीधा कॉलर के पास चलते हैं। हेलो रेडियो वॉइस, आप पी के सबरवाल जी से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
6: हेलो
2: जी सर,
6: मैं कामरान बात कर रहा हूँ सर, मैं आपको बता दूं मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ मैं
2: जी,
6: ठीक है, और मेरे पास जो डाउन पेमेंट है वो तकरीबन है 50,000 to 70,000 और मेरी होम इनकम है 150,000, तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे?
2: 150,000
6: जी,
2: हाँ वेरी गुड, तो आप क्या पूछना चाहते हैं सर?
6: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे कि मैं डिटैच हाउस लूँ, सेमी डिटैच लूँ?
2: आपका ये फैमिली इनकम है या आपकी अकेले की इनकम है?
6: नहीं नहीं, मेरी और मेरी वाइफ की इनकम मिला के फैमिली।
2: बच्चे कितने हैं कामरान जी आपके?
6: मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा 21 साल का, बेटी 26 ईयर ओल्ड है।
2: हाँ बड़े बच्चे हैं ना आपके, और अभी आप कब आए थे इस कंट्री में कामरान साहब?
6: सर ये ना पूछें, बहुत पहले आया था, 30-35 साल हो गए।
2: तो आपके पास 50,000 हैं, मैं आपको एक नेक सलाह देता हूँ जो कि अक्सर रियल्टर नहीं देगा
6: जी जी,
2: आपको बहुत बड़ी बड़ी लालच देने वाले लोग मिल जाएंगे, वो ये भी कह देंगे कि हम आपको 8 लाख का घर ले देंगे, आपको हम 9 लाख का घर ले देंगे, बहुत अच्छा महल आपको $6 लाख में मिल जाएगा, इसके ऊपर मत जाइएगा
6: जी। अच्छा,
2: तो आपकी जिंदगी बहुत सुकून से बीतेगी, बहुत वो आपका बहुत बड़ा ताजमहल होगा, 6 लाख तक का घर, 3 बेडरूम का, 2 बच्चे हैं, बेटी अपने घर चली जाएगी, आपका बेटा और आप मियां बीबी के लिए तीन कमरे बहुत बड़े आलीशान महल है, बड़े घर में जाओगे फिर वही टेंशनों में आ जाओगे, अच्छी वाली जिंदगी आपकी बीती है, फिर आप गलत रास्ते मत चले आना, या मैं आपको सारी ऑप्शंस दे दूंगा, आप टाइम निकाल के मेरे पास आइए, मैं आपको सारे प्लस माइनसेस प्रोज एंड कॉन्स सारे बता दूंगा, फिर उसके बाद घर जाके आराम से सोचिएगा, हम दोबारा कॉल बैक नहीं करते मिलने के बाद। सर आपको बात ठीक लगे तो मुझे दोबारा कॉल कर दीजिएगा, बाद में ब्रोकर भी बिठा दूंगा। जी
7: जी अच्छा ओके, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ
2: जी। थैंक यू वेरी मच। छलांग मत मारिएगा, जिन लोगों को दिखाने के लिए छलांग मार रहे हो आप, वो जेलिसी करते हैं, खुश नहीं होते कभी भी, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का, वो कभी नहीं खुश होते, हमें लगता है कि हम उनको खुश कर रहे हैं, नहीं हम उनको आग लगा रहे हैं और खुद अपनी भी आग लगाते जा रहे हैं। तो ये जो है ये आप अपना चार देखो, 26 साल का बेटा शायद आपने बताया और 21 साल की लड़की बताई शायद आपने,
7: बेटा
2: 21 साल का बेटा
7: जी
2: जी, तो ये परिवार बंधा हुआ परिवार है, यूनाइटेड परिवार है, नहीं तो बच्चे तो इस उम्र में बाहर बाहर भाग जाते हैं। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि ए फैमिली डजंट नीड टू बी परफेक्ट, इट जस्ट नीड्स टू बी यूनाइटेड,
4: और
2: यूनाइटेड जो है आप 6 लाख के घर में रहोगे, जैसे सर में टेंशनें बढ़ जाएंगी, जैसे बड़ा घर ले लोगे आपको लगेगा बड़ा घर है, नहीं सिर दर्दियां बढ़ जाएंगी, जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द जी। तो मेरे को मिल लीजिएगा, मैं आपको नंबर दोबारा देता हूँ, 6472994757, 6472994757। एक चलते चलते मैं आपको एक लास्ट बात और कर देता हूँ, जल्दी से रईस भरने की कोशिश में लोग गिर जाया करते हैं, जितनी जल्दी आप सीढ़ियां चढ़ोगे उतना ही ज्यादा गिरने का खतरा है। मैं हमेशा कहता हूँ जो जमीन में बैठा है वो कभी गिर नहीं सकता। प्रोग्रेस डजंट नीड स्पीड, इट नीड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर प्रॉपर होगी तो प्रोग्रेस होगी ही होगी। शुरुआत 6 लाख से ऊपर मत करिएगा भाई साहब, जो मर्जी आपको लोग बोलते रहे
4: जी। बहुत शुक्रिया कॉलर का हमारे, और पीके सर हालांकि बातचीत का सिलसिला जारी रखने का बहुत मन है, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमको अभी आपको बाय बोलना पड़ेगा, ताकि अगले वेंसडे हम रिफ्रेश होकर फिर आए बहुत सारे प्रश्नों के साथ और लिसनर्स को अपने एजुकेट कर पाए और उनको जानकारी दे पाए रियल एस्टेट की असली सच्चाई की।
2: बहुत शुक्रिया सर, बताना चाहता हूँ कि मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। अभी मेरी ब्रॉडकास्ट की चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर मार्क मेडलबम, वो भी छोटे छोटे कुछ सेकंड्स की मेरी छोटी छोटी वीडियोज आएंगी मेरे, आप देखिएगा मार्केट के बारे में जो उन्होंने हमने बात करी आपस में। पीके सबरवाल ऑफिशियल इसमें फॉलो करिए, जो भाई साहब ने कामरा ने पूछा ऐसे कई क्वेश्चन के आंसर वहां मिलेंगे आपको जी।
4: ये थे पीके सबरवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी अगले वेंस से 4:25 पर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहन और भाइयों आपने सुना, रियल एस्टेट में टाइमिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है सही स्ट्रेटेजी और सही गाइडेंस, और वो आपको मिलती है सिर्फ यही श्री पीके सबरवाल जी के साथ रेडियो वॉइस एफएम 101.3 पर। पीके सबरवाल जी हमारे साथ फिर जुड़ेंगे अगले वेंसडे ठीक 4:25 पर, तब तक चलते हैं एक ब्रेक की ओर।
8: जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए सीधे चलते हैं रॉजर्स एम्प्लॉई वकार खान जी के पास, रॉजर्स की बेहतरीन डील्स के लिए एक बार वकार जी से बात और मुलाकात जरूर करें। नंबर टू डायल इज 6478648000, 6478648000। आइए सीधे चलते हैं वकार जी के पास। वकार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में, प्लीज हमारे श्रोताओं को आज किस प्रमोशंस के बारे में बताना चाहेंगे प्लीज बताएं।
9: थैंक यू सो मच जतिन भाई, आपको तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जतिन भाई रॉजर्स की बहुत अच्छी ऑफर है, बहुत सारी प्रमोशन है, बंडल ऑफर्स हैं, बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ है, इसमें पैकेज है, टीवी मिल जाएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, इंटरनेट है 2000 की स्पीड का सुपर फास्ट, फोन में अमेरिका कनाडा सारा फ्री है, 9-30 मिनट्स हर महीने इंडिया पाकिस्तान इंग्लैंड के, आप डायरेक्ट बैक होम कॉल करें, बहुत ही स्पेशल ऑफर है। अगर आपको सिर्फ इंटरनेट लेना है तो 500 की स्पीड का इंटरनेट है, 1500 और 2000 की स्पीड के एक्सफिनिटी इंटरनेट लेटेस्ट मॉडम अनलिमिटेड डाउनलोड के साथ बहुत चीप रेट पे दिला देंगे। रॉजर्स सेल फोन्स के भी बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अनलिमिटेड कैनेडा वाइड कॉलिंग है, अनलिमिटेड यूएस कॉलिंग है, डेटा भी अनलिमिटेड है, और अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आईफोन है, सैमसंग है, बहुत अमेजिंग रेट पे ये डिवाइस और प्लान इस वक्त अवेलेबल हैं। प्लीज कॉल कीजिए, इस वक्त बहुत अच्छी ऑफर्स हैं, बहुत सारे प्रमोशंस और डिस्काउंट्स हैं, स्पेशली इंटरनेट की बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर है, जरूर एक बार कॉल कीजिए। नंबर है मेरा 6478648000, 6478648000। मैं रॉजर्स कॉर्पोरेट एम्प्लाई हूँ, 18 साल से रॉजर्स के साथ हूँ, मुझे रॉजर्स के सिस्टम में एक्सेस है, आपके एड्रेस और अकाउंट चेक करके बेस्ट ऑफर दूंगा। नंबर अगेन 6478648000, 6478648000।

जो वी मीट अगेन ऑन द डे जहाँ मौसम की सरगम आजकल कुछ भी गा बजा रही हो, पर सीजन तो वही स्प्रिंग का है जब लॉन्ग ड्राइव्स का अपना ही एक मजा है, दुगना अलग मस्तीफुल जुनून। पर ऑल केयरलेस ड्राइवर्स आउट देयर ध्यान से सुन लें, क्योंकि इस हफ्ते कनाडा रोड सेफ्टी वीक भी हो चुका है शुरू। तो भाई जिस जिस व्यक्ति को हाथ में वो फोन लेकर रूट मैप देखने की आदत है, बात करने की आदत है या टेक्सटिंग स्टंट करते रहते हैं क्योंकि किसका क्यों कब आया है क्या आया है ये टेक्स्ट देखने की एक बेचैनी बेसब्री रहती है, उन सब के लिए पुलिस इस हफ्ते थोड़ी और ज्यादा सजग हो चुकी है। तो ध्यान से चलें, ध्यान से चलाएं, फाइन देने से भी बचें और सेफ्टी का भी ध्यान रखें, अपनी भी और औरों की भी। सो ऑन दिस ए भाई जरा देख के चलो वाली रिमाइंडिंग भरी नोट, दिस इज स्वाति एंड रुद्राक्ष ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर से, कि कहीं पढ़ा था मैंने ट्रक के पीछे जब भारत गई थी इस बार पहाड़ों पे। दुर्घटना के चार यार, मोबाइल, नींद, नशा और तेज रफ्तार। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो दोस सिग्नल्स। यस।

0: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माय रियल्टर के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी.
1: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में.
2: बिल्कुल. लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%. मैं हूं संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माय रियल्टर. कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600.
1: My property, my choice, my Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract. Quick reminder, आज 6 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे संजीव मनोचा जी with the segment हर घर कुछ कहता है और एक कहानी भी सुनाएंगे हमेशा की तरह. तो आप जरूर जुड़िएगा हमारे साथ और स्टूडियो का नंबर रहेगा 416-593-0055. दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय माय रियल को द रियल स्टेट कंपनी.

0: लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है, हो सकता है आपका बिजनेस नेम या वास्तु सही सपोर्ट ना कर रहा हो। पन्ना शाह के साथ पाइए बिजनेस नेम करेक्शन, शॉप एंड ऑफिस वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सएप करें 4376733125, 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर

0: and a home. $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना. 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com.
3: On your feet with Peppy Knicker Beats.

तेरा मैं तेरा मैं तेरा करते हुए इन्होंने अच्छी खासी इस डेट को हिट कर रखा है म्यूजिकली। बहुत सारे गाने मेरे दिमाग में आते रहे और मैंने सोचा एक कंपाइलेशन आपको बताया जाए, और अगर मैंने कुछ मिस किए हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करके बताएं कि मैं तेरा से वो गाना स्वाति आपने मिस किया, वो भी तो है। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055।

वेल तू मेरी मैं तेरा, और इस मैं तेरा से मुझे याद आया कि आज की डेट भी है थोड़ा सा ट्विस्ट, मैं तेरा मैं नहीं है पर मैं तेरा जरूर है। और मैं सोच रही थी कि बॉलीवुड में कितने सारे गाने हैं इस मैं तेरा मैं तेरा।

एंड हाउ कैन आई फॉरगेट दिस वन, इसने तो रटी लगा दी है, मैं तेरा की एंड यस, अब ये गाना जब हमने सुना ही दिया है तो क्यों ना इसको आगे भी सुना दिया जाए।

0: All right, I have a caller. Let's see what they have to say with this मैं तेरा मैं तेरा के ऊपर. Hello जी.
1: हाँ जी, हेलो. हेलो पति जी.
0: बिल्कुल ठीक है. नाम बताएं और मुझे बताएं क्या टिप्पणी करना चाहेंगे.
1: हाँ, तो मेरा नाम अतुल है और एक गाना जो बहुत पुराना है वो इसलिए इसमें आ सकता था.
0: जी
1: ये गाना होगा मैं तेरा चांद.
0: अरे क्या बात. बहुत खूब, बहुत खूब आपको याद आया है. और इतना पॉपुलर गाना था उस टाइम का. और मैं तो जब गाती थी उसी स्टाइल में भी गाती थी, जो थोड़ा सा नेजल टोन में गाते थे ना उस वक्त. मैं तेरा चांद तू मेरी चांदनी. बहुत अच्छे से आपको याद आया. थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल इस लिस्ट में वो डाल सकती थी. और मैं बाकी लिसनर्स को भी कहूंगी, अगर मैंने कोई गाना स्किप किया है और आपको लगता है कि उस लिस्ट में आ सकता था विद मे 13th मई तेरा, तो आप मुझे बता सकते हैं. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055. अतुल जी, एक चीज आपके लिए कहूंगी, ये होते हैं फिल्मी नुक्कड़ के लिसनर्स. आप रियली फिल्मी है. थैंक यू सो मच.
1: थैंक्स सो मच. थैंक यू
0: जी. थैंक यू.
2: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markampur.
3: Doing business your way.
2: Member of Wayne's Auto Group.
0: To advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
4: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
5: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 905-460-8888. दैट्स 905-460-8888.
4: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस. बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस. स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
6: अच्छा, ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना. अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके $400 to $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना. यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स. तो भाई ये पॉसिबल है. कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं. 647-453-5353.
2: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Wayne's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: फॉलो अस ऑन फेसबुक, फिल्मी नुक्कड़, इट्स द फ्री टाइम।

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit markville.com ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: All right, आप फिल्मी नुक्कड़ CMR 101.3 FM पर विद स्वाति एंड पायस विनी एंड 7 बजे तक रहता है हमारा आपका साथ, तो याद दिला देती हूँ. और अगर आप सोच रहे हैं कि जिस भी काम में आप हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी तो है ही नहीं उस काम में, या उतनी इनकम नहीं है कि फ्यूचर ब्राइट हो सके आपका और आपके परिवार का, तो क्या किया जाए? तो वेल, अगला सेगमेंट सुना जाए. हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूहानी कॉलेज से ओम जी. इनके पास जो कोर्सेज है ना वो यूं ही वाले नहीं है. एक तो बहुत ही करियर ओरिएंटेड हैं जिनकी डिमांड है, इसका मतलब फटाफट आपकी या तो जॉब लग जाती है या आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, और इसका मतलब ये भी है कि आप अच्छी इनकम के साथ सेटल हो सकते हैं. तो करियर के लिए वहाँ पर क्यों जाना चाहिए, वहाँ क्या क्या है, उसके लिए ओम जी साहब की बात करा देती हूँ. ओम जी, वेलकम.
2: थैंक यू स्वाति जी. बिल्कुल आपने सही बोला कि अभी जॉब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है. गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी आए हुए हैं, राइट? तो अभी हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा है जहाँ पे की डिमांड रहती रहती है. इस सेक्टर में कुछ भी हो जाए डिमांड एक अच्छी खासी बनी रहती है, और इसमें एक पूरा का पूरा कैरियर ही नहीं, पूरा का पूरा कहते हैं ना लाइफ सेट हो जाता है. लाइक जो हमारा RMT का प्रोग्राम है उसमें विद इन जस्ट 1 ईयर आप RMT बन जाते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है. और आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी है, जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो और इनकम भी बहुत अच्छी है. तो इसके लिए हमारे पास आना पड़ेगा. आप आके कैंपस में विजिट कीजिए, देखिए कैसे लोग अपना लाइफ चेंज कर चुके हैं. हाँ जी.
1: ओह वाओ, तो आपने एक तो बताया कि विद इन अ ईयर RMT बन के रेडी हो सकते हैं, साथ में जब रेडी हो जाते हैं विद इन अ ईयर तो उसके बाद फ्यूचर किस तरीके से ब्राइट हो सकता है? जॉब जल्दी लगती है, काम अपना शुरू कर सकते हैं, या किस तरह की उनकी इनकम रह पाती है?
2: जी जी बिल्कुल, सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. नॉट ओनली कि एक RMT बनने के बाद आप RMT, उसके बाद ऑस्टियोपैथ एक्यूपंचर भी कर सकते हैं, का बिजनेस भी खोल सकते हैं, और जो वैसे भी काम भी करते हैं जैसे हॉस्पिटल्स में भी जॉब लग सकती है.
1: इंटरेस्टिंग.
2: लॉन्ग टर्म केयर में भी होते हैं, तो कई लोग जो क्लिनिक पे मोस्टली काम करते हैं तो भी मतलब कि 12 से 15 हज़ार डिपेंड्स कितने आवर्स काम करते हैं, उस हिसाब से अपना पर मंथ की इनकम होती है. जी
1: वेरी नाइस. तो इनकम बहुत अच्छी हो सकती है, गारंटीड होता है. यहाँ पे आपका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में रिक्वायरमेंट है, हमें पता है आजकल के यहाँ पे किस तरीके से रिक्वायरमेंट, सब कहते हैं मेडिकल साइड है, तो ये अपने आप में एक ऐसी फील्ड है. विद इन ईयर अगर आप करके निकल जाते हैं RMT या ऑस्टियोपैथ बन के निकलते हैं तो बहुत अच्छा आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है. ओम जी एक चीज़ और बताएं, हम जो बात करते हैं कई बार कि बहुत सारे बच्चे मेडिसिन की लाइन में जाना चाहते हैं, और आप कई बार बताते हैं कि रूहानी कॉलेज से अगर जो वो आते हैं तो प्री मेट प्रोग्राम है आपका जिसमें उनके 4 साल की भी बचत हो सकती है, तो हाउ यू मेक इट पॉसिबल?
2: बिल्कुल करेक्ट है. 4 साल पहले डॉक्टर बन जाते हैं, जो कि नॉर्मल जर्नी है कि BSc करो उसके बाद में फिर MCAT करो, वो सब नहीं करना होता है. हमारे पास डायरेक्ट +2 के बाद में 1 ईयर प्री मेट एंड विल गेट ग्रांटेड एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज, जो हमारा पहले कैरेबियन का तो है ही, बहामास का भी है, US के अंदर भी है, विदिन US भी है.
1: विदिन US भी है आपके पास?
2: जी जी.
1: तो यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, US में भी है, कैरेबियन का तो हम सबको पता है होते हैं, पर US के भी ऑप्शंस इस वक्त रूहानी कॉलेज के साथ हैं एसोसिएशंस. आप डिटेल पता कर सकते हैं, मैं एक बार नंबर बताना चाहूंगी यहाँ पर, 905-731-2555, that's 905-731-2555, ruhanicollege.com वेबसाइट है, वहाँ से नंबर भी मिलेगा. पर अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे डॉक्टर बन जाएं और कम समय में बन के तैयार हो जाएं, तो आप एक बार रूहानी कॉलेज पे पता करें, इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल लें और फिर अपना डिसीजन लें. जी ओम जी, कुछ और जोड़ना चाहेंगे?
2: हाँ जी बिल्कुल. यहाँ पे से देखो, ये नहीं बोलते कि आप कोर्स कर लो, हमें बोलते हैं कि आप पहले देखो जो पहले कोर्स कर लिया लोगों ने उनको जॉब मिली कि नहीं मिली, उन्होंने कितनी अर्निंग हो रही है, क्या हमारा ऑस्टियोपैथ का प्रोग्राम है या अक्यूपंचर का प्रोग्राम है और आर्मी का प्रोग्राम है। पहले हम उन स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारे पास से कर लिया, उनसे जाके बात करो, उनसे फीडबैक लो, एंड देन आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाता है।
1: बिल्कुल, बात करनी तो जरूरी है, तभी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे एंड देन यू कैन मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एंड एक बात और, रूहानी कॉलेज पे फाइनेंशियल एड भी अवेलेबल हो सकती है, आपकी सिचुएशन पर बेस्ड होता है वो, अगेन उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी और फिर देखें आप उसके लिए क्वालिफाई होते हैं या नहीं। 9057312555। थैंक यू ओम जी, फिर करते हैं आपसे बात।
2: थैंक यू,
1: गुड लक।

0: He's breaking through the midfield.
1: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries.
0: This is dangerous. Into the box.
1: Winter tires ya extended warranty le aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: अच्छा कहते हैं, a cocktail a day keeps the bad vibes away. You can find zest in life with one at a time. मतलब सुना है मैंने, क्योंकि अपन तो मॉकटेल वाले बच्चे हैं. मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन तो नहीं करती, पर मॉकटेल पिया है. तो कॉकटेल का फैन बेस इमेजिन जरूर कर सकती हूँ, है ना. बाकी आई वाज थिंकिंग की जो जिंदगी होती है ना हम सब की, ये भी तो कहीं ना कहीं कॉकटेल मॉकटेल इन सब की तरह ही होती है ना, जहाँ जिंदगी के सभी लम्हे, सभी पड़ाव, उससे जुड़े सभी लोग जो हमारी जिंदगी में आते जाते हैं और कुछ टिक जाते हैं, देयर आर मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट. ऐसे ही मोमेंट्स है ना, दोनों रियलिटी एंड ख्याली पुलाव, दोनों कुछ खट्टे कुछ मीठे, कुछ कड़वे कुछ नमकीन और कुछ विद जिंग, मेकिंग ईच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ वर्थ लिविंग, है ना. सो ऑन दिस वर्ल्ड कॉकटेल डे टुडे, दिस इज स्वाति सिंह कि भाई ना मानो ना तो है ये बस कड़वी, और मानो तो ये कॉकटेल सी जिंदगी लाए हर सिप में खुशी.

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markampur.
1: Doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: काव्या होम्योकेयर. काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
3: जी हाँ, 6477602779 यही नंबर है मीता जी से संपर्क करने का. काव्या होम्योके .com वेबसाइट है, आप वहाँ जाके भी नंबर नोट कर सकते हैं. इन केस यू आर ड्राइविंग या मुझसे भी ले सकते हैं. पर अगर घर में छोटी बड़ी बीमारियाँ लगी रहती हैं, जो कि होता ही है बड़ों के साथ भी बच्चों के साथ भी, तो होम्योपैथिक मेडिकेशंस हमेशा सेफ होती हैं. वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, कहते हैं जड़ से ख़त्म करता है बीमारी को. और ऐसे में अगर जो एक्सपीरियंस होम्योपैथ का साथ मिल जाए तो बात बन जाती है. अब एक्सपीरियंस होम्योपैथ की जब बात आती है तो मीता जी का नाम मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस सिर्फ उतना ही नहीं जितना हमें आपको दिखता है उससे कहीं ज्यादा है. पूछे कैसे? वेल, जितना मुझे पता है, क्योंकि वो वैसे कहते हैं ना एक लेगेसी फॉलो कर रही हैं होम्योपैथी की, लर्निंग की, उसकी प्रैक्टिस की, उसके ट्रीटमेंट की. और वो चीज़ आपको जब आपके इर्द गिर्द आपके परिवार में सारे दिग्गज बैठे होते हैं उसी फील्ड के, तो आप बचपन से उनके सहयोग करते करते, उन घर में कहते हैं ना बातचीत होते सुनते, आपका पता नहीं एक्सपीरियंस कब से शुरू हो चुका होता है, क्योंकि लर्निंग बहुत जल्दी शुरू हो चुकी होती है. और ये आपको लर्निंग या उनका ट्रीटमेंट या उनकी एक्सपर्टीज दिखेगी उन लोगों में जो इनके रेफरल बन चुके हैं ऑलरेडी कम्युनिटी में. आप किसी से भी बात करें जो मीता जी से एक बार मिल लिए हैं, वो होम्योपैथिक मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट में यकीन नहीं करते थे तो करने लगे हैं. तो नंबर टू कॉल है अगेन 6477602779. बाकी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पता करें. आपको घर बैठे भी मेडिकेशंस मिल सकती हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं इस नंबर पर. और अगर आप क्लिनिक तक नहीं आ पा रहे हैं तो भाई कंसल्टेशन फ़ोन पर भी पॉसिबल है, उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं 6477602779. और इससे पहले आप कहें कि उनसे बात तो कराओ स्वाति, लेके चलती हूँ मैं मीता जी के पास. मीता जी वेलकम.
4: थैंक यू स्वाति जी. गुड इवनिंग एवरीवन, एंड सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैम छो?
3: बढ़िया. और इस वक्त बहुत सारे सीजनल चेंजेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां यूं तो चल रही हैं, हम बहुत सारी बातें आपसे करते भी हैं. इस बार मैं उस बारे में बात करना चाह रही हूँ जिसके लिए बचपन से हम एक दूसरे को ताना मारते हुए कहते हैं कई बार कि तेरे कान बज रहे हैं क्या. और फिर समझ में आता है जब बड़े होते हैं कि ऐसा नहीं होता कई बार कि सच में ही कान बज रहे हैं, सच में बज रहे होते हैं. मतलब देर इज अ साउंड कुछ लोगों को सुनाई देती है एक्सटर्नल, और जबकि कोई है नहीं आवाज़ फिर भी. और ये कोई वहम नहीं होता, देर इज अ प्रॉब्लम. क्या वो एग्जिस्ट करती है सच में, ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में? मैंने सोचा इसके बारे में बात कर लेते हैं.
4: जी बिल्कुल स्वाति जी, और काफ़ी बार ना लोग परेशान भी काफ़ी हो जाते हैं इस कंडीशन करके के सालों से कानों में आवाज़ आ रही है जो पीछा ही नहीं छोड़ रही है, कि मेरा ध्यान ही वहाँ पे है हर बार. सो ऑब्वियसली आज इसी के बारे में हम देखते हैं. इस कंडीशन को हम टिनाइटस कहते हैं, जिसको ईयर रिंगिंग कहा जाता है, कि आपके कानों में आवाज़ें आती रहती हैं. अब ये ईयर रिंगिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, आप कह लें कि कई बार विसल बज रही है उस तरह की आवाज है, या फिर कोई बर्ड की चिरपिंग है वो आवाज है, जैसे हवा चल रही है उस तरह की बजिंग सी आवाज है, पानी चल रहा है उस तरह की आवाजें, जो कि एक्चुअल में नहीं होती है, आपको सिर्फ ये सुनाई देती है. लेकिन जब लोगों की आवाजें सुनाई देती है तो वो डिफरेंट कंडीशन होती है, डिल्यूशन, हेल्यूशिनेशंस जिसको हम कहते हैं, कि जो एक्चुअल में नहीं है वो सुनाई देता है, तो वो डिफरेंट है. इसमें ये सिंपल सी आवाजें आपके एक कान में, दोनों कानों में, तो तो इनिशियली क्या होगा कि कुछ देर सुनाई देती है समटाइम्स, तो उसके बाद वो चली जाती है. लेकिन जब ये जा नहीं रही है, लगातार आपको ये बोदर कर रही है ना, तो फिर इसको ये टिनाइटस नाम की कंडीशन कहा जाता है. और काफ़ी डिजीज कंडीशंस इस तरह की है जिसमें ये टिनाइटस पाया जाता है. अब ये जो आवाज़ है, आप देखोगे कि कई बार एक कान में, कई बार दोनों कानों में, तो कई बार बीच में ब्रेन से आपको सुनाई देती है कि सिर में अंदर से कहीं पे ये आवाज़ें आ रही है. बढ़ती एज के साथ अक्सर हियरिंग लॉस होता है ना, उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे एज बढ़ती जाती है, थोड़ी बहुत ही कभी कभार टिनाइटस की प्रॉब्लम रहती है. लेकिन इसके अलावा कुछ एक कंडीशंस हैं जिसमें सबसे कॉमन है मेनियर्स डिजीज या ईयर फ्लूइड इम्बैलेंस कहा जाता है जिसको. जिसमें क्या होगा कि इनर ईयर में जहाँ पे फ्लूइड होता है तो उसमें इम्बैलेंस करके आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम रहेगी. एकदम से चक्कर का अटैक होगा, वर्टिगो का अटैक, और उसके साथ आपको टिनाइटस की प्रॉब्लम, हियरिंग कम होता जाता है, साथ में कानों में आवाज़ें आती है जो लगातार चलती रहती हैं. इनिशियली कम होके जैसे जैसे फिर एक अटैक सही हुआ, कुछ टाइम बाद, कुछ एक मंथ बाद दूसरी बार आपको ये अटैक हुआ ईयर फ्लूइड इम्बैलेंस का, तो फिर ये आवाज़ें शुरू हुई है वो आज तक जैसे जा नहीं रही है. बचपन में भी हम देखते हैं ना कि रिपीटेड ईयर इन्फेक्शन बच्चों के होते हैं, तो कई बार उनके स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ईयर ड्रम जो है पर्दे के अंदर छेद हो गया है, कि ईयर ड्रम रप्चर हो गया है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम काफ़ी बार पाई जाती है. या फिर एयर ट्रैवल किया है आपने तो रैपिड चेंज हुआ है प्रेशर में, तो उस करके भी आपको ये स्टार्ट हो जाता है, विस्लिंग सी एकदम से स्टार्ट हो गई, कानों पे विप्लेश एकदम से जर्क लगा, इंजरी हुई, तो उस करके भी ये हो सकता है. कई बार नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी नेक में आई है तो उससे भी होगा. ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है तो उससे भी कानों में आवाज़ आ सकती है. एंड कई बार सिंपली एंग्जाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ये सुनाई देती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती है. तो ऐसे में मरीज को होता है कि क्या इसमें हमें हेल्प मिल सकती है, या कई बार स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि नाउ यू नीड टू लर्न कि इस आवाज़ के साथ किस तरह जीना है आगे, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ होती रहेगी. हाँ, कुछ एक हद तक ये सही भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस आवाज़ को पहले तो इग्नोर करना ज़रूरी है. जितना आप सोचे जाओगे ना, उतना आप उसमें डीप चले जाते हो, कई बार स्ट्रेस बढ़ जाती है और फिर उसके साथ ये आवाज़ें भी बढ़ती जाती हैं. तो ऐसे में एक तो इसको इग्नोर करें, किस तरह की जो आवाज़ आ रही है उसको, लेकिन ट्रीटमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. जितना जल्दी आपको पता चलता है आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, वी डू हैव ट्रीटमेंट फॉर दैट, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. अर्ली स्टेज में स्टार्ट करते हो कम्प्लीटली ये इसको सही कर सकते हैं. तो जिनको काफ़ी टाइम से भी ये प्रॉब्लम है, लगातार आवाज़ें आ रही है आपके कानों में, तो ऐसे में कुछ एक टाइम ये ट्रीटमेंट लेते हो ना तो बहुत कम फिर वो रह जाती है. जितना हो सके उसमें इम्प्रूवमेंट वो पॉसिबल है, वो मेडिसिन काम करती है. सो ऐसे में टिनाइटस से लेके कोई भी ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, रिपीटेड ईयर इन्फेक्शन, ईयर ड्रम रप्चर हो जाना जो छोटे बच्चों में कई बार ये पाया जाता है, ईयर फ्लूइड इम्बैलेंस है, या कानों की प्रॉब्लम करके आपको वर्टिगो का अटैक हुआ है, या कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज वास्ते काव्या होम्योकेयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं. और इसके साथ है मसाज थेरेपी. सो कहीं पे भी बॉडी में पेन्स हैं, साइटिका की पेन हो, बैक पेन है, गर्दन अकड़ रही है, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपने इतना सोच सोच के ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया, नींद खराब कर ली है, हेडेक वगैरह के लिए साथ में मसाज थेरेपी है जिससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है. सो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस किसी भी तरह के ट्रीटमेंट वास्ते, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड मसाज थेरेपी के लिए काव्या होम्योकेयर से मेरा कॉन्टेक्ट जरूर करें.
3: परफेक्ट. तो हमें ये पता चला कि ये जो कानों में आवाज़ें आती हैं, जो डिफरेंट साउंड्स होती हैं, उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में डेफिनेटली है. आप एक बार बात करें ये वाली बीमारी या कोई और बड़ी छोटी, उसके लिए काव्या होम्यो केयर पे आप कांटेक्ट करेंगे मीता जी से, तो सोल्यूशन आपको ज़रूर ज़रूर मिलेगा. नंबर टू कॉल 6477602779. थैंक यू मीता जी, फिर करते हैं बात.
4: थैंक यू स्वाति जी.

एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, हमारे साथ आज हर घर कुछ कहता है सेगमेंट में जो संजीव मनोचा जी जुड़ते हैं वो जुड़ चुके हैं. तो आपके अगर सवाल हैं घर से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा. स्टूडियो का नंबर 4165930055. और साथ में ये भी बता दूं कि एक कहानी हमेशा वो सुनाते हैं, आज की कहानी भी आप सुनिएगा और फिर मैं शीर्षक आप लोगों से ही पूछूंगी कि क्या बनता है. स्टूडियो का नंबर रहेगा 4165930055.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: घर कहीं भी लेना हो

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशेलिन टायर्स के ऑथराइज्ड डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप चार नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारब्रो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: Genesis Markham. Yahan mile luxury ka first class experience with a state of the art dealership aur aapki apni language mein expert service. Lease kare beautifully designed 2026 G70 sirf 1.9% se. Ya lease kare 2026 GV70 sirf 4.9% se. Aaj hi book kare test drive. Visit genesismarkham.ca located at Woodbine Avenue and John Street. Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
7: Retro in Metro. Nukkad Classics.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: मेरे रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
2: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
1: दैट्स 416-843-7600 और विजिट माई रियल को .com. हर घर कुछ कहता है।
2: घर की बात संजीव मनोचा के साथ,
1: ब्रॉट टू यू बाय माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। एवरी थर्सडे 6 PM ओनली ऑन फिल्मी नुक्कड़। ऑलराइट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव मनोचा जी। जैसे मैंने किया था वादा, आज हर घर कुछ कहता है इस सेगमेंट में, और आज भी हम बात करेंगे कि घर बहुत सारी बातें कहता है, बस सुनने वाला चाहिए, ये हम हमेशा कहते हैं। और संजीव जी, कहानी के ज़रिए हमें हमेशा बताते हैं कि घर क्या क्या बातें कह सकता है, या घर बेचते वक्त या ख़रीदते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो कहानी के ज़रिए बड़ी खूबसूरती से, प्यारे से, इंटरेस्टिंग तरीके से हमें बता भी देते हैं। तो कहानी ज़रूर सुनिएगा, आज की शीर्षक मैं आप ही लोगों से पूछने वाली हूँ, क्योंकि अच्छा बात बहुत सारी करेंगे आज, पर मुझे पहले तो कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहता है कि आज की कहानी क्या है।
3: जी बहुत ज़रूर। अभी कहानी शुरू करने से पहले, जैसे कि हमेशा होता है, कि अपने सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।
1: और नंबर बता दें,
3: मेरा नंबर है 416-843-7600, 416-843-7600, 416-843-7600।
1: अच्छा, मैं ये नंबर के साथ ये भी बताना चाहूंगी कि ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड है संजीव जी माई रियल को से, द रियल स्टेट कंपनी। आप चाहें तो माई रियल को .com वाली वेबसाइट पे जाकर भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार ड्राइव कर रहे होते हैं संजीव जी लोग और नंबर नोट नहीं कर पाते, तो चलते हैं वेबसाइट जरूर बता देती हूँ मैं। बट 416-843-7600 इज द नंबर। आपके कोई सवाल है तो स्टूडियो का नंबर तो वही रहेगा 416-593-0055। फिलहाल कहानी आज की।
3: जी स्वाति जी, तो देखें, जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि आज की कहानी जो है वो सत्य घटनाओं पर
1: आधारित नहीं है,
3: प्रेरित है और पात्र काल्पनिक है इसमें।
1: अच्छा,
3: ठीक है, लेकिन ये वाकई में, ये जो कहानी आज मैं बताने जा रहा हूँ,
1: घटित हुई है,
3: ये एक्चुअली में घटित हुई है,
1: सत्य घटना तो पे
3: आधारित हो गई। हाँ, आधारित हो गई है बिल्कुल। और पात्र का नाम मैं बता देता हूँ कि हमारे पात्र का नाम है नैनसुख।
1: क्या बात, चले,
3: बहुत अच्छा नाम।
1: अच्छा,
3: है ना?
1: बहुत नाम, बहुत अच्छा है। तो, उन्हें सुख जरूर मिलता होगा।
3: हाँ, तो नैनसुख साहब की कहानी कुछ यूं है कि वो आज से करीब 8 साल पहले कनाडा आए, और कनाडा के उन्होंने, दोनों PR पे थे, हस्बैंड वाइफ, बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, और किसी तरह से 2-2.5 साल में उन्होंने करीब करीब $60,000 सेविंग कर ली।
1: वेरी नाइस
3: जी, बहुत अच्छी, बहुत मेहनती लोग थे। तो हुआ यूं कि $60,000 सेविंग की, और उस टाइम पे मुझे मिले और बातचीत हुई, तो बात हो रही थी कि घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सब कहानी, तो उनके साथ में बैठ के बात की। अल्टीमेटली फाइनली नैनसुख साहब ने क्या किया कि उस $60,000 से इंडिया में एक प्रॉपर्टी खरीद ली, रेंटल प्रॉपर्टी।
1: अच्छा, आपसे बात करने के बाद लेकिन डिसीजन कुछ और ले लिया,
3: दैट्स फाइन, वो उनकी चॉइस है ना। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया में एक प्रॉपर्टी खरीदी वो $60,000 से, और उस टाइम पे जो डॉलर की कीमत चल रही थी वो 53 रुपीज थी, तो $1 53 रुपीज का था, तो $60,000 को कन्वर्ट करके करीब जो भी उनका 30-35 लाख रुपया बना, और वहां पे लोन वोन लेके 8.5% के ऊपर लोन लेके उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली गुड़गांव में।
1: ठीक है,
3: प्रॉपर्टी उनको 1.5 करोड़ की मिली, थोड़ा बहुत वहां से और उन्होंने पैसा लिया, बहुत खुश हस्बैंड भाई, बहुत खुश, बढ़िया प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की मिल गई, और यहाँ पे उन्होंने 2 बेडरूम का कॉन्डो रेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी रेंटल जो था वो था अराउंड $2,600
1: किराए पे, यहाँ पे 2600 के करीब में रहते।
3: जी जी, मैंने उनसे पूछा रीज़न क्या है, तो बोले इंडिया बहुत बूमिंग है, बहुत यू नो ग्रोइंग इकॉनमी है और बहुत अच्छा पैसा वहाँ पे मिलेगा, ग्रोथ बहुत हो रही है, बहुत चमक रहा है। मैं बोला बहुत बढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट जी। अब पिछले हफ्ते अचानक से उनके साथ मुलाकात होगी, मुलाकात क्या हुई एक्चुअली, उन्होंने फ़ोन ही किया, उन्होंने कुछ कंसल्टेशन करनी थी, तो बोले कि संजीव आप आइए, मिले हम बैठे। कहानी कुछ यूं हुई कि अब उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो 1.5 करोड़ की, वो हो गई आज की डेट में करीब 2.3 करोड़ की।
1: अरे वाह,
3: 80 लाख रुपए की उसमें अप्रिसिएशन हुई, बहुत खुश। ठीक है, बैठे हम नंबर करें, जब नंबर्स किए हमने तो पता यूं लगा कि इवन दो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो गई 80 लाख से, और यहाँ पे वो लोग देते रहे रेंट 2500 का, पिछले 7 साल से रेंट दे रहे हैं 2500 का, दो बेडरूम के अपार्टमेंट में रह रहे हैं, वहां पे प्रॉपर्टी उनको लग रहा है 1 करोड़ से बढ़ गई, जब उन्होंने किया कन्वर्शन आज की रेट में डॉलर हो गया करीब 68 रुपीज का।
1: सारा खेल खत्म।
3: ठीक है, तो सब करने के बाद में फाइनली ये हुआ कि उनको मिल कुछ भी नहीं रहा। 8 साल यहाँ पे वो रेंट पे भी रहे, वो रेंट भी देते रहे $2500 का, और वहाँ पे वो अपनी तरफ से तो कागजों में बहुत अमीर होते गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो नैनसुख साहब जो थे वो बेचारे दुखी हो गए कि अब क्या किया जाए, सुख नहीं मिला उनको। तो वो कहानी हो गई कि मतलब यू नो, तो अब अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि अब उनके साथ में हम बैठ के आई एम हेल्पिंग देम टू बाय देयर फर्स्ट होम इन कैनेडा, विच दे शुड हैव बॉट, और अदर दे वर रिपेंटिंग कि आई शुड हैव बॉट 7-8 years ago.
1: हाँ, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले यहाँ लेनी चाहिए थी, उसके बाद कुछ।
3: तो कई दफा जो सामने दिखता है, जो हमें लगता है, जब हम उसके एक्चुअली नंबर्स करते हैं किसी कंसल्टेंट के साथ, प्रोफेशनल के साथ बैठते हैं, तो हमें उस चीज को समझना चाहिए। और ये अक्सर गलती बहुत लोग करते हैं, ये सोच के कि हमारी बैक होम इकोनॉमी बहुत बूम कर रही है, बहुत वहां पे पैसा मिल रहा है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप वो पैसा यहाँ पे मंगवाना चाहो, जब भी जब आपने घर लेना है, कुछ करना है, तो अल्टीमेटली आप देखें कि रुपी की डिप्रिसिएशन कितनी होगी, 53 रुपीज से आज वो 68-70 रुपीज पे पहुंच गया, राइट। तो आपकी उतनी ही डिप्रिसिएशन हो गई, जब उसको वापस लेके आएंगे, एक्सचेंज रेट भी देंगे, वो सब करेंगे, हाथ पल्ले आपके कुछ नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपने $2500 7 साल के लिए किराया दिया, वो किराया तो आपने मिट्टी में डाल दिया। वही अगर आप यहाँ पे वो कर लेते और आप कुछ ना कुछ करके थोड़ी सेविंग करते, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ कि मान लीजिए 5% से भी बढ़ती, पर एटलीस्ट जो आपने रेंट दिया उसमें कुछ सेविंग होती, वो आपकी इक्विटी बिल्डअप होती और आज आप किसी पोजीशन में होते एक अच्छा घर लेने के।
1: चलिए, मैं इसमें ये कहूँगी देर आए दुरुस्त आए।
3: हाँ, देर आए दुरुस्त है, पर आए तो सही,
1: आए तो सही, आए तो सही। और उनका एक जो उनके एक्सपीरियंस हमने आज यहाँ एज अ स्टोरी शेयर किया है, मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए भी ये एक लेसन हो सकता है।
3: Absolutely.
1: कि कम से कम इसमें एक लेसन जरूर निकल के मुझे आ रहा है कि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। बैठे बात करें किसी प्रोफेशनल के साथ, एक्सपर्ट के साथ, जैसे कि संजीव जी, और अपने नंबर्स फैलाएं पहले, कि एग्जैक्ट एक्सेल शीट पे जब नंबर्स करते हैं ना सामने, वो पिक्चर जो आती है, तो पता चल जाता है कि कुछ इतनी मेहनत जब आप यहाँ बैठे वहाँ के लिए करते हैं, कि वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट।
3: यस, बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक की अपनी सिचुएशन होती है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक का डिसीजन खराब होता है, अच्छा होता है, हर एक की अपनी सिचुएशन है, लेकिन इट्स बेटर कि आप यू सिट विद अ कंसल्टेंट, यू सिट विद अ प्रोफेशनल, यू डू द नंबर्स, यू अंडरस्टैंड पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब देखें। ये मत देखें कि अरे 1.5 करोड़ वाली 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो जाएगी तो बहुत पैसा आ जाएगा, आपके बहुत एक्सपेंसिस उसके साथ में अटैच होते हैं, आपका एक्सचेंज रेट होता है, आपके यू नो कमीशन होती है, बहुत कुछ होता है।
1: और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम किसी को देख के कर रहे होते हैं, उन्होंने उनकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकती है आपसे, क्योंकि बाकी सब चीजें कई बार लोग खोल के नहीं बताते
3: आपको, नहीं बताते।
1: और कई बार ऐसा भी नहीं कि छुपा रहे हैं, वो उन्हें लगता ही नहीं कि बताना जरूरी है, यू नो कई बार ऐसा हो जाता है। तो किसी ने किया है सिर्फ इसलिए ना करें, और जब भी आप ऐसा करने का सोच रहे हैं तो इट्स ऑलवेज अ वाइज डिसीजन कि आप पहले वो डिसीजन लेने से पहले किसी एक्सपर्ट से मिलें, नंबर्स पूरे फैलाएं, और फिर यू नो डिसाइड करना ही है।
3: तो बस यही कहूंगा कि नैन सुख बने, लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब आंख के अंधे और नाम के नैन सुख।
1: मुहावरा मुझे भी याद आ गया, आंख के अंधे नाम नैन सुख। वैसे जितने भी नैन सुख लोग सुन रहे हैं, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, आप हमें कॉल जरूर कर सकते हैं, स्टूडियो के नंबर 4165930055। हम बात कर रहे हैं संजीव जी से फ्रॉम माय रियल को, जुड़े रहें हमारे साथ।

0: वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर.
1: Doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: हर घर कुछ कहता है.
3: घर की बात संजीव मनोचा के साथ.
2: Brought to you by My Realco, the real estate company. Every Thursday, 6 p.m. Only on Filmy Nukkad.
4: वेल, आज के कहानी रिचुअल के बाद हम वापस जुड़े हुए हैं अपने संजीव मनोचा जी के साथ फ्रॉम माय रियल को. इन द सेगमेंट हर घर कुछ कहता है. उनको रीच आउट करने का नंबर रहता है आफ्टर दिस सेगमेंट 416-843-7600, 416-843-7600. और बिफोर आई गो अहेड, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, लेकिन एक सवाल और मैं पूछना चाह रही थी संजीव जी, कि जब आप घर कोई लेता है तो ऑफर डालते हैं, एक और चाबी मिलती है ना
5: जी, जी.
4: तो दोनों के बीच की जो ड्यूरेशन होती है ऑफर से चाबी तक की, वो क्लोजिंग पीरियड कहलाता है,
5: जी,
4: है ना
5: जी.
4: अब ऐसे में क्या होता है कि बायर जो है ना, कई बार देखा गया है उनका मन करता है एक बार हम प्रॉपर्टी फिर से देखाएं, घर में बैठ के डिस्कशन. और तुमने वो नहीं देखा था वहां पे, तो ये था अरे मेरे से तो रह गया, कहते चलो एक बार और देखाएं. तो क्या ये उस क्लोजिंग पीरियड में पॉसिबल है कि दोबारा हम जाके प्रॉपर्टी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स दिमाग में आते हैं.
5: जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इसमें होता क्या है स्वाति जी, अक्सर जब हम ऑफर करते हैं तो ऑफर में हम एक

0: क्लॉज लिखते हैं कि द बायर हैज अ राइट टू विजिट द प्रॉपर्टी कपल ऑफ टाइम्स. अब डिपेंड करता है कि क्लोजिंग पीरियड कितना लंबा है. एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, लेकिन अगर क्लोजिंग पीरियड बहुत लंबा है तो हम अक्सर तीन बार भी विजिट को रिक्वेस्ट कर देते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज देखने वाली होती है कि वो विजिट है, ठीक है, वो इंस्पेक्शन नहीं है या वो कंडीशन नहीं है. तो अक्सर क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता है. एक बार जब आपकी ऑफर फर्म हो गई तो उस फर्म ऑफर के बाद में जो क्लोजिंग पीरियड का बीच में दो तीन महीने का टाइम जो भी है तो उसमें आप विजिट कर सकते हो. और उसका टोटल पर्पज क्या होता है मैं बताता हूँ. मेन पर्पज उसका ये होता है कि आपने मान लीजिए कुछ अपने घर के अकॉर्डिंग आपने कर्टेंस बनवाने हैं, कुछ कस्टम मेड कर्टेंस बनवाने हैं, या आपने कुछ और रेनोवेशन करवानी है, आपको पहले प्लान करना है, नाप चाहिए, मेजरमेंट चाहिए, आपने को फर्नीचर लेना है, आपको देखना है कि लिविंग रूम कितना बड़ा है तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे सेक्शनल फिट करूं या फिर मैं थ्री पीस टू पीस फिट करूं. तो उसका पर्पज ये होता है. दूसरा पर्पज ये भी होता है, कई दफा हम ये भी कर लेते हैं कि बंदे ने प्लान कर लिया कि मेरे को मूव करने के बाद में इसमें कुछ रेनोवेशन करवानी है. सो दे कैन इवन यू नो सम टाइम ब्रिंग अ रेनोवेटर कॉन्ट्रैक्टर, उसको दिखाते हैं कि देखो हमने यहाँ यहाँ पे ये प्लान किया, प्लान अहेड, सो दैट जैसे ही चाबियां मिलेंगी वैसे ही हम काम शुरू कर सकते हैं. एक हमारी फाइनल वॉक थ्रू होती है. फाइनल वॉक थ्रू यूजली हम क्लोजिंग से दो या तीन दिन पहले करते हैं. फाइनल वॉक थ्रू का पर्पज ये होता है कि जो भी हमने शैटल्स फिक्स्चर्स जो भी इंक्लूड किए हैं प्रॉपर्टी में, फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, डिश वॉशर, जो भी हमने इंक्लूड किया, आर दे ऑल वर्किंग फाइन, प्रॉपर्टी में किसी तरह की कोई डैमेज तो नहीं हुई, या जो हमें कहा गया था कि हम ये चीजें प्रॉपर्टी में हम इंक्लूड कर रहे हैं वो सब चीजें वहां पे हैं कि नहीं है, वैसी हैं कि नहीं, तो उसका पर्पज ये होता है. सो प्लीज डोंट टेक दिस एज अ कंडीशन और एज एन इंस्पेक्शन. हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो गई जब आपने देखा था ऑफर के टाइम पे और आज की डेट में उसमें कुछ डैमेज है या कोई चीज हो, तब आप डेफिनेटली अपने लॉयर को बोलें, अपने एजेंट को बोलें, वो लॉयर को बोलेगा, एंड देन योर लॉयर विल टॉक टू द सेलर्स लॉयर कि ये उसमें चीजें हैं.
1: ओके, पर ये ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसा मान सकते हैं रिश्ता पक्का हो गया तो उसके बाद आप मिल सकते हैं.
0: हाँ,
1: पलटी नहीं मार सकते.
0: अब तो सील ठप्पा लग गया,
1: इसमें कोई और दिख गया, अरे यार वो ज्यादा बेटर था.
0: और ये अक्सर होता है, वैसे ये अक्सर होता है, चाहे
1: दूसरा घर दिख गया, अरे वो अच्छा था पर अब हो गया.
0: देखें, वो कहते हैं ना कि शादी, गाड़ी और घर, लेने के बाद हमेशा लगता है अगला मॉडल अच्छा.
1: चले, संजीव जी का नंबर 416-843-7600. संजीव जी, बिफोर आई लेट यू गो, एक क्विक क्वेश्चन, रैपिड फायर राउंड आपके साथ करने का मन. तो चले मुझे जल्दी जल्दी बताइएगा, बायर मार्केट है या सेलर?
0: स्वाति जी, स्मार्ट बायर और स्मार्ट सेलर दोनों की मार्केट है इस टाइम पे. स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए आपकी.
1: क्या बात है, तो स्ट्रेटजी सही है तो आप दोनों कैटेगरी में आते हैं तो भी आपके लिए ये है. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि आप जब भी शोइंग करने जाते हैं लोगों के साथ, कपल्स होते हैं, आपने झगड़े होते हुए देखे हैं, बहुत देखे हैं या नेवर?
0: बहुत बार
1: आपके सामने ही लड़ने लगते
0: हैं. हाँ, वो कई दफा तो ये हो जाता है कि मतलब जस्ट कैरिड अवे वो उस इमोशंस में. और होता ये है कि हस्बैंड कहता है ये घर ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन ये अपने बजट में है. साथ की साथ वाइफ कहती है कि ये किचन, मैं तो यहाँ पे खड़ी होके खाना तक ना बनाऊ, रुकू भी ना यहाँ पे. तो फिर वो उस तरह से झगड़े हो जाते हैं और आपको फिर पता है फाइनल डिसीजन
1: किसका होता है. चले, मेरे ख्याल से वो सबको पता होना चाहिए फाइनल डिसीजन किसका होता है. जिस किचन से कहते हैं सत्ता चलती है.
0: ओ, हर घर में.
1: अच्छा, नेक्स्ट इज के सेलर्स कभी आपने देखे हैं जो अपने घर से बहुत अटैच्ड होते हैं पर वो बेच रहे हैं पर उनका अटैचमेंट नहीं जा रहा, कहते ना मोह, और फिर इस चक्कर में वो कोल्ड फीट भी हो रहा होता है उन्हें या अड़ंगे खुद ही अड़ा रहे होते हैं ना, पता भी नहीं चलता, वो बेचना भी चाह रहे हैं पर नहीं भी चाह रहे हैं. तो या आपने देखा है कि वो ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं, तो क्या चीज ज्यादा होती है?
0: जी, तो ये कई दफा हो जाता है ऐसा, और खासकर उन घरों में ज्यादा होता है जहां पे सेलर्स ने काफी टाइम बिताया होगा. अगर उन्होंने 15-20 साल उस घर में बिताए हैं तो एक अटैचमेंट हो जाती है.
1: राइट,
0: ठीक है, उसमें उन्होंने मान लो छोटी छोटी चीज भी की है. अब कई दफा क्या कहते हैं सेलर की, अरे मैं तो ये स्क्रू स्पेशल रोना से जाके लेके आया था, मेरे को तीन स्टोर में नहीं मिला था और यहाँ पे मैंने लाइट फिक्स्चर लगाया था.
1: मेमोरीज
0: कितनी होती है, तो वो एक फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग, नर्वस फीलिंग, और उसको हम कह सकते हैं कि वो अड़ंगा हो रहा होता है एक तरह से सेल में. राइट, लेकिन यस, ये हो जाता है कई दफा. तो इसीलिए सबसे पहला काम हमारा सेलर को ये कहना होता है कि देखें सब, आप इसको घर को बेच रहे हैं, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें, ठीक है। अगर आपको नहीं बेचना है तो मत बेचें, हाँ। पहले ही, लेकिन अगर आपने मार्केट में लगा दिया तो बेचना है, और बेचने के बाद में अटैचमेंट आप थोड़ा सा
1: साइड में
0: रखिए,
1: रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज, कौन सा डायलॉग है फिल्म का, वो कहता है जो आज तेरा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का होगा।
0: फिल्म का गए तो गीता सार है,
1: गीता सार फिल्म का डायलॉग भी है, उसमें गीता सार ही बता रहे होते हैं। ऑल द बेस्ट,
0: ऑल द बेस्ट।
1: अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था कि जब आपके पास रिक्वेस्ट आती है बायर्स की कि हमें घर दिलवा दें, तो कई बार कोई अटपटी डिमांड देखी आपने? कि जनरली लोग ऐसे तो कहते हैं बस स्टॉप के पास हो, स्कूल्स अच्छे हो, कोई अटपटी डिमांड कभी आपने सुनी है?
0: हाँ, मतलब कई दफा हो जाता है। अब ऐसे एक बायर थे, वो कहने लगे कि संजीव घर ऐसा हो जिसमें वाइब अच्छी आए,
1: वाइब
0: है ना, और पड़ोसी अच्छा हो। तो मैंने कहा साहब वाइब का तो मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ, कहने का तो उनका यही मतलब था, बीवी साथ में खड़ी थी।
1: अच्छा,
0: तो बेचारे क्या कहें। तो मैंने कहा अभी वाइब का तो मैं देखो कुछ कर सकता हूँ, वो देख सकते हैं, एनर्जी फ्लो देख सकते हैं, घर में वास्तु देख सकते हैं। अभी पड़ोसी कैसा है कैसा नहीं है वो तो सिर्फ शक्ल ही देख सकते हैं, वो भी तब जाके उसको बुलाएंगे, और नहीं तो बाकी तो फिर आप दुआ करो पॉजिटिव वाइब होगी तो पड़ोसी भी अच्छा हो जाएगा।
1: ठीक बात है, कई बार।
0: लेकिन नेबरहुड कैसी होती है, यस, इसकी इन्फॉर्मेशन हम पूरी देते हैं क्लाइंट को। यस, ओवरऑल नेबरहुड, वहाँ किस तरह के लोग रह रहे हैं, क्या उनका इनकम रेंज है, क्या उनकी प्रोफेशन है, वो सब इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं।
1: अच्छा, एक और क्वेश्चन, यू एज रियल स्टेट एजेंट कह लें या प्रोफेशनल कह लें या ब्रोकर कह लें, तो आपके लिए क्या ज्यादा वैल्यूएबल है, रिलेशनशिप या कमीशन?
0: ऑफ कोर्स रिलेशनशिप,
1: ऑफ कोर्स। ही एक बार में आंसर आया। कमीशन हालांकि मैटर करता है, नहीं?
0: कमीशन मैटर करता है, देखें खाना तो सभी ने खाना ना, घर तो सभी ने चलाना है।
1: मोर इम्पोर्टेंट व्हेन यू हैव टू चूज वन,
0: या इफ आई हैव टू चूज वन आई वुड ऑलवेज चूज रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप गोज अ लॉन्ग वे देन द कमीशन।
1: मैंने देखा है आपके, आप जैसे जब हम बात करते हैं तो मुझे ये इस बात का अंदाजा होता है कि आपके क्लाइंट्स आपके फैमिली फ्रेंड्स बन जाते होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आई कैन सी दैट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन,
0: जी बिल्कुल,
1: रियल स्टेट का गोल्डन रूल एज पर यू क्या है?
0: आई वुड से डोंट चेज द मार्केट।
1: अच्छा,
0: ओके, डोंट चेज द मार्केट, स्ट्रेटजाइज एंड बेस्ड ऑन योर फिगर्स एंड अंडरस्टैंड द मार्केट, दैट्स इट।
1: अच्छा,
0: ठीक है, आप अगर मार्केट को चेज करना चाहेंगे, मार्केट को टाइम करना चाहेंगे, बहुत मुश्किल है। अपने हिसाब से, अपने नंबर्स के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करें और फिर उसके बाद में कदम उठाएं।
1: चलें, और यहाँ पे मैं संजीव जी का नंबर फिर से दे देती हूँ, 416-843-7600। यू कैन ऑल्सो विजिट myrealco.com। अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे एक नई कहानी और कुछ और सवालों के साथ।
0: चलते चलते अगर आप इजाजत दें,
1: लिस्टिंग बहुत जरूरी है।
0: लिस्टिंग, जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास एक कमर्शियल यूनिट है कील एंड फिंच के इंटरसेक्शन पे, वंडरफुल प्लाजा है। किसी को अगर अपनी फार्मेसी या कैरोप्रैक्टर या फिजियोथेरेपी, इस तरह के कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल या नॉन मेडिकल प्रोफेशनल भी ऑफिस ओपन करना है, तो इट्स अ 902 स्क्वायर फीट, फर्निश्ड है, केबिन बने हुए हैं, उसमें सिर्फ फर्नीचर लाना और आपने तैयार कर देना उसको, बहुत ही वाजिब रेट के ऊपर है ये, और नया प्लाजा है बिल्कुल।
1: अच्छा।
0: और एक और लिस्टिंग मेरे पास में है मिल्टन में, मिल्टन में है, 3 bedroom 3 washroom और फिनिश्ड बेसमेंट, 1 car का गैराज, एंड प्राइस इज ऑल्सो वेरी वेरी जेन्युइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेमी डिटैच्ड 2-story house मिसिसागा में, क्रेडिट व्यू के एरिया में, 4 bedroom 3 bathroom बेसमेंट में अपार्टमेंट बना हुआ है, सेपरेट एंट्रेंस के साथ में,
1: सो
0: देयर इज अ गुड इनकम पोटेंशियल ऑल्सो, 1 car का बिल्ट इन कार गैराज भी है, वंडरफुल लोकेशन, ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, और ये एस्टेट सेल है, सो देयर कुड बी अ गुड डील एज वेल। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल करें, मेरा नंबर है 416-843-7600, 416-843-7600, 416-843-7600। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: थैंक यू।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 PM, your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 ईयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 ईयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 ईयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैश बैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkurana.com।
4: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे। डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस, मई 16 तक। लीज रेट्स एज लो एज 2.9% अप टू 24 मंथ्स। Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
5: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353। And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
6: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
7: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
6: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो। ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
7: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
3: हाँ, सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR एट 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

0: बचन की बोली
1: गोली
0: बोल बचन की वाणी
1: शाणी
0: बोल बचन का कतरा
1: खतरा

ये था बोल बच्चन से, बोल बच्चन सा गाना, विच वॉज सेड टू बी ह्यूजली ह्यूजली इंस्पायर्ड फ्रॉम अमोल पालेकर वाली गोलमाल, द वेरी फर्स्ट गोलमाल. मूछों का एंगल तो एक्चुअली फुल ऑन वहीं से लिया था. इंस्पिरेशन कह ले, रीमेक कह ले, ये भी मैंने देखा है कि कई बार ना तो हिट हो ही जाते हैं और कई बार मुंह के बल गिर पड़ते हैं. अब बिग बी की फिल्में ही देख लो, शोले. वो जब राम गोपाल वर्मा की आग से जा मिली तो शोले भी ठंडे पड़ गए, है ना. और डॉन में जब शाहरुख की एनर्जी मिल गई तो पुलिस अब तक डॉन को ढूंढे जा रही है. नई वाली वन एंड टू हिट हो गई और थर्ड वन भी आएगी, जरूर आएगी, इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं. वेल, आज ही के दिन इन 1978 पहली बार लोगों को मिला था ये ज्ञान कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है. एंड इट वॉज रिलीज टूडे बैक इन 1978. And people still prefer to watch the 70s one over the remade ones. आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप डिसाइड करें. मैं चलाती हूँ ये गाना from Don.

0: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: FIFA के टिकट चाहिए घर तो जाए डॉन वैली नॉर्थ हंडई पर. अब पूछो वहां क्यों? उन्होंने खूब समझाया हम सबका मन. अब देखो ना, FIFA के टिकट लेना कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर अ साधारण इंसान, है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछो कैसे. एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकला है उनको मिल जाएंगे टिकट्स FIFA के. अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना, तो दो टिकट्स जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिए ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको FIFA टिकट्स मिल पाते हैं? और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट्स मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाएं डॉन वैली नॉर्थ हंडई Woodbine Avenue, Markham. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 & 10 ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: एक्सक्लूसिवली पिक्ड लुक कर

कितनी बार ऐसा होता है ना कि गाने हमें बहुत सारे पता होते हैं क्योंकि फेमस हैं या हमें अच्छे लगते हैं, पर हम ना तो ये जानते हैं कि किसने कंपोज किए हैं या किसने लिखे हैं, है ना? ऐसे कंपोजर एंड डायरेक्टर रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट एरा के, जिनका नाम था इकबाल कुरैशी, जो बचपन से गाते थे महफिलों में भी और AI रेडियो पर भी, ऑल इंडिया रेडियो। फिर मुंबई आए बड़े होने पर तो थिएटर से जुड़ गए और फिर वहां थिएटर में म्यूजिक देने लगे। And then films happened. Bean जो होती है ना, Bean, as a music and songs he promoted quite well. And even glass instrument जिसको कंच तरंग भी कहते हैं, वो गाना सुनाया है आपने अगर याद हो तो, लता जी और गीता दत्त जी की आवाज में है, from the film पंचायत। तथैया करती आना ओ जादूगर मेरी सैया, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दैट। वेल, इनके म्यूजिक पर सभी बड़े सिंगर्स ने गाया है, काफी अच्छे अच्छे राइटर्स ने बोल दिए हैं, गाने सुपर हिट भी रहे हैं। मुझे लव इन शिमला के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, पर फिल्म हिस्टोरियंस के हिसाब से इनके जो बेस्ट एफर्ट्स में से आते हैं वो है चाचा चाक के गाने, स्पेशली द सॉन्ग जो उन्हीं के दोस्त मखदूम मोइनुद्दीन साहब की पोएम चारा गर से लिया गया था। बहुत प्यारा गाना है, सो सुनवाती हूँ। Remembering the legend today on his birth anniversary, this is Swati signing off for now, leaving you with that gana, जिसके लिए कहा था कि सुनवाती हूँ। और जो ये कहता है कि दो दिलों की कई बार ऐसी होती है कहानी कि मिल तो जाते हैं पर फिर भी मिल नहीं पाते कभी। हम मिलते हैं फिर जल्दी ही, तब तक love and smiles from me to you.

0: न्यूज के लिए हिदायत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक अहम सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से कबल बीजिंग ने अमरीका के साथ ताल्लुकात में चार अहम रेड लाइंस वाजे कर दी। चीन ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी कम करने और आपनाए हुरमुज दोबारा खुलवाने के लिए अपनी सालिसी की कोशिशें मजीद तेज करे। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची ने कहा है कि अमरीका के धमकी आमेज और इश्तियाल अंगेज बयान मुमकिना माहिदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुजाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ एक वोट के फर्क से नाकाम हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के एक रुकन ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिकी हथियारों को आबनाए हुरमुज से गुजरकर फौजी अड्डों तक पहुंचने नहीं देंगे। इसराइली वजीर आजम ने इंकशाफ किया है कि ईरान जंग के दौरान उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा किया था। बलूचिस्तान के जिले बारखान में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए जबकि पाक फौज के एक मेजर समेत 5 जवान शहीद हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा है कि जो दिल्ली के साथ किया है वही काबुल के साथ भी करेंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़ुज़े आईने पाकिस्तान में शामिल हो गए और आज रात से गैस की कीमत में 4 सेंट फी लीटर इजाफा हो जाने का इम्कान। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें जुबैरुद्दीन साहब के लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियो में रबते के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज कांच का रेट है 202.10 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप यहां से पैसे भिजवा सकते हैं। वहां अकाउंट नहीं है, कैश बैंक ट्रांसफर भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए। gondalbadal.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 202.10 रुपये। कॉल कर लीजिए 9053060000 9053060000। वेंसडे राजीव तलवार साहब मॉर्गेज की मालूमात आप तक पहुंचाया करते हैं। आशा मनवर साहब डेट कंसल्टेशन के हवाले से गुफ्तगू करेंगी। विशाल त्रिवेदी साहब इंश्योरेंसेज के हवाले से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाया करते हैं। और आईसीएस इमिग्रेशन से एमडी भाई हमारे साथ होंगे। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे चर पर सामिन, अगर हम कुछ अरसा बाहर चले जाते हैं, अपना कमरा बंद कर देते हैं और कुछ अरसे बाद चंद हफ्तों या महीनों के बाद वापस आते हैं तो आपको हर तरफ गर्द सी पड़ी नजर आती है। जब तक आप इसे साफ न कर लें जाहिर है आपका कमरे में रहना जो है मुश्किल हो जाता है। तेज हवा के साथ जब गर्द उठती है तो भी आदमी परेशान हो जाता है और चाहता है कि कब ये गर्द की आफत इससे दूर हो जाए। लेकिन गर्द है क्या? ये जमीन की ऊपरी सतह की वो जरखेज मट्टी है जिससे हर किस्म की सब्जियां, फल और गल्ले पैदा होते हैं। अगर जमीन की सतह पर मट्टी ना हो तो जमीन पर जिंदगी गुजारना आदमी के लिए नामुमकिन हो जाए। और फिर यही गर्द जो फजा में कसाफत पैदा करती है जिसकी वजह से पानी के बुखारात बादल की सूरत इख्तियार करते हैं और बूंद बूंद करके जमीन पर बरसते हैं। जमीन की ऊपरी फजा में गर्द ना हो तो बारिश का अमल भी खत्म हो जाता है। सूरज निकलने और डूबने के वक्त जो रंगीन शफक आसमान के किनारों पर दिखाई देती है वो भी फजा में इसी गर्द की मौजूदगी की वजह से है। गर्द हमारे लिए एक मुफीद मादा भी है और हमारी दुनिया को खुशमंजर बनाने का जरिया भी है। ये एक सादा सी मिसाल है जिससे अंदाजा होता है कि दुनिया की जिंदगी में किस तरह खुदा ने नाखुशगवार चीजों के साथ खुशगवार चीजें रखती हैं। जिस तरह फूल के साथ कांटा होता है इसी तरह जिंदगी में पसंदीदा चीजों के साथ नापसंदीदा चीजों का जोड़ा भी लगा हुआ है। अब जबकि खुदत ने खुद फूल और कांटे को एक साथ पैदा किया है तो हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हम इसके साथ निभा की सूरत पैदा करें। मौजूदा दुनिया में इसके सिवा कुछ और होना मुमकिन नहीं। दूसरों की शिकायत करना सिर्फ अपने वक्त को ज़ाया करना है। ये दुनिया इस ढंग पर बनाई गई है कि यहाँ लाजमन शिकायत के मौके आएंगे। अकलमंद आदमी का काम यह है कि वो उसको भूल जाए, वो शिकायत को नज़रअंदाज करे और अपने मकसद की तरफ अपने सफर को जारी रखे। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: یہ بہترین وقت ہے اس بائرز مارکیٹ میں اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو تیم بھٹی سے رابطہ کیجیے صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861 فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال تیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office.
2: No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: अपने मकान की next month closing है. कुछ सोचा टीवी और appliances कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है. टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे.
3: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ.
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं.
3: दैट्स वंडरफुल.
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा.
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलन. टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस डॉट सी ए.
5: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए. इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक. ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे. रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के. वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए. फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग. वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777. इट्स 416-710-6777.
6: अलकरम ज्वेलर्स. अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए. अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स. शादी

0: 40 को कॉल मिला।
1: Talabat 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talabat 647-295-7861.
0: तो Talabat टी को कॉल मिला।
1: Talabat 647-295-7861.
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए, ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550, 746-5550।
6: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रेफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रابطے के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। द बेस्ट गोरमे पिज्जा विद बेस्ट प्राइसेस, पिज्जा पॉप 3075 रिचवे ड्राइव मिसिसागा, और विजिट pizzapop.ca। फैमिली के साथ डाइन इन करें या टेक आउट, बच्चों और बड़ों सभी की पहली चॉइस पिज्जा पॉप। लजीज और मजेदार तंदूरी चिकन पिज्जा, चीज स्टेक पिज्जा, चिकन शवरमा पिज्जा। एक्सक्लूसिव फैमिली ऑफर, लार्ज तंदूरी चिकन पिज्जा, लार्ज चीज पिज्जा, टू डिपिंग सॉस, थ्री कैंस ऑफ पॉप फॉर $24.99 ओनली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टेक आउट ऑर्डर कॉल 905-828-0985। It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर, 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 4166710577। जीटी भर में चार लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 4166710577।
1: विशाल त्रिवेदी, वही जाना पहचाना नाम। अब विशाल ही से लीजिए कमर्शियल इंश्योरेंस अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पर। मोटेल एंड होटल, एनी फ्रेंचाइज शॉप, फूड रेस्टोरेंट, कन्वीनियंस स्टोर्स, हेल्थ एंड डेंटल क्लिनिक, फार्मेसीज, फ्लीट ट्रकिंग एंड वेयर हाउसेज, गैस स्टेशंस, स्ट्रिप प्लाजा एंड मोर। फॉर अमेजिंग डिस्काउंट विद प्रॉपर लायबिलिटी एंड इंश्योरेंस कवरेज, कॉल विशाल त्रिवेदी 6477679852, 6477679852, दैट 6477679852।
2: जी हाँ, 6477679852 विशाल त्रिवेदी साहब के रबते का नंबर है। वेरी प्रोफेशनल, वेरी एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, ट्रस्टेड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। ना सिर्फ इंश्योरेंसेज के हवाले से, कमर्शियल इंश्योरेंसेज के हवाले से, ऑटो इंश्योरेंस के हवाले से, फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इनसे रब्ता कीजिए। मोर देन टू डेकेड मैं कह सकता हूँ कि इनका एक्सपीरियंस, मोर देन दैट एंड वेरी क्वालिफाइड, वेरी एक्सपीरियंस एडवाइजर हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं आज के दिन। खुश आमदीद कहेंगे विशाल भाई, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
3: थैंक यू अर्शद भाई, थैंक यू एंड रिगार्ड्स टू ऑल माय लिसनर्स।
2: बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा हम क्योंकि ज़्यादातर बात हम जब करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एजुकेट भी लोगों को थोड़ा सा इस सवाल से जरूर करें, तो व्हाट टाइप ऑफ इंश्योरेंसेस जो हैं आप ऑफर करते हैं या आपके पास हैं, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। लोगों का कॉन्सेप्ट बाज़ का तो होता है कि बस लाइफ इंश्योरेंस जहन में रहती है और चीज़ों की तरफ शायद कम वो सोचते हैं, जैसे पाकिस्तान में इंडिया में बीमा पॉलिसी हुआ करती थी, वो शायद उसी तरफ होते हैं। जी
3: Thank you, Ashish ji. Well, me being in industry for almost 20 years, one thing I come to know that education ki always kami rehti, and that's why, you know, we come in the picture and we try to educate the community.
2: Mm-hmm.
3: Insurance hote hai different tarah ke.
2: Mm-hmm.
3: Ek hota hai proper aapki personal insurance, which is life insurance ho gaya, aapka critical illness ho gaya, disability.
2: Theek ho.
3: Ek insurance hota hai commercial, jisme aapki buildings aa jati hain ya fir aapke businesses aa jate hain commercial insurance ke andar, aur dusra hota hai auto or home.
2: Theek ho gaya.
3: Now today I will be discussing more about different type of लाइफ इंश्योरेंस किस तरह के होते हैं और उससे हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। सो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, वन इज टर्म पॉलिसी, द अदर वन इज परमानेंट पॉलिसी।
2: ठीक हो गया।
3: जो टर्म पॉलिसी जो होती है वो आपको टेम्परेरी नीड्स के लिए लेते हैं। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि प्लीज अपनी इंश्योरेंस को आप रिव्यू कीजिए, जो आपने 8-10 साल पहले, 5 साल पहले या 15 साल पहले इंश्योरेंस लिया था उसका अभी कितना वैल्यू है और उसकी कितनी नीड है। हो सकता है आपकी सर्कमस्टेंसेस बदल गए हों, तो रिव्यू योर इंश्योरेंस, यू माइट एंड अप गेटिंग अ टर्म पॉलिसी एंड देन यू माइट नीड समथिंग एल्स नाउ। तो हर 2-3 साल में अपना इंश्योरेंस रिव्यू करते रहिए। तो एक टर्म पॉलिसी होगी अर्शद भाई और दूसरी होगी परमानेंट पॉलिसी।
2: ओके,
3: टर्म आप 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल एक कस्टमाइज टर्म करवा सकते हैं। जो टेम्परेरी नीड्स होती है, मॉर्गेजेस हो गई, लोन हो गए, आपके बिजनेस लोन्स हो गए, उन टेम्परेरी नीड्स के लिए आप टर्म पॉलिसी लीजिए।
2: ठीक है।
3: सेकंड ऑप्शन है परमानेंट पॉलिसी, और परमानेंट पॉलिसी में आपको एज 100 तक का कवरेज मिलता है लाइफ लॉन्ग। उसमें पेड अप ऑप्शंस बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं कि आपने एक सर्टन टाइम तक आपने पैसा दिया एंड यू डोंट हैव टू पे एंड यू आर कवर्ड फॉर लाइफ। एंड ये पॉलिसी आपको पैसा वापस भी देती है पॉलिसी के अंदर, दैट मींस यू हैव अ कैश वैल्यू।
2: ठीक।
3: और व्हेन यू सिट डाउन विद अस देन वी गाइड यू दैट आपके पास में इतनी इंश्योरेंस की जरूरत है नीड एनालिसिस के थ्रू, एंड देन वी टेल यू दैट ओके यू नो दिस इज द नीड एंड दिस मच हाउ मच इज कॉस्ट एंड हाउ मच कैश वैल्यू यू विल गेट आफ्टर सर्टेन टाइम।
2: अच्छा, दो सवाल मेरे जहन में। एक तो सवाल यह है कि जो टर्म इंश्योरेंस है क्या उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट इंश्योरेंस में, मतलब जैसे आपने बताया कि रिव्यू करते हैं।
3: एक्सीलेंट क्वेश्चन, एब्सोल्युटली। इन कनाडा यू हैव अ प्रिविलेज टू कन्वर्ट योर टर्म पॉलिसी टू अ whole life or universal life permanent policy? Absolutely yes. Majority of the company they do that. Yes.
2: अच्छा और दूसरा सवाल जो अभी आप cash value life insurance की बात करें मतलब इससे मुराद ये हुआ कि that for the specific time you're paying the premium and at that time you'll be getting जो भी amount जो है उसमें cash value होती है वो वापस मिल जाएगी आपको जितने भी invest किया whatever जो भी है अच्छा
3: जी हाँ तो इसमें basically क्या होता है आप एक cash value policy लेते हैं एक certain time तक पैसे देते हैं and then you have accumulated cash value with the growth in the policy that can be used for your education, for your retirement, for your any needs, बच्चों की शादी वगैरह के लिए पैसा चाहिए, you can always take that money out. Absolutely, yes.
2: 647-767-9852. 647-767-9852 पे आप रब्ता कर सकते हैं. अच्छा अब एडवाइस आप क्या देंगे? मैंने अब देखा यहाँ पे माशाल्लाह अब तमाम काफ़ी लोगों में खासतौर पे नौजवानों में जो नई नई जॉब शुरू करते हैं उनमें अब इसकी अवेयरनेस है तो जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना प्रीमियम कम होगा लाइफ इंश्योरेंस का या इंश्योरेंस का?
3: एब्सोल्युटली लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट एट अर्ली एज अगर आप लेते हैं तो अपनी हेल्थ भी लॉक कर सकते हैं आप
2: सही है
3: एंड प्रीमियम भी कम होता है और मैं सारे पेरेंट्स जो रेडियो शो सुन रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके बच्चे काम कर रहे हैं या एट अर्ली एज इफ यू लॉक देयर इंश्योरेंस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इन लॉन्ग रन हमारी एज में आके उनको इंश्योरेंस लेना नहीं पड़ेगा इट्स अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर देम
2: अब यही एक और सवाल आता है फर्स्ट के लिए आपने इंश्योरेंस लिया आप बहुत सेहतमंद थे एवरीथिंग वाज गुड एट दैट टाइम जाहिर है एज के साथ साथ जो है इंसान के बीमारियां जाती तो वो अगर आपने ले ली है लाइफ टाइम के लिए तो इवन दो अगर कोई बीमारी भी आ जाए डजंट मैटर फॉर दैट
3: It does not affect your policy. Okay. So that means when you take the policy, something happens to you, doesn't matter, you are covered because the policy liti aapne, you are healthy.
2: Bilkul theek. 647-767-9852 pe kisi kisim ki information chahiye aur raabta kar sakte hain, call kar sakte hain. Kuch aur add karna chahenge Vishal bhai aap?
3: Bas Arshad ji, it's always pleasure. We are always here to educate our community. We are not here to sell anything. So we are always with you. Give us a call regardless of you buy or not. You will get education from us. Thank you.
2: Bahut shukriya. Thank you very much. Next week, aap se phir baat karte hain. Thank you. बहुत
3: शुक्रिया
2: और जनाब यही हम बात करते हैं आपको कोई जहन में सवाल हो आप कॉल कर लीजिए नो ऑब्लिगेशन वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि क्या आपके लिए बेहतर है 647-767-9852 विशाल त्रिवेदी साहब के रब्ते का नंबर है 647-767-9852 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से हमारे 101.3 एफएम 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पे सुन सकते हैं हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी रियल एस्टेट के बारे में कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए कॉल तला भट्टी 6 4 7 2 9 5 7 8 6 1 घर खरीदना बेचना लीज करना साइन करना नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो कॉल कर लीजिए अपना ईमेल रेसिपी टेस्ट कर सकते हैं डेटाबेस में से ऐड कर लेंगे जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल आपको मिलती रहा करेगी डायरेक्ट कॉल कीजिए अपना ईमेल रेस्ट टेक्स कर दीजिए तला भट्टी 6 4 7 2 9 5 7 8 6 1 लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ जो पेश कर रहे हैं जनाब जुबैरुद्दीन साहब
4: You're listening to CMR FM 101.3.
2: News के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने
5: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का